ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल है 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 अगस्त 2026। सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

हम आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल से बोल रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ से। आइए अब हम आपको जानकारी दे दें आज प्रस्तुत होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

6:30 का समय स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम समर्पण का, 7:02 पर गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर लेकर हाजिर होंगे गोपाल भट्ट।

8:02 पर गुड मॉर्निंग डेली एनसीआर में आपके संग होंगी पूजा शुक्ला और 9:02 पर दिल के तराने गाने नए पुराने में आप इंजॉय करेंगे बॉलीवुड नंबर्स गोपाल भट्ट के संग।

श्रोताओं 10:02 पर वेस्टर्न म्यूजिक मैचलेस म्यूजिक आर ऐशानी मित्तल के संग और 11:02 पर एंजॉय कीजिएगा बॉलीवुड ट्रेल्स मनीष आजाद के संग।

थे आज प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो। अब से कुछ ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

सुबह के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं इस घंटे में हमारी मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 2 दिन की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यात्रा पर रहेंगे। भारतीय भुगतान परिषद ने कहा है कि यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बने रहेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जारी आंदोलन के बीच राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच पहली औपचारिक वार्ता हुई। बैठक में छात्र प्रतिनिधियों ने पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था की मांग दोहराई। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहोमा ने नई दिल्ली में गूगल फॉर एजुकेशन, ब्रिक्स एंटरप्रेन्योर अलायंस इंडिया और इंडिया टुडे ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ कई बैठकें की। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमेरिका के सांसदों की आपत्तियों को खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है और इस पर निर्णय संसद करती है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने किया। भारत और भूटान ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो ये थे मुख्य समाचार आकाशवाणी रेनबो 102.6 पर। कार्यक्रम जारी है, आइए सुनते हैं थोड़ी देर में सुप्रभात। इसके ठीक बाद यानी 6:30 से आप जुड़ेंगे हमारे प्रायोजित कार्यक्रम, आइए सुनते हैं कुछ ही देर में

0: वाणी आकाशवाणी।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ये पागलपन बेहद बेहद जरूरी है। अगर आपको दुनिया में कुछ करना है, अपना लक्ष्य हासिल करना है, अपने गोल तक पहुंचना है, तो बस यही जिज्ञासा, यही ऊर्जा, यही

शक्ति बनाए रखिए। मेहनत करो, मेहनत करो, आगे बढ़ते रहो। घर टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना कि बिना मेहनत के हासिल तख्त व ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तख्त व ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू तभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं आपका वाला कार्यक्रम सुप्रभात। मेरा नाम पूजा शुक्ला। जुड़े रहिए FM रेनबो, जो कि है स्टेशन ऑफ द नेशन।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण।
1: कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण।

कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुनते चले आ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का पांचवा अध्याय, जहां पर ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न पूछे और इससे पहले महाराज परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से जगत नियंता श्री गोविंद के सृष्टि लीला के संबंध में प्रश्न किया। श्री सुखदेव श्री गुरु और श्री गोविंद के चरणों में शरण लेकर महाराज परीक्षित से कहने लगे कि हे महाराज, देवर्षि नारद एक दिन ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने यही प्रश्न किए जो आपने मुझसे किए हैं, वही वृतांत मैं आपको सुनाता हूं। देवर्षि नारद ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी के चरणों में उन्होंने प्रणाम करके कहा, हे अनादि पुरुष, आप कृपा करके मुझे ये बताइए कि जीवात्मा और परमात्मा का तत्व क्या है, उसे प्रकाशित कीजिए। श्री भगवान अखिल ब्रह्मांड के मूल कारण हैं, परंतु हम विश्व को तो देख रहे हैं लेकिन विश्व के नियंता श्री गोविंद को देख नहीं पा रहे हैं। तो विश्व को देखकर विश्व के नियंता का अनुमान करने के अलावा कोई गति नहीं है हमारी, क्योंकि जब कार्य को देखा जाता है तो कारण तत्व कुछ कुछ समझ आता है। तो कार्य का जब गुण समझा जाता है, सोचा जाता है, तब समझ आता है कि कारण का ही गुण कार्य में संचारित हुआ है। इसलिए जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं वो अवश्य ही जगत नियंता जगत कारण श्री गोविंद से ही संचारित हुआ है। तो इस तरह देखा जाए तो क्रम क्रम से विचार और साधना के द्वारा ही तो जीव में भगवान श्री गोविंद के तत्व की अनुभूति आती है। देवर्षि नारद जी भी अदृश्य विश्व नियंता के तत्व को जानने की अभिलाषा को लेकर सबसे पहले ये जो विश्व हमें दिखता है उसके बारे में प्रश्न किए कि हे देव, इस विश्व का स्वरूप क्या है, इसका आधार क्या है? विश्व की नश्वरता तो सामने ही दिखती है, ये विश्व हमेशा नहीं रहता, लेकिन ये विश्व नष्ट होकर जाता कहाँ है? विश्व की स्वाधीनता ये देखने में नहीं आती। सारी ही वस्तुएं किसी ना किसी वस्तु के अधीन है, तो इस अधीनता का शेष कहां है, इसकी समाप्ति कहां है? आप ये समस्त तत्व जानते हैं, इसलिए सर्वनियंता परमात्मा भोक्ता जीव और भोग्य विश्व इन सब का तत्व हमें बताइए। तो बात भी सही है, कुम्हार घड़ा बनाता है तो जो आम आदमी है वो सोचता है कि कुम्हार ने ही घड़ा बनाया, परंतु वो ये समझ नहीं पाता है कि कुम्हार का जो कर्तृत्व है वो किसी और के कर्तृत्व के अधीन

है, कोई और है मालिक, ये समझ नहीं आता क्योंकि वो दिखता भी नहीं है। इसी तरह तो नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया है कि हे लोकाध्यक्ष, मुझे लगता है जैसे मकड़ी अपने ही शरीर से लार को निकाल करके उसके द्वारा जाल बुनती है, इस प्रकार आप भी अपनी माया से इस ब्रह्मांड की रचना करते हैं। और मैं ये भी देख पा रहा हूं कि आप बड़ी उग्र तपस्या करते हैं, तो इससे ये भी पता चलता है कि आपका कोई ना कोई आराध्य है, नहीं तो आप तपस्या क्यों करेंगे? आपका उपास्य कौन है ये मैं नहीं समझ पाया हूं, क्योंकि वेद वाक्य तो यही कहते हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। इस वेद वाक्य से तो आपकी महिमा का ही कीर्तन हुआ है, हिरण्यगर्भ तो आप ही हैं, सबसे पहले आप ही थे और स्थावर जंगमात्मक जगत के आप ही नियंता हैं, नियंत्रक हैं, यही समझ आता है। तो मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है, आप मेरे इस संदेह का निवारण कीजिए। आपको यदि कोई तत्व ज्ञान देता है तो ये बताइए वो कौन है, आपका आधार ही क्या है, आप किसके अधीन हैं, ये समस्त तत्व प्रकाशित कीजिए मुझे और संशय मुक्त कीजिए हमें। क्योंकि देखा जाए तो कुम्हार मिट्टी के द्वारा ही तो घड़ा बनाता है, तो घड़ा कुम्हार बनाता है पर मिट्टी कुम्हार नहीं बनाता, और मिट्टी ना हो तो फिर घड़ा कैसे बनाया जा सकता है? तो कुम्हार अपने आप में स्वतंत्र कर्ता नहीं है, ये साफ समझ आता है। किंतु ब्रह्मांड के कर्ता का अनुसंधान करते करते सब ब्रह्मा जी तक ही पहुंचते हैं और सब दिशाहरा हो जाते हैं। कारण ब्रह्मा जी जिस चीज के द्वारा सृष्टि करते हैं इस जगत की, वो बड़ा ही सूक्ष्म है, और ब्रह्मा जी के जो नियंता हैं वो समस्त प्रकार की युक्ति तर्क और ज्ञान के अतीत हैं, उन्हें युक्तियों से तर्कों से ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। इसीलिए नारद ऋषि जी जो भगवान के अवतार ही हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी लोक कल्याण के लिए ब्रह्मा जी से प्रश्न पूछ रहे थे। और ये बात हमने सुनी पिछली बार कि ब्रह्मा जी ने भी स्वीकार की कि हाँ, आपने जो प्रश्न पूछा है, हे नारद जी, आपने लोक कल्याण के लिए ही ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि आप तो सब कुछ जानते हैं, है ना। तो आपको याद होगा ब्रह्मा जी ने कहा था कि बेटा नारद, तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा है, तुम्हारा वो कथन असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक मुझसे परे का तत्व जो स्वयं भगवान है उन्हें जान नहीं लिया जाता, तब तक मेरा ऐसा ही प्रभाव प्रतीत होता है, जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे उन्हीं के प्रकाश से प्रकाशित होकर जगत में प्रकाश फैलाते हैं, वैसे मैं भी उन्हीं स्वयं प्रकाश भगवान के चिन्मय प्रकाश से प्रकाशित होता हूं और संसार को प्रकाशित करता हूं। मैं उन भगवान वासुदेव की वंदना करता हूं और ध्यान भी करता हूं जिनकी दुर्जय माया से मोहित होकर लोग मुझे जगत गुरु कहते हैं। देखिए ब्रह्मा जी की दीनता देखिए, वो अपने आप को श्रेय नहीं दे रहे हैं। देखा जाए तो कोई भी पिता अपने पुत्र की भलाई ही चाहता है, कल्याण ही चाहता है, और ब्रह्मा जी ऐसे पिता हैं नारद जी के, जो कि अपने पुत्र का कल्याण चाहते हैं और सबका ही कल्याण चाहते हैं। इसलिए वो बता रहे हैं कि वासुदेव, भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण ही हैं एकमात्र तत्व जिनको जानना चाहिए। इसलिए उन्होंने 12वें श्लोक में कहा था, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंति जगत गुरु, मुझे जगत गुरु कह रहे हैं। और 13वें श्लोक में अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा, विलज्जमानया यस स्थातु मीक्षापथे अमुया विमोहिता विकथन्ते ममाहमिति दुर्धियः। 13वें श्लोक में उन्होंने कहा कि ये जो माया है ना,

तक माया की पहुंच नहीं है, लेकिन बाकी लोगों को माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि वो भगवान की दासी है, माया कृष्ण दासी है। और दासी का कर्तव्य कर्म यही है कि वो भगवान से विमुख लोगों को दुख प्रदान करे, है ना। तो जो लोग भगवान के सम्मुख नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करते, ऐसे लोगों को माया आवृत कर लेती है ना। जीव का स्वरूप तो यही है कि वो भगवान का नित्य दास है, लेकिन जब वो भगवान का दास नहीं होना चाहता, उनको सुख नहीं पहुंचाना चाहता, अपने आप को सुख पहुंचाना चाहता है, तो ये वही बात हो गई कि जीव का स्वरूप कुछ है, वो कर कुछ और रहा है। ऐसे ही हुआ जैसे कि एक घड़े के द्वारा एक जलते हुए दीपक को ढक दिया जाए तो चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होगा, है ना। दीपक को अंधकार आवृत कर लेगा, घट के द्वारा ढके हुए दीपक को अंधकार ढक लेगा। तो ऐसा ही माया करती है। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा भी गया है, कृष्ण भूली से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तारे दिए संसार दुख। अनादि काल से जीव भगवान से बहिर्मुख है, बहिर्मुख है, भगवान से विमुख है, इसलिए माया उसको संसार दुख देती है, सुख नहीं देती है, दुख ही दुख मिलता है। तो महाबदान्य भगवान समस्त जीवों को आकर्षित करके अपनी कृपा प्रदान करते हैं, पर जो लोग भगवान की सेवा के प्रति उन्मुख नहीं है, उनको माया विपथगामी कर देती है और हरि सेवा में बाधा प्रदान करती है। वो याद नहीं कर पाते हैं कि हम भगवान की सेवा के लिए नर देह प्राप्त किए हैं, उन्हें पता नहीं चलता है, है ना। भगवान नहीं चाहते कि माया ऐसा कार्य करे, लेकिन तो भी माया देवी भगवत सेवा में उदासीन लोगों को अनेक प्रकार के दुख में निमज्जित कराती है, दुख में डुबोती है, और बाद में कृष्ण उत्कंठा रूपी उपयोगिता गौण भाव से उन्हें प्रदान कर देती है। क्योंकि जब दुख सहते सहते कोई जीव तंग आ जाता है, तब वो हे प्रभु आप कहाँ हो ऐसे चिल्लाने लगता है, और तभी अगर उसका बड़ा ही भाग्य हो तो उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, वो जान पाता है भगवान के बारे में। तो यहाँ माया उपयोगी भी हो जाती है, लेकिन सबसे पहले तो ऐसे जीव को मोहित कर देती है। और माया ये जानती है कि भगवान नहीं चाहते कि मैं जीवों को मोहित करूं, लेकिन वो लज्जित होकर भी इस प्रकार के कार्यों में रत रहती है। तो देखा जाए माया का ये कार्य भी भगवत सेवा मात्र ही है। आपात दृष्टि से तो लगता है कि अरे ये क्या कार्य कर दिया, लेकिन इस कार्य के द्वारा भी वो भगवत सेवा ही करती है अपनी योग्यता के अनुसार। पर हाँ, वो भगवान को मोहित नहीं कर पाती हैं। जो भगवत विमुख हैं, अविद्या से आच्छन्न हैं, ढके हुए हैं, ऐसे लोगों को ही माया मोहित करती है और उन्हें भगवत इतर विषय में अनुराग प्रदान करती है और बाहरी जगत में उनमें ये अहंकार जगा देती है, अभिमान जागृत करती है कि ये मैं हूँ और ये मेरा है। तो वो जीव का अपना स्वरूपगत विचार नहीं है। तो भगवत सेवा से विमुख होकर माया की कठपुतली बनकर जीव अतिशय अतिशय मूर्ख हो जाता है, उसके लिए अमंगलजनक है और उसकी मूर्खता का परिचय है। तो यही बता रहे हैं ब्रह्मा जी नारद जी को। और 14वें श्लोक में फिर से नारद जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, भगवान से अलग इस जगत में कोई तत्व नहीं है, है ना। ब्रह्मा जी ने कहा, द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् चान्यो अर्थो अस्ति तत्वतः। ये बात कह दी कि भगवत स्वरूप नारद द्रव्य कर्म काल

0: स्वभाव और जीव वास्तव में भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। यानी सब कुछ चूंकि भगवान से प्रकट हुआ है, इसलिए भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं। चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कर्म हो, काल हो, स्वभाव हो, जीव हो, भगवान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। भगवान है और उनसे ही सब कुछ प्रकट हुआ है। सारे महाभूत उनसे ही प्रकट हुए हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सब कुछ, अग्नि, सब कुछ ही तो भगवान से प्रकट हुए हैं। इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, इंद्रियों की शक्ति, मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियों के द्वारा भोगे जाने वाले समस्त विषय कहाँ से प्रकट हुए हैं? भगवान से प्रकट हुए हैं। तो सब कुछ भगवान से ही प्रकट हुआ है। इसलिए यहाँ पर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तुम मुझको समझते हो कि मैं कारण हूँ, पर सत्य ये नहीं है। हे नारद, उपादान रूपी महाभूत आदि द्रव्य जन्म निमित्त, यानी जन्म जिसके कारण होता है, हमारे कर्मों के कारण वो कर्म, और तीन गुणों से ये काल प्रकट हुआ है, ये काल, और उसका जो नाश हो जाता है, उसका परिणाम को प्राप्त कराने वाला स्वभाव और भोक्ता जीव, इनमें से कोई भी वस्तु वासुदेव भगवान से भिन्न सत्ता नहीं रखती है। क्योंकि द्रव्य आदि, वस्तु आदि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आदि, ये सब तो माया के कार्य हैं, और जीव और माया ये तो भगवान की ही शक्ति हैं। इसलिए ये जो विश्व है, ये वासुदेव स्वरूप ही है, ये समझना होगा। बहुत बड़ी बात है, बहुत सुंदर बात भी है, क्योंकि ये विश्व भगवान से प्रकट हुआ है, और अगर भगवान को हटा दीजिए तो फिर कुछ भी नहीं है। हम क्यों बारंबार जन्म लेते हैं? क्योंकि हम कर्म करते हैं, हम भोगने की इच्छा करते हैं, और भोगने के लिए फिर से कर्म करते हैं, तो कर्म फल की वजह से हम जन्म ग्रहण करते हैं। और ये जो विश्व बना है वो महाभूत से बना है, द्रव्य से बना है, वही उपादान रूप है। गुणों का क्षोभ काल है, और स्वभाव उसका परिणाम का हेतु है, जीव भोगता है। ये सब जानना होगा कि ये सब के सब भगवान से प्रकट है। देखिए, बड़े ही दीन होकर के ये समाचार दे रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो तुम देख रहे हो मुझसे प्रकट है, वो मुझसे नहीं है, वो भगवान से प्रकट है। और देखिए, बाद में दो श्लोकों में, 15वें और 16वें श्लोक में भी वो कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जानेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।
1: आप सुन रहे हैं कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम समर्पण। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इन्फो नंबर्स पर 9350530528, 9811256747 और 9818451411। आप अपने प्रश्न हमें लिखकर भेजिए या रिकॉर्ड कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9193278889। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारी वेबसाइट www.krishnapremdharatrust.com।
0: कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं, प्रेम धारा, और हम चर्चा कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान से प्रकटित है। भगवान ही असल सृष्टि करता है, उनकी वजह से ही, उनके कारण ही सृष्टि होती है। और 15वें 16वें श्लोक में इसी बात को साबित कर रहे हैं। कह रहे हैं, नारायण परा वेदा देवा नारायणांग जहा, नारायण परा लोका नारायण परा मखा, नारायण परो योगो नारायण परम तपहा, नारायण परम ज्ञानम नारायण परा गति ही। तो पहले तो यही कहा कि भगवत स्वरूप नारद

भगवान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं इस जगत में। द्रव्य हो, कर्म हो, काल हो, स्वभाव हो, जीव हो, सब भगवान से प्रकट है। वेद नारायण के पारायण है, देवता भी नारायण के ही अंगों में कल्पित हैं, समस्त यज्ञ भी नारायण की प्रसन्नता के लिए ही हैं, और उनसे जिन लोगों की प्राप्ति होती है वे भी नारायण में ही कल्पित हैं। सब प्रकार के योग भी नारायण की प्राप्ति के लिए ही हैं, सारी तपस्याएं नारायण की ओर ही ले जाती हैं, ज्ञान के द्वारा भी नारायण ही जाने जाते हैं, समस्त साध्य और साधनों का पर्यवसान भगवान नारायण में ही है। और अगले श्लोक में कहा कि वे दृष्टा होने पर भी ईश्वर हैं, स्वामी हैं, वे सर्वस्व रूप हैं, उन्होंने ही मुझे बनाया है और उनकी दृष्टि से ही प्रेरित होकर उनकी इच्छा अनुसार मैं सृष्टि रचना करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है। यहां इस तत्व को स्पष्ट किया है ब्रह्मा जी ने कि लोगों को दिख तो मैं रहा हूं कि मैं सृष्टि कर रहा हूं, पर ऐसा नहीं है। भगवान ही है परम कारण, श्री नारायण ही उपास्य रूप में वेदों का तात्पर्य विषय है। जितने भी देवता हैं जिनकी उपासना दुनिया करती है वो सब नारायण के अंग में ही विद्यमान है, नारायण के कारण ही उनकी स्थिति है, उनके प्रभाव के द्वारा ही देवताओं का प्रभाव है, वे सब नारायण के ही अधीन तत्व हैं। स्वर्ग आदि जितने भी लोक हैं वो भी श्री नारायण के आनंद अंश के आभास रूप मात्र हैं। जितने भी यज्ञ हैं सब नारायण पर हैं, यानी उनकी प्राप्ति का साधन स्वरूप हैं। तो ये बहुत सुंदर बात बताई है नारद जी को ब्रह्मा जी ने कि वेदों का जो तात्पर्य विषय है वो नारायण की उपासना ही है, समस्त यज्ञ आदि उन्हीं को प्राप्त करने के लिए है, है ना। तो शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र ही बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान से प्रकट है। अगले श्लोक में कहा, जब नारायण परो योगो, नारायण परम तपः, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति ही, भगवान ही परागति है। गति का अर्थ मोक्ष, मोक्ष। तो जो ज्ञान है वो वही ज्ञान है जो भगवान का तत्व बताता है। तो ऐसा जो ज्ञान है वो स्वयं भगवान है, और उसका जो फल है मोक्ष वो भी श्री नारायण के ही अधीन है। तो वही नारायण एकमात्र सर्वाध्यक्ष हैं, सबके अध्यक्ष हैं, मालिक हैं, सबके साक्षी हैं, वही देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई नहीं देख रहा है, वही देख रहे हैं। वो सब में है अंतर्यामी के रूप में, सबके अंतर आत्मा है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं उन्होंने ही मुझे बनाया है और मैं उनकी ईक्षण शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर, यानी उन्होंने दृष्टिपात किया और उनकी ईक्षण शक्ति मुझ पर पड़ी है, उससे मुझे जो प्रेरणा मिली है मैं उन्हीं के द्वारा सृज्य वस्तु की सृष्टि कर रहा हूं, उनसे शक्ति प्राप्त करके। तो ये भी देखिए ब्रह्मा जी कितना बड़ा सत्य बोल रहे हैं। अगर कोई प्रश्न करे तो ब्रह्मा जी आप क्या करते हैं जब भगवान ही सृष्टि करते हैं, तो आपने तो कहा कुछ भी वासुदेव से भिन्न नहीं है, सब कुछ तो वही करते हैं, तो फिर आप क्या करते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं उन्हीं के द्वारा रची हुई वस्तु की सृष्टि करता हूं, जैसे मिट्टी के द्वारा घड़ा बना दिया जाए, है ना। मिट्टी तो भगवान की ही है और घड़ा बनाने की कारीगरी भी भगवान ने ही सिखाई है ब्रह्मा जी को। तो संसार कैसे बनेगा, क्या होगा, ये सब भगवान के द्वारा ही प्रेरित है, ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं। ये साक्षी रूप में भी वही है, नियंत्रक रूप में भी वही है, कूटस्थ रूप में भी वही है, सबके अंतर्यामी के रूप में भी वही है। और मैं जो सृष्टि कर रहा हूं वो मैं अपनी शक्ति से नहीं कर रहा हूं, उनकी शक्ति से कर रहा हूं। इसके द्वारा ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मैं तो जीव ही हूं पर भगवान नारायण ईश्वर है, ईश्वर। तो भगवान अद्वितीय देव हैं, सब में प्रच्छन्न रूप से अवस्थित हैं, दिखते नहीं।

हैं पर सब में हैं, सर्वव्यापी हैं, सबके अंदर स्थित आत्मा है, कर्मों के अध्यक्ष हैं, सभी के निवास स्थान हैं और सब कुछ देखने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, निरुपाधिक हैं, उनकी कोई उपाधि नहीं है। ऐसे भगवान सबके अधिपति, सबके ईश्वर और समस्त लोकों के पालक हैं। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक समस्त प्राणियों के बुद्धि में वही अवस्थित हैं, इसलिए उनका एक नाम कूटस्थ भी है। कूटस्थ सबकी बुद्धि में वही अवस्थित हैं। कैसे जीवन यापन करना है, कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, ये सब एक व्यक्ति, एक जीव, चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक जो सोच पाते हैं वो सब बुद्धि के कारण सोचते हैं और उस बुद्धि में भी अवस्थित रहते हैं भगवान ही। तो बहुत ही सुंदर चर्चा हो रही है। तो देखिए, ये जो भगवान हैं, ये हैं तो निर्गुण, यानी सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इनको प्रभावित नहीं कर सकता है, लेकिन तो भी सृष्टि के लिए वो रजोगुण, स्थिति के लिए सतोगुण और प्रलय के लिए तमोगुण, इनके द्वारा वो माया को परिचालित कर लेते हैं। खुद उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन इनके द्वारा वो माया को चलाते हैं, क्योंकि माया तो अपने आप में जड़ है, माया तो चल नहीं सकती है, लेकिन भगवान की शक्ति के द्वारा सब संभव हो पाता है, है ना। तो भगवान में जो गुण समूह है, कैसा गुण समूह? यूं तो भगवान अचिंत गुणों के मालिक हैं, लेकिन ये जो तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये भगवान से प्रकट हैं, किंतु ये भगवान को प्रभावित नहीं करते, ये समझना होगा। और यही हमारे शास्त्र बताते हैं, यही हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान ही एकमात्र कारण है समस्त कार्यों के। अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। जो इसको मान लेता है, समझ लेता है, वो भजन में आगे बढ़ जाता है और उसे प्रेम मिलता है, भगवत प्राप्ति हो जाती है, यही तरीका ही है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा रही आज हमारी, इसे ही जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण, और इसी के साथ अब आज्ञा दीजिए प्रेम धारा को, कीजिए स्वीकार मेरा नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से दो दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर रहेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाला डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त बना रहेगा। भारतीय भुगतान परिषद ने की पुष्टि, व्यापारियों से डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर जारी आंदोलन के बीच राज्य सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच कल पहले दौर की वार्ता हुई। कोई ठोस कार्रवाई न होने तक छात्रों ने प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। मिजोरम में छात्र संगठन मिजो ज़िरलाई पॉल ने मिजोरम लोक सेवा आयोग के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की मांग की। असम में बाढ़ का संकट अब भी गंभीर। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 98 हुई। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। खेल के मैदान से कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिया और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो ये थे अब तक के AIR FM रेनबो मुख्य समाचार।

मेरी वाणी आकाशवाणी। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर। दिल्ली एनसीआर की आबो हवा में तैरती ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीटीएच के माध्यम से हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी आप हमें सुन सकते हैं। जहाँ तक बात दिल्ली एनसीआर की है दोस्तों, तो आज की सुबह अपने साथ लेकर आई है बारिश की ठंडी ठंडी फुहारें, मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और वीकेंड का सुकून। अगर आप खिड़कियों के शीशों पर बूंदों की दस्तक को देख रहे हैं तो यकीन मानिए मौसम आपको थोड़ा रुक कर मुस्कुरा कर इस पल को महसूस करने का निमंत्रण दे रहा है। किसी के हाथ में चाय का प्याला होगा, किसी के घर में गर्मा गर्म पकौड़ियों की तैयारियाँ चल रही होंगी, तो कोई अब भी रजाई में दुबकर सोच रहा होगा कि 5 मिनट और सो लिया जाए। अरे भाई साहब, मज़ा जो है ना उसमें है जब आप बाहर निकलें और इस मौसम को एंजॉय करें। और अगर आप उन लोगों में हैं जो आज भी काम पर निकल रहे हैं तो आपका ये सफ़र हम बनाएंगे थोड़ा और खुशनुमा। बारिश खूबसूरत ज़रूर होती है लेकिन सड़कें थोड़ी फिसलन भरी भी हो जाती हैं, जल भराव नज़र आता है। इसलिए अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा आराम से चलिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी है आपका सुरक्षित पहुँचना। बिल्कुल जी दोस्तों, वीकेंड सिर्फ छुट्टी का नाम नहीं है, ये अपने लिए थोड़ा सा समय निकालने का मौका भी है। और चलिए इस खूबसूरत दिन को एंजॉय करते हैं, इस मोहब्बत भरी एक और सुबह और उम्मीद भरा एक और दिन आपको मुबारक हो। अगले कुछ घंटे हम रहेंगे आपके साथ, बोले तो मैं आपके साथ 10 बजे तक हूँ। पूजा शुक्ला और मेरी जोड़ी आपको एंटरटेन करती रहेगी। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर में दोस्तों, और बताते रहेंगे आपको हर वो खबर जो रखती है आपसे सीधा सरोकार। तो जहाँ पर वहीं पर ही बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए और सुनते रहिए दिल से दिल तक। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली दा सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल। प्यारी प्यारे नमस्कार एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट ओनली ऑन द स्टेशन ऑफ द नेशन।

102.6 मेगाहर्ट्ज आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसड़ा रंगीला मुंडा जी गोपाल परिपत्र। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज तारीख है दोस्तों 8 अगस्त, और हर तारीख के साथ कुछ ना कुछ खास जुड़ा होता है, कुछ यादें, कुछ इतिहास के ऐसे पन्ने जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। तो चलिए उन पन्नों को थोड़ा पलटते हैं और देखते हैं कि इतिहास में आज की तारीख के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है। जिम कॉर्बेट दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सबसे बढ़िया वाला वीकेंड डेस्टिनेशन है। पता आपको, आज ही के दिन 1936 में ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो एस्टेब्लिश हुआ था। शुरुआत में इसे हेली नेशनल पार्क कहा जाता था और फिर धीरे धीरे इसका नाम बदला। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से पहले इसे राम गंगा नेशनल पार्क भी कहा गया 1954-1955 के आसपास, एंड देन फाइनली 1957 इट वाज रिक्रिस्टेंड एज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उनको ऑनर देने के लिए, रिक्रिस्टेंड जिम कॉर्बेट जी को ऑनर देने के लिए ये पार्क जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बन गया। साथ ही साथ आज ही के दिन 1942 में दोस्तों ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। उनका संदेश था करो या मरो, इस आंदोलन ने भारत की आजादी को एक नई दिशा दी। 1940 की अगर बात करें तो आज ही के दिन ब्रिटिश सरकार ने ऑगस्ट ऑफर जो है उसकी घोषणा की, जिसमें भारत के संविधान और संवैधानिक भविष्य से जुड़े कुछ प्रस्ताव जो है दोस्तों वो रखे गए थे। 1967 में दक्षिण पूर्व एशिया के 5 देशों ने मिलकर आसियान संगठन की स्थापना की थी, और 1988 में म्यांमार में लोकतंत्र की मांग को लेकर ऐतिहासिक 8888 आंदोलन जो है वो शुरू हुआ था दोस्तों। 1988 में आज ही का वो दिन था। आज रॉजर फेडरर का भी बर्थडे है, तो हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और जहां तक बात आपकी और हमारी, अगर आपकी जिंदगी में भी आज कुछ खास है तो बिल्कुल उसे चेरिश कीजिए, यादों को संजोइए, और अगर नहीं है तो आज का दिन खास बना लीजिए। समथिंग डिफरेंट शुड बी देयर टुडे विच विल बी चेरिश्ड फॉरएवर। 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर रेडियो के किशन कन्हैया आरजे गोपाल के साथ। प्रणाम, स्वीकार कीजिए पार्थ।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 7:17 यानी आपकी हमारी भाषा में सैटरडे सुबह के 7:15 हो चुके हैं दोस्तों। और हम बात कर रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट की। साल था 1942, दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में जल रही थी और भारत में आजादी की चाह अब सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की आवाज बन चुकी थी। फिर आया आज का दिन 8 अगस्त 1942, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ऐतिहासिक बैठक हुई। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के सामने एक स्पष्ट संदेश रखा कि भारत अब गुलामी स्वीकार नहीं करेगा। गांधी जी ने देशवासियों से कहा, करो या मरो, और यही वो क्षण था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक निर्णायक मोड़ दिया। 9 अगस्त 1942 की सुबह होते होते गांधीजी समेत कांग्रेस के बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को लगा कि नेतृत्व को जेल में डालकर आंदोलन को रोका जा सकता है, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन और उग्र हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हुए, गिरफ्तारियां हुई। और पता है, इस आंदोलन की सबसे बड़ी खास बात यह थी कि यह आम भारतीय का आंदोलन था। भारत छोड़ो आंदोलन ने ब्रिटिश शासन को यह एहसास करा दिया कि अब भारत पर लंबे समय तक

शासन करना आसान नहीं होगा। हालांकि आंदोलन के तत्काल बाद तो स्वतंत्रता नहीं मिली, लेकिन एक जमीन जो थी वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। और फिर 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। हर उस कोशिश को जो हमें आजादी की तरफ लेकर गई, हर उस बलिदान को जिसकी वजह से हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, नमन करते हैं। नमन करते हैं मां भारती के उन अनगिनत सपूतों को। जय हिंद।

102.6 मेगाहर्ट्ज, ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन। आप सुन रहे हैं जी गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपका फेवरेट वाला मॉर्निंग मैगजीन शो। मैं हूँ आपके साथ दिल्ली दसाड़ा नंगीला मुंडा अजय गोपाल। पेरीपाना तो नमस्कार एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड हैव अ वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल डे अहेड। मोहब्बत भरी ये सुबह और उम्मीद भरा ये दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खूबसूरत मौसम दोस्तों बाहर है इस समय, हल्की हल्की भीगी भीगी सी ये सुबह है। एंड आई एम श्योर दैट यू हैव बढ़िया वाली चाय और साथ ही साथ बढ़िया वाला म्यूजिक हमारे साथ। तो बस बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए। दोस्तों हम बात कर रहे थे आज की तारीख की, और एक ऐसा नाम आज की तारीख से जुड़ा है दोस्तों जो कहीं ना कहीं भारतीय साहित्य का आधार स्तंभ माना जाता है। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे लेखक की जिन्होंने अपनी कलम से समाज की सच्चाई, इंसानी रिश्तों और बदलते समय को बेहद संवेदनशीलता के साथ सामने रखा। मैं बात कर रहा हूँ भीष्म साहनी की। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, नाटककार और अभिनेता थे। उनका जीवन भारत के सामाजिक और राजनीतिक बदलावों का गवाह रहा है, और आज ही के दिन 1915 को उनका जन्म हुआ था। भीष्म साहनी की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है तमस। यह उपन्यास भारत के विभाजन के समय पैदा हुई सांप्रदायिक हिंसा और उसके बीच फंसे आम लोगों की पीड़ा को सामने लाता है। तमस को हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण कृतियों में गिना जाता है दोस्तों, और भारत में इस पर एक प्रसिद्ध टेलीविजन धारावाहिक भी बनाया गया। उनके अन्य चर्चित रचनाओं में बसंती, मैयादास की माड़ी और झरोखे शामिल हैं। उनकी भाषा बहुत सरल थी, लेखन में विचारों की गहराई और मानवीय संवेदनाएं बहुत मजबूत थी। वो न सिर्फ एक लेखक रहे बल्कि रंगमंच और फिल्मों में भी उन्होंने दोस्तों काम किया। वो प्रसिद्ध अभिनेता बलराज साहनी के छोटे भाई थे। उनको उनके साहित्यिक योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई सम्मान मिले। उनकी जयंती पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। 102.6 मेगाहर्ट्ज़, घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में दोस्तों इस घड़ी वक्त हुआ है 7:28, यानी कि साढ़े सुबह के आपकी हमारी भाषा में 7:30 होने को है। बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत ही प्यारा वाला गाना इस समय आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन उस गाने और मेरे बीच में है एक बहुत ही छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और जब मैं बोलता हूँ छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, आई मीन इट, सिर्फ और सिर्फ 60 सेकंड में वापस लौटूंगा मैं। कहीं जाएगा नहीं, रेडियो से बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर। सूर्य
5: घर। बिल्कुल जी, मेरे 60 सेकंड यहाँ पर पूरे हुए और मोनाली ठाकुर आपके लिए लेकर आ रही है सवार लो। सच में लुट जाऊंगा।

0: What a beautiful track. 102.6 MHz पर सुन रहे थे आप. मैं हूँ आपके साथ दिल्ली दसाड़ा रंगीला मुंडा जी गोपाल. पहली पनते नमस्कार. अवे गुड मॉर्निंग एवरीवन. देश के अलग अलग हिस्सों में आप हमें सुन रहे हैं. डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है. आप मोबाइल ऐप के जरिए कहीं भी हमें सुन सकते हैं और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ एंटरटेनमेंट की बात नहीं है. यहाँ पर हम आपको देते हैं पूरा का पूरा इंफोटेनमेंट. एक और बहुत ही बढ़िया वाला गाना मैंने क्यों किया है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बढ़िया वाली इन्फॉर्मेशन आपको देनी है. लेकिन उससे भी पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है. और बताएं, इस बार मैंने अपना छोटा सा कमर्शियल ब्रेक ना थोड़ा सा और छोटा कर दिया. मेरा मतलब 60 नहीं, सिर्फ 50 सेकेंड्स में वापस लौटूंगा मैं, सिर्फ एक मिनट से भी कम समय में. इसीलिए बोल रहा हूँ, कहीं जाएगा नहीं, रेडियो की सुई बिल्कुल भी घुमाएगा नहीं.
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ. दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है.
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत. आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं.
3: NCREPEC से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं. कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें. किसी भी

0: आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारे 50 सेकंड्स जो है वो पूरे हो चुके हैं दोस्तों। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ ये मैजिकल फ्रिक्वेंसी है और मैं हूँ आपके साथ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त, दिल्ली दसौड़ा रंगला मुंडा अजय गोपाल दोस्तों। और खबर दिल्ली की हुई लक्ष्मी योजना के बारे में दोस्तों आपने सुना, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब दिल्ली में भी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो खुल सकती हैं। कैबिनेट ने इस विधेयक को दोस्तों मंजूरी दे दी है और दिल्ली में जनरली डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी और अगर हम देखें हमारे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वहाँ पर हमको यूनिवर्सिटीज़ नज़र आती थी, अब दिल्ली में भी संभव होगा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो होंगी। उसके जो नियम हैं वो तय किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हायर एजुकेशन के लिए हम सबके पास अवेलेबल होंगी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया वाली खबर आपके लिए, साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया वाला गाना जो मैं आपको बता रहा था कि मैंने क्यों किया हुआ है। आप इस ट्रैक को सुनेंगे तो पता है क्या कहेंगे, आप कहेंगे वाह जियो मेरे लाल, मजा आ गया गोपाल। अनुपम अमोद जी गा रहे हैं इस ट्रैक को आपके लिए और फिल्म है आक्रोश। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए, क्योंकि हमारे और आपके बीच में जब बात एंटरटेनमेंट की हो तो सौदेबाजी हो ही नहीं सकते।

0: 102.6 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो आप सुन रहे हैं। ये फ्रिक्वेंसी वो फ्रिक्वेंसी है जहां पर हम आपको इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया दोस्त देते हैं। बिल्कुल, मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसा रंगीला मुंडे अजय गोपाल जी, और हम बात कर रहे हैं हर उस खबर की जो आपसे रखती है सीधा सामाजिक सरोकार। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लूंगा और मैं लगातार जो मेरी ब्रेक की ड्यूरेशन है ना वो कम करता जा रहा हूँ। एक मिनट से शुरू किया था, फिर अगला ब्रेक 50 सेकेंड्स का हुआ, और अब जो अगला ब्रेक होगा वो सिर्फ 30 सेकंड्स का होगा। लेकिन उससे पहले एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचानी है दोस्तों, और वो ये कि स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक महत्वपूर्ण एडवाइजरी जो है वो जारी की है अपने सभी पैसेंजर्स के लिए जो जाते हैं, यूज करते हैं, सफर करते हैं दिल्ली मेट्रो से। 9 अगस्त यानी कल से दोस्तों 16 अगस्त तक दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन्स पर सुरक्षा जाँच जो है वो कड़ी कर दी जाएगी। सख्त सुरक्षा जांच से आपको जाना होगा, गुजरना होगा। CISF द्वारा सभी स्टेशनों पर गहन चेकिंग की जाएगी। लंबी कतारों की संभावना है, स्पेशली पीक आवर्स में दोस्तों, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर घर से निकलिए, अपनी यात्रा को पहले से प्लान कीजिए ताकि कोई परेशानी ना हो, और पूरी तरह से कॉपरेट कीजिए सुरक्षा कर्मियों के साथ, क्योंकि आपकी हमारी देश की सुरक्षा का प्रश्न है। यही हमारी रिक्वेस्ट है आप सबसे। साथ ही साथ अगर आप ट्रैवल करते हैं कांवड़ रूट पर दोस्तों, तो भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर ध्यान रखें, भावनाओं का ध्यान रखें, सुरक्षा का ध्यान रखें, और कोशिश करें हम मिलकर ये जो अलग अलग इवेंट्स देश में इस समय चल रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं, कांवड़ चल रही है, मौसम ख़राब होने की वजह से सड़कें थोड़ी सी बदहाल इस मौसम में हो जाती हैं, इन सभी के मद्देनज़र बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सुरक्षा का ध्यान ज़रूर रखें। और साथ ही साथ हमारे साथ चलने वाले जो और हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे साथी नागरिक हैं, उनका भी ध्यान रखें। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर अब वो वाला गाना जो अब आपके लिए आने वाला है, लेकिन मैंने कहा ना कि उससे पहले एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और जब हम बोलते हैं छोटा सा ब्रेक, आई मीन इट, 30 सेकेंड्स दिस टाइम।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी,

0: क्या है बब्बई, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर अब निकल चुका एक बेहतरीन ट्रैक दोस्तों आपके लिए, अलग अलग सिंगर्स जो हैं हम आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी हो, कोई भी महफिल अरिजीत के बगैर पूरी नहीं हो सकती। तो आपके लिए ये वाला गाना जो बताता है आपका और हमारा राब्ता। और 2.6 मेगाहर्ट्ज़ पर घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 7:45, यानी आपकी हमारी भाषा में संडे सुबह के 7:45 हो चुके हैं।

102.6 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो सुन रहे हैं आप। दिल्ली का सोना रंगीला मंडा हाजी गोपाल आपके साथ है। और दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हर उस खबर की जो रखती है आपसे सीधा सामाजिक सरोकार, और अगर मौसम की बात नहीं हुई तो बात अधूरी रह जाएगी। दिल्ली वालों, बहुत एंजॉय किया आपने कल का वेदर, आई एम श्योर बहुत ही बढ़िया वाली झमाझम बारिश। और एंजॉय दोनों तरह से हो सकता है, या तो सड़कों पर धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए FM रेनबो सुनते हुए, या फिर घर पर बैठ के बढ़िया पकौड़ों का मजा आपने लिया होगा। आई एम नॉट श्योर विच साइड ऑफ द फन यू वो दे यस्टरडे, लेकिन आज की अगर बात करें तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा आपको बारिश से। अब आप खुश होंगे या नहीं वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं सच बोलूंगा बेसिस द फोरकास्ट प्रेडिक्शन कमिंग अप दोस्तों। और ये कह रहा है कि इस समय मौसम जो है क्लाउडी रहेगा, बारिश की संभावना बहुत कम है, हल्की सी ड्रिजलिंग इस समय हो सकती है दोस्तों। और अगर मैं आवरली बेसिस के फोरकास्ट की बात करूँ, 10 बजे के बाद बारिश की हल्की हल्की संभावना बन सकती है दोस्तों। 10:30 से लेकर के लगभग 2 बजे तक अच्छी संभावना है बारिश होने की, लगभग 80% चांसेस हैं बारिश होने के दोस्तों। और उसके बाद ये संभावनाएं लगातार कम होती जाएंगी धीरे धीरे। हालांकि आज थोड़ा सा गर्मी भी होने की संभावना है, क्योंकि अगर बारिश नहीं हुई तो उमस बढ़ेगी भाई साहब, और 33 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जा सकता है अगर मैं आज की बात करूँ। कल वापस बढ़िया वाला मौसम रहने वाला है, क्योंकि मैं वापस लौटूंगा आपके पास 7 से 8 के बीच कल सुबह। लेकिन अभी के लिए एक और बढ़िया वाला गाना आपके लिए, इस बार अरमान मलिक साहब गा रहे हैं, बहुत ही प्यारा वाला है जी। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, स्टेशन ऑफ द नेशन बजाते रहिए।

0: लेकिन हम तो कहेंगे और कहेंगे रेडियो पर 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं हमारे साथ गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, आपका फेवरेट वाला मॉर्निंग मैगजीन शो। मैं हूं आपके साथ आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सगा, आपका दोस्त रेडियो का किशन करें यार जी गोपाल। प्रणाम स्वीकार कीजिए पार्थ, साथ ही साथ ये वाली खबर भी स्वीकार कीजिए जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि आज परम प्रज्ञा नामक एक AI जो है, हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर, सो कॉल्ड पौधी सुपर डुपर कंप्यूटर जो है AI पर आधारित दोस्तों, उसे समर्पित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और सोनीपत कैंपस में दोस्तों इसका उद्घाटन किया जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यह हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं को तेज करेगा दोस्तों, हमारी जो रिसर्च है उसे कहीं ना कहीं और प्रमोट करेगा, डेटा साइंस एडवांस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में जो हमारा रिसर्च है उसे और ज्यादा स्पीड यहां पर मिलेगी। ये बढ़िया वाली खबर आपके लिए थी दोस्तों, और अब इसी खबर के साथ मैं यहां पर रुकूंगा बिकॉज आई नीड अ ब्रेक एंड दिस टाइम दिस ब्रेक विल बी लिटिल लॉन्गर बिकॉज पूजा स्टूडियो में है और वो अब गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर का अगला जो चरण है 8 से 9 के बीच वो रहेंगे आपके साथ।
1: बिल्कुल, गुड मॉर्निंग गोपाल को भी और सभी सभी श्रोताओं को भी। इतनी सुंदर जानकारियां, इतने बेहतरीन गीतों के बाद गोपाल मुझे भी अब तुम्हारे लेवल पर आने के लिए बहुत कुछ करना होगा।
0: बिल्कुल नहीं, हम तो आपके लेवल पे आने के बाद हमें लगा कि यस वी हैव डन इट।
1: लेकिन हाँ गोपाल, अब मौसम लेवल पर आ गया है, थोड़ी थोड़ी धूप है जो हो सकता है राहत पहुंचाए
0: ऐसा
1: कल की तबाही के बाद।
0: दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। हमने बताया कि 10:30 के आसपास वापस बारिश होने की संभावना है, लेकिन आप बहरहाल बढ़िया से एंजॉय कीजिए।
1: वीकेंड्स हैं
0: और हाँ पता है आपको बड़ा स्पेशल्स है कि हर शो के लिए एक अलग सा जो ऑरा है वो नजर आता है पूजा के लिए, और
1: खासियत है FM रेनबो की।
0: बिल्कुल, और इस वैरायटी के साथ ये वाला गाना पूजा आपके लिए और साथ ही साथ उन सब के लिए जो दिल से सुनते हैं द स्टेशन ऑफ द नेशन। आई विल बी बैक 9 बजे, बस कहीं जाएगा नहीं, रेडियो से बिल्कुल भी घुमाइएगा नहीं।

एफएम रेनबो पर लीजिए प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 97वें दीक्षांत समारोह में होनहार विद्यार्थियों को आईआईटी दिल्ली के सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भुगतान उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए मुफ्त बना रहेगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के विरोध में आंदोलन के बीच राज्य सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच कल पहली दौर की वार्ता हुई। कोई ठोस कार्रवाई न होने तक विद्यार्थियों ने प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। मिजोरम में छात्र संगठन मिजो जिरलाई पॉल ने मिजोरम लोक सेवा आयोग के खिलाफ आंदोलन तेज करने की घोषणा की, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की मांग की। भारत ने प्रस्तावित एफसीआरए विधेयक के बारे में अमेरिकी सीनेटर की आपत्ति खारिज की, कहा यह विधेयक देश का आंतरिक मामला। अमेरिकी सीनेट ने तेल खरीद के मुद्दे पर रूस तथा चीन और अन्य देशों पर 100% शुल्क लगाने संबंधी विधेयक पारित किया। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर, बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 98 हुई। पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल सेमीफाइनल में आज भारत की अश्मिता चालेहा और रक्षिता रामराज आमने सामने होंगी। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान आनंद ने अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

ये इंतजार भी सिर्फ उन्हीं का होता है जो बहुत खास होते हैं, बहुत सच्चे होते हैं, और जिससे आपका होता है दिल से दिल का कनेक्शन, जैसे हमारा और आपका ये पक्की वाली दोस्ती सिर्फ और सिर्फ एफएम रेनबो, जो कि है स्टेशन ऑफ द नेशन। वैसे जो अच्छे दोस्त होते हैं वो सफेद रंग की तरह होते हैं, उसमें कोई भी रंग मिलाइए आप सफेद में तो नया रंग बना सकते हैं, पर दुनिया के सारे रंग मिलकर भी ना सफेद रंग नहीं बना सकते। रिश्ते की इसी डोर से बंधे हैं हम और सिर्फ एफएम रेनबो के माध्यम से। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, मेरा नाम पूजा शुक्ला।

नाम लिख लिया बिन्नू।

नाम उन्हीं का लिखते हैं जिनसे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, नाम उन्हीं का लिखा जाता है, इतिहास में उन्हीं का नाम दर्ज होता है जो अपने कर्म को, अपने फर्ज को, अपने देश को सर्वोपरि मानते हैं। और इन्हीं अनगिनत नामों की गूंज है आज फिजा में। जी हाँ, जश्न आजादी की तैयारी, हर घर लहराता तिरंगा हमारी आन बान शान बयां कर रहा है। सलाम हमारे तिरंगे को, सलाम हमारे जाबाजों को, हर घर हमारा गौरव, हमारा तिरंगा यूं ही शान के साथ बस लहराता रहे, लहराता रहे, लहराता रहे।

इसी जोश इसी जुनून के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हर दिन को इतिहास बना जाते हैं, और इसीलिए आज का दिन जो है 8 अगस्त का दिन ऐतिहासिक है। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े और निर्णायक जन आंदोलन का दिन है। जी हाँ, तारीख थी 8 अगस्त 1942। मुंबई का ग्वालिया टैंक मैदान देशभक्तों की भीड़ से खचा खच भरा था। मन से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को ललकारा और एक ऐसा महामंत्र दिया जो हर भारतीय के दिल में बस गया, करो या मरो। गांधी जी ने कहा था कि हम या तो भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। अगले ही दिन यानी 9 अगस्त की सुबह ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी समेत तमाम बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। क्या इससे आंदोलन रुका? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही अंग्रेजों ने इस क्रूरता को दबाने की कोशिश की, लेकिन इस आंदोलन ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। इसने दुनिया को साबित कर दिया कि अब भारत और अधिक समय तक गुलाम नहीं रहना चाहता। भारत छोड़ो आंदोलन ने साबित कर दिया कि आज़ादी दूर नहीं, और महज 5 साल बाद 1947 में हमारा देश आखिरकार आज़ाद हो गया। जय हिंद, जय भारत, और आज हमारे पांव बादलों पर हैं। FM रेनबो पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। मेरा नाम पूजा शुक्ला।

यूं ही जिंदगी रॉक करती रहेगी, यूं ही आप आगे बढ़ते रहेंगे, यूं ही अपने सपनों को चेज करते रहेंगे अगर आप में हिम्मत है, ऊर्जा है और सही रास्ते का ज्ञान है। वही रोज हम सपने देखते हैं और सपनों में क्या क्या नहीं देखते, हर वो चीज जो हमारी जिंदगी को बनाती है बेहतरीन, हसीन। और सच मानिए, ये सपने देखने बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि सपने हमें उम्मीद जगाते हैं। FM रेनबो स्टेशन ऑफ द नेशन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR। भाई अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का, सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का, बस सही रास्तों पर चलते रहिए, मंजिल जरूर जरूर जरूर मिलेगी।

जी हाँ, दिल है हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान का गौरव आज जगह जगह हर घर तिरंगा से पूरा देश चमक रहा है। और फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। आप जुड़े रहिए एफएम रेनबो, जो कि है स्टेशन ऑफ द नेशन।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
6: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
5: अरे मम्मी 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
6: हैं? इतनी जल्दी?
5: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

वैसे कल दिल्ली एनसीआर में भी कुछ ऐसा ही लगने लगा था। जी हाँ, दिन भर बारिश होती रही और दिल्ली एनसीआर में जब आप निकल रहे होंगे, गुजर रहे होंगे, घर वापस लौट रहे होंगे, दफ्तर जा रहे होंगे, तो लग रहा था कि एक बड़ा समंदर है जिसे पार करके जाना है। अब हो ये रहा है कि तीन दिन से लगातार मानसून की सक्रियता है, इस वजह से बारिश हो रही है और आज के लिए भी मानसून विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हवा हमारी बिल्कुल साफ सुथरी बनी हुई है और तापमान का अंतर घटा है, लेकिन उमस से हमें जूझना होगा। बहरहाल वीकेंड्स हैं, अगर कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं तो मौसम का हाल और ट्रैफिक अपडेट लेकर ही आगे बढ़ें। इसके लिए सुनते रहें FM रेनबो, स्टेशन ऑफ द नेशन, सिर्फ आपका वाला। फिलहाल सुन रहे हैं कार्यक्रम

वैसे जो पसंद हो या जिसे पसंद करना हो, मन करता है बार बार उसको देखने का। लेकिन खैर ये बात अलग है कि चेहरे से आप किसी के व्यवहार, किसी के चरित्र को पता नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जब हम कुछ खरीदने जाते हैं, वो भी खाने का पैकेट कोई सील बंद हो, तो बड़ा मुश्किल होता है जज करना कि ये ठीक है, ख़राब है या नहीं, जब तक हम उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देख लें तो। लेकिन जापान में इसका एक बड़ा ही अच्छा सर्वे, एक अच्छा रिसर्च है जो मैंने पढ़ा, वो मैं आप तक पहुंचाती हूं। तो जी, पैकेट में बंद खाद्य पदार्थ भले ही कई बार हमें ताज़ा लगते हैं, लेकिन उसके अंदर बैक्टीरियाज होते हैं। और इस समस्या का समाधान ढूंढा है जापान स्थित क्योशु यूनिवर्सिटी की एक्सपर्ट्स ने। एक ऐसी स्मार्ट हाइड्रोजेल पैकेजिंग फिल्म तैयार की है जो खराब भोजन होने पर, भोजन अगर खराब हो जाता है तो वो रंग बदल लेती है, तो खरीदार पैकेट को खोले बिना ही उसकी ताजगी का आसानी से पता लगा सकेंगे। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैकेट बंद भोजन में जब बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं तो कुछ ऐसी गैसें बनती हैं जिससे जो खाना है वो खराब होने लगता है। तो इस बदलाव को पकड़ने के लिए बैंगनी शकरकंद से मिले एंथोसाइनिन नामक प्राकृतिक पिगमेंट का इस्तेमाल किया गया है। जैसे ही पैकेट के अंदर खतरनाक गैसें बढ़ेंगी, ये पिगमेंट बैंगनी लाल रंग से बदलकर पीला हरा हो जाता है। ये पैकेजिंग पौधों से बनी है और पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है, और दावा ये है कि इससे बैक्टीरिया भी अंदर नहीं घुस पाते। तो है ना शानदार जानकारी। ऐसी ही जबरदस्त और शानदार जानकारियों के लिए बस जुड़े रहिए FM रेनबो, जो है स्टेशन ऑफ द

0: आपकी वाणी आकाशवाणी,
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: है बब्बल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

जो भी आपके साथ है, जो भी आपके साथ आने वाला है, उसका स्वागत कीजिए। इस जिंदगी को जिसकी जरूरत है वो है आपकी दीवानगी। बस ये दीवानगी अपनी बरकरार रखिए, मस्त रहिए, मगन रहिए। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना बिताएं। वैसे बीते समय के साथ अब आने वाला जो समय है, जो आने वाले घंटे हैं, बहुत कुछ खास है एफएम रेनबो पर आपके लिए। जैसे कि 10 से 11 आपके साथ आप सुन सकते हैं वेस्टर्न म्यूजिक, 11 से 12 कार्यक्रम बॉलीवुड ट्रेल्स मनीष आजाद के साथ। लेकिन फिलहाल स्वागत कीजिए गोपाल का, क्योंकि आपके साथ वो आ गए हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूजा शुक्ला का नमस्कार।

आकाशवाणी एफएम रेनबो पर प्रस्तुत हैं अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। यूपीआई लेनदेन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने किया स्पष्ट।

उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन आज से दो दिन की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर यात्रा करेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पहली औपचारिक बातचीत की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में 9 से 17 अगस्त तक वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्व पटल पर रूस से तेल खरीदने वाले 5 देशों पर 100% शुल्क लगाने का विधेयक अमेरिका के सीनेट में पारित हो गया है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने किया। भारत और भूटान ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। खेल के मैदान से कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अश्विता चालिया और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित रैपिड एंड ब्लिंड्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। तो ये थे अब तक के AIR FM रेनबो मुख्य समाचार।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में तैरती ध्वनि तरंगे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज और देश भर में अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पर आप हमें सुन रहे हैं। डीटीएच के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचते हैं और साथ ही साथ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू कहीं भी कभी भी मोबाइल ऐप के जरिए आप हमें सुन सकते हैं। सैटरडे सुबह 9 बज चुके हैं दोस्तों, और ये वो समय होता है जब हम आपसे मुखातिब होते हैं लेकर आपके लिए दिल की तराने, गाने नए पुराने, यानी कि बैक टू बैक अंदाज में आप सुनेंगे आज के जमाने के सुपरहिट ट्रैक्स, नॉटी 90s का तड़का और साथ ही साथ कुछ बेहतरीन ओल्डन गोल्डीज भी। और मैं ये सब लेकर आपके साथ हाजिर हूँ, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, आपका दोस्त, बोले तो दिल्ली दसौड़ा रंगीला मुंडा जी गोपाल। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, और शुरुआत करते हैं नॉडी 90s के कुछ बेहतरीन ट्रैक के साथ। उसके बाद हम अपने पहले पड़ाव पर आपको लेके जाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत ओल्डन गोल्डीज के लिए। लेकिन ये सब सुनने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, बने रहना है, बैठे रहना है, टिके रहना है, चिपके रहना है और सुनते रहना है द स्टेशन ऑफ द नेशन। बहरहाल कुमार सानू के साथ शुरू करते हैं आज का शो, जहां पर दीवाना फिल्म से हम कह रहे हैं सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं।

ये है आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो। आप सुन रहे हैं शो कॉल दिल के तराने, गाने नए पुराने, बैक टू बैक अंदाज में म्यूजिक आपके लिए 9 से 10 के बीच रोज सुबह।

सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक
2: 102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप हमारे साथ सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने दोस्तों, और घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 9:16 यानी कि आपकी हमारी भाषा में सरडे सुबह के 9:15 हो चुके हैं दोस्तों। और ये पड़ाव है एक ओल्डन गोल्डीज का। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ट्रैक जो कहीं ना कहीं हमें याद दिलाता है बहुत ही खूबसूरत लम्हों की, और ये जो ट्रैक मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों, ये है फ्रॉम द फिल्म चुपके चुपके, 1975 की मशहूर फिल्म दोस्तों। खूबसूरत सावन का ये गीत, साथ ही साथ विरह भी इसमें नजर आता है। लता दी ने इसे गाया, एसडी बर्मन साहब का संगीत और आनंद बख्शी जी ने इसके बोल लिखे दोस्तों, और धर्मेंद्र शर्मिला टैगोर इस फिल्म में अभिनय से कहीं ना कहीं अपनी एक अलग छाप छोड़ते हैं, और निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी का तो कहना ही क्या। ओरिजिनल साउंड ट्रैक आपके लिए दोस्तों, और पता है आपको कि ये फिल्म कहीं ना कहीं ना सिर्फ एक हल्की फुल्की कॉमेडी के तौर पर याद की जाती है बल्कि बहुत ही मजाकिया परिस्थितियों में कई बार फंसती हुई भी नजर आती है दोस्तों। और जैसे मैंने कहा कि जनरली सावन को आमतौर पर मिलन और रोमांस का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इस ट्रैक में कहीं ना कहीं अगर देखें तो इस खूबसूरत मौसम में किस तरह से दूरियों का एहसास होता है वो बताया गया है। तो चलिए इंजॉय कीजिए हमारे साथ ये ट्रैक सिर्फ और सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने, दिल्ली दसौड़ा रंगला मुंडा अजय गोपाल है आपके साथ। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन।

और इसी बात को जब एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब 90s के अंदाज में कहते हैं तो कुछ इस तरह से कहते हैं। आप सुन रहे हैं हमारे साथ दिल की तरह ने गाने नए पुराने नॉनस्टॉप अंदाज में, बेहतरीन म्यूजिक सिर्फ और सिर्फ स्टेशन ऑफ द नेशन पर

और अब अभिजीत दा आपके साथ जुड़ रहे हैं लेकर ये वाला ट्रैक सुनो ना 102.6 मेगाहर्ट्ज पर बैक टू बैक अंदाज में आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने रेडियो के किशन कन्हैया आरजे गोपाल के साथ।

102.6 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं दिल के तराने गाने नए पुराने बैक टू बैक अंदाज में आज के जमाने के सुपर ट्रैक्स ओल्डन गोल्डीज नॉटी 90s का बेहतरीन म्यूजिक और उन सब के बीच कुछ खबरें ऐसी जो आपके लिए रखती हैं सीधा सामाजिक सरोकार। दोस्तों फटाफट आपको बता दें कि कैसा है मौसम का हाल। मौसम कह रहा है कि भाई बारिश की संभावना बनी हुई है दिल्ली एनसीआर में। समय लगभग 10:30 के आसपास 70-80% की संभावना है दिल्ली में वापस बूंदाबांदी और बारिश की। हालांकि इस समय ज़्यादातर इलाकों में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन मौसम धीरे धीरे अंगड़ाई लेना शुरू कर चुका है। 31 degrees centigrade इज द टेम्परेचर एट दिस मोमेंट। इट्स गोइंग टू बी मोर और लेस द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे दोस्तों, और धीरे धीरे ये 27-28 degrees centigrade पर आकर सेटल होगा। साथ ही साथ ये समय है हमारे दूसरे पड़ाव का यानी कि दूसरे ओल्डन गोल्डीज का दोस्तों, घड़ी घड़ी घड़ी बदलती घड़ी में इस घड़ी वक्त हुआ है 9:32 और जो ट्रैक मैं अब आपके लिए लेकर आ रहा हूँ वो मैं लेके आया हूँ आपके लिए फ्रॉम द फिल्म, जी हाँ ये है ज्वेल थी फॉर 1967 में दोस्तों फिल्म आई, देवानंद साहब ने इसे बनाया और विजय आनंद जी ने प्यार से गोल्डी कहा जाता था उन्होंने इसे डायरेक्ट किया दोस्तों। देवानंद साहब, वैजयंती माला, अशोक कुमार, तनुजा, हेलेन, पूरी की पूरी मैं कहूँगा कि जो टॉप क्लास टैलेंट था हमारा वो हमको इस फिल्म में नज़र आता है दोस्तों। और एक ट्राइविया इस फिल्म के बारे में बहुत ही दिलचस्प बात है कि अशोक कुमार जी की हार्ट सर्जरी हो चुकी थी इस फिल्म से पहले और उन्होंने शर्त रखी थी कि ये क्राइम थ्रिलर था और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई भी वो शूट नहीं करेंगे जो कि उन्हें फिजिकली जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो, और साथ ही साथ टाइम को लेकर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे। और ये जो ट्रैक मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ दोस्तों, ये किशोर दा ने गाया, लता दी के साथ, एस डी बर्मन साहब का संगीत, मजरू सुल्तानपुरी साहब ने गीत लिखा दोस्तों, और वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक जो कहीं ना कहीं खूबसूरत मौसम के साथ साथ दो दीवानों के दिल के अरमानों को बयां करता है।

अनदर वन बैक टू बैक अंदाज में आपके लिए निकल चुका है। जेम्स गा रहे हैं इस ट्रैक को, आपके लिए भीगी भीगी सी है बातें 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं दिल के तराने, गाने नए पुराने बैक टू बैक अंदाज में। ये म्यूजिकल सफर रोज सुबह 9 से 10 के बीच आकाशवाणी के सतरंगी रेडियो स्टेशन रेनबो पर। आज मैं हूं आपके साथ दिल्ली दसाना रंगीला मुंडा अजय गोपाल। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन।

एंड नाउ द नेक्स्ट टू ट्रैक्स कमिंग अप दोस्तों, जहां पर आपको नॉटी 90s की शरारत भी नजर आएगी लिरिक्स के तौर पर और आज के जमाने का म्यूजिक भी नजर आएगा। शुरू करते हैं इस वाले ट्रैक से, फ्रॉम द फिल्म पति पत्नी और वो रूप दी रानी।

हमारे साथ बने रहिए, बैठे रहिए, टिके रहिए, चिपके रहिए, इतना ही करना है आपको, क्योंकि बेहतरीन अंदाज में बैक टू बैक म्यूजिक अगर आपको कहीं मिलता है तो गारंटी से बोलता हूँ यहाँ से बेहतर मिल ही नहीं सकता। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ एक मैजिकल फ्रिक्वेंसी है, आकाशवाणी का सतरंगी रेडियो स्टेशन इसे हम कहते हैं। शो है दिल के तराने, गाने नए पुराने, और मैं हूँ आपके साथ दिल्ली दसौड़ा रंगीला मुंडा अजय गोपाल। पहली पन्ना नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम श्योर दिन की शुरुआत अब अपने पूरे शबाब पर होगी, और अब हम पहुंचे हैं अपने अंतिम पड़ाव पर जहां पर बात ओल्डन गोल्डीज की आती है दोस्तों। और ये ट्रैक वापस मैं आपके लिए लेकर आया हूं किशोरदा की आवाज़ में लता दी के साथ, बिकॉज इस कॉम्बिनेशन का ना ट्रस्ट में कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इट इज़ कम्प्लीटली एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और ये जो गीत है ये है रिमझिम गिरे सावन, 1979 में फिल्म आई मंजिल फिल्म से दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक जो कि मौसम को कहीं ना कहीं पूरी तरह से सूट करता है। और पता है आपको, ये जो ट्रैक है ना, इसके लिए कोई सेट नहीं बनाया गया था, बिल्कुल असली बारिश के बीच मुंबई की सड़कों पर इस ट्रैक को कहीं ना कहीं शूट किया गया दोस्तों। और अमिताभ बच्चन के साथ मौसमी चटर्जी की जो केमिस्ट्री है ना, एकदम बढ़िया सी नज़र आती है इस फिल्म में। दो लोग, मुंबई की बारिश, एक लंबी सी वॉक, अगर जहन में कुछ इस तरह के इमोशंस चल रहे हैं तो दिस इज़ फॉर यू। बस इतना चेंज कर दीजिए, मुंबई की बारिश के बदले दिल्ली की बारिश। तो दो लोग, दिल्ली की बारिश और एक लंबी वॉक इस ट्रैक के साथ। वैसे 10:30 के आसपास फोरकास्ट है बारिश का।

बिल्कुल जी, जो भी अगन जो भी लगन लगी हुई है से लगे रहने दीजिए, क्योंकि हम आपके साथ लगातार जुड़े हुए और लेकर आ रहे हैं बैक टू बैक अंदाज में दिल की तरह ने गाने नए पुराने। मैं हूं आपके साथ दिल्ली दा सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टेक इट अवे दिस ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग अप नेक्स्ट ऑन द स्टेशन ऑफ द नेशन। मुझे

दूरी में रहना माहौल तो होता है, लेकिन क्या करूं, लगातार फोन आ रहे हैं कि चन्ना घर आ जावे और मुझे जाना पड़ेगा। भाई साहब 9:56 हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगी आपके साथ, बिल्कुल सेम फीलिंग के साथ शो होगा, लेकिन वेस्टर्न अंदाज में होगा, जहां पर कुछ बेहतरीन ओल्डन गोल्डीज आप सुन पाएंगे। लेकिन अभी के लिए आपका ये दोस्त, ये मित्र, आपका मित्र, आपका बंधु, आपका सखा, दिल्ली दा सोना रंगीला मुंडा अजय गोपाल आपसे अनुमति चाहता है। रेनबो की सतरंगी दुनिया में कुछ और सतरंगी सपनों को बुनता हुआ फिर मिलूंगा मैं आपसे। तब तक के लिए बस

Good morning, this is Akashvani and we are here with

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड वेलकम टू द मैचेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 एफएम रेनबो। आई एम अशानी एंड योर कंपेनियन फॉर द नेक्स्ट आवर ऑफ अनफॉरगेटेबल क्लासिक्स। दे से म्यूजिक ट्रेवल्स फार्दर देन वर्ड्स एंड द ग्रेटेस्ट सॉन्ग्स हैव अ वे ऑफ फाइंडिंग अस एवरीवेयर। सो लेट्स बिगिन विद अ सॉन्ग हुज टाइटल कैप्चर्स दैट वेरी फीलिंग। हियर इज एवरीवेयर बाय फ्लीटवुड मैक।

0: Don't wander too far. We'll be right back with more timeless favorites after this short break.
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: Welcome back to the Matchless Music Hour on 102.6 FM Rainbow. You're with me, Ashani, and here's a quick traffic advisory for you. Diversions and restrictions are in place along stretches of NH44, the Outer Ring Road and adjoining roads. Consider Narela Bhavana Road or Burari Road as alternatives, and with the monsoon showers around, do exercise extra caution on wet roads and expect slower movement and possible waterlogging on low-lying stretches. So plan ahead, leave a little early and

0: 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय कालिखा से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
2: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
1: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
4: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 FM रेनबो। यू आर विद मी एशानी। एज प्रॉमिस्ड बिफोर द ब्रेक, हियर इज समथिंग एक्साइटिंग इफ यू आर लुकिंग टू मेक द मोस्ट ऑफ योर सैटरडे इवनिंग। सुंदर नर्सरी इज होस्टिंग इट्स इवनिंग बाजार फ्रॉम 5 PM टू 9 PM, bringing together festive Tej vibes with delicious ghevar, regional food stalls, live folk music, cultural performances and a beautiful open air ambience. Whether you are a foodie, a cultural enthusiast or simply looking for a relaxed evening, this could make for a delightful outing. The next recommendation is after the next song.

0: The song may say mai chali, but you don't go anywhere. We will be right back after a short break with more musical gems.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है, जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद

भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाए।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: वेलकम बैक टू द मैचलेस म्यूजिक आवर ऑन 102.6 FM रेनबो। यू आर विद मी ऐशानी। The time on the studio clock is 10:55, which means we just have 5 minutes left. So let's dive straight into our next track, What You Gonna Do by Tom Jones.

पेश है AIRFM रेन बोंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करेंगे। UPI लेनदेन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निशुल्क बना रहेगा, भारतीय भुगतान परिषद ने किया स्पष्ट। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 2 दिन की अंडमान और निकोबार द्वीप समूह यात्रा पर रहेंगे। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड UNUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। झारखंड सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों से पहली औपचारिक बातचीत की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें सदस्य देशों की सांस्कृतिक विरासत, संग्रहालय, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर चर्चा होगी। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार भारतीय शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के कार्यक्रमों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंकी साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में 9 से 17 अगस्त तक वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग पर कल नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने किया। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की अस्मिता चालिहा

और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ये थे AIRFM रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार।

हाँ जी, मैंने कहा कहाँ घूमने का इरादा है, क्योंकि बारिश वाला कल वाला दिन जो था, आपको लगा कि हाँ भाई सब कुछ गीला गीला सा हो चुका है, उससे आपको बाहर लेकर चलते हैं साहब। ये रोजाना की जिंदगी मुंबई के अंदर रहती है। जी हाँ, वहां पर जिंदगी रुकती नहीं है, चाहे मैं कह रहा हूं पैरों तलक ही, घुटने तलक ही, चाहे आपका अगला पहिया भी डूब गया हो, लेकिन वहां पर साहब वो चलते रहते हैं। मैंने अक्सर मुंबई के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ऑफिसर्स के बाहर एक बड़ी बाल्टी रखी देखी है। क्या उसके अंदर वो क्या करते हैं, जो भी छाता लेकर आता है उसके अंदर छाता डाल देता है, क्यों, ताकि जो छाते का पानी उसमें निकल जाए। बाहर जो भी वो प्लास्टिक्स की वो स्लीपर्स डाल के लाते हैं वो सब के सब बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए काम जैसा भी है उस हिसाब से चलता रहता है, बशर्ते कि वो लेट भी ना हो, इसके लिए भी वो समय का ध्यान रखते हैं, क्योंकि मुंबई की जो लोकल है वो तो खैर अपने आप में कमाल है ही, सब कुछ कमाल है, लेकिन साहब ये कमाल बॉलीवुड की नगरी भी करती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसलिए वहां की हलचल, ताजा खबरों के साथ आज का बॉलीवुड ट्रेल्स लेकर हाजिर रेडियो पर आपका दोस्त मनीष आजाद, रेडियो वाला। तो आपको लेके चलते हैं आपके अपने चहेते सेलिब्रिटी, जो आप जिन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनकी दुनिया में मुलाकात रेडियो के जरिए कराएंगे आपको। तो बंदे का सल्यूट है जी, बंदा आपको प्यार से नमस्ते नमस्ते हेलो हेलो बोल लिया है, ये गाना सुन लियो, उसके बाद वापस

देश अपनी मनाने जा रहा है 79वीं वर्षगांठ, है ना, स्वतंत्रता दिवस की। तो आइए फिर स्वतंत्रता दिवस के लिए, जब कहते हैं कि जब इस समय अभियान भी चल रहा है कौन सा, हर घर तिरंगा, अगर आपके पास भी आपके घर में अगर तिरंगा है तो उसको आप भी अपनी छत पर लगाइए। सच में आप जिस दिन आप लगाएंगे उस दिन, वैसे तो अगर लगा होगा तो पहले से बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर आप लगाएंगे ना, सच में अपने आप में अच्छी वाली फीलिंग आती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं साहब कि आपने देश के लिए कुछ तो किया।

साहब वतन की खातिर करने के लिए बहुत कुछ होता है जब इनकी ट्रेनिंग्स होती है ना। वतन की खातिर मरेगा, जी सर। वतन की खातिर प्राण देगा, जी सर। वतन की खातिर इस देश को साफ करेगा। आवाज ही नहीं आई है ना साहब। ये भी छोटे छोटे से काम है सच में। जरूरी थोड़ी है कि आप बॉर्डर पर जाएंगे तभी आप वतन के लिए कुछ करेंगे। आप वतन पर इस देश को साफ रखकर, इस देश को आगे बढ़ाकर, लोगों की मदद कर उनका सहयोग देकर, ये भी साहब वतन के लिए ना। क्योंकि वतन किसी एक का तो है नहीं साहब, सभी का है। जब वतन की बात आती है तो वतन का ही हिसाब किताब रखना चाहिए साहब। वतन सर्वोपरि है, देश से ऊपर कुछ भी नहीं। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा साहब। आने वाली जनरेशंस जो भी है, जो भी आप देखेंगे आपके घर के अंदर, आपके भी बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे हैं, इस देश की जो बागडोर है ना साहब, उन्हीं के कांधों पर होगी। तो सही शिक्षा उनको देना और सही संस्कार उनको देना ताकि वो देश को आगे लेके जा सके। अब बॉलीवुड ट्रेस की बात है तो बॉलीवुड ट्रेस के अंदर भी आपके ओटीटी पर भी साहब एक ऐसी जबरदस्त एक सीरीज शुरू हुई है जिसको देख करना साहब, मतलब मैं तो क्या ही बताऊं। जैसे मैंने उसको प्रीमियर देखा एकदम से ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। रिलीज हुई कल नेटफ्लिक्स पर, ऑपरेशन सफेद सागर। आप जब इसको देखेंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं अपने आप को वहां पर देख रहा हूं। जब अपने आप इंसान उससे रिलेट करता है ना, रिलेट करने के बाद चीजों को लगता है कि हाँ कि हम जो आज यहां पर सीना तान कर बैठे हैं साहब, इसके पीछे बहुत संघर्ष और बहुत पीड़ा वाली कहानियां भी हैं। तो वो एक ऐसी कहानी, एक ऐसे फाइटर की कहानियां कि जिसकी वाइफ उस समय प्रेग्नेंट होती है, कहा जाता है कि साहब नहीं जाना, लेकिन उसने कहा साहब ये जो एक वजह है ये मुझे देश के लिए जाने के लिए रोक नहीं सकती। अब इस लाइन से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या होगी ये। लेकिन इसके अंदर साहब बड़े सारे कलाकारों ने काम किया है, लेकिन हम बात करेंगे इसके अंदर जिम्मी शेरगिल साहब की। आज का सवाल भी वहीं से है कि जिम्मी शेरगिल साहब की देशभक्ति के ऊपर एक पहले भी फिल्म आ चुकी है जिसके अंदर भी उन्होंने फाइटर का ही एक रोल निभाया था। तो आज आपको बस उस फिल्म का नाम बता देना है, 9868107070। ये मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज भेज देंगे तो पता लग जाएगा। स्टंप का जो कार्यक्रम होगा तब तक हम आपके जो मैसेज आएंगे देखते रहेंगे, तो जवाब आपका फिर हमारा फोन आपको, तो हो जाएगा हिसाब, ठीक रहेगा ना। तब तक राजा अवस्थी साहब है ना, याद है ना, तनु वेड्स रिटर्न, मनु रिटर्न, ज्योति नूरान।

और कोई आपको इतने प्यार से दो तीन बारी बोल दे बावली होगी के हैं, अरे बावड़ा हो रहा के, और किसी को ऐसे बोल दो तब तो एकदम से पटाख से पीछे से आएगा और कि लपाक कर आपको बोलेगा भाई साहब क्या बोल रहे हो आप, ये आपको तमीज नहीं ऐसे बोलने की। लेकिन अगर आप गाने में सुन रहे हैं ज्योति दुरान की आवाज के अंदर अच्छा सा लग रहा है जब इतने प्यार प्यार से बोले जा रहे हैं, ठीक है ना सब। तनु वेड्स मनु रिटर्न ये वहां से था, और जिम्मी शेरगिल इसके अंदर आप देखेंगे राजा बस्ती भैया के रूप में थे। चलिए साहब बॉलीवुड रेस के अंदर आज आकाशवाणी रेनबो पर मैं आपके साथ रेडियो पर जो जानकारी दे रहा हूँ, मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला है, आप कहीं भी सर्च मारेंगे साहब हम आपको मिल जाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक बात आपको बता दें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कि जहाँ पूरे भारत के अंदर अगर आकाशवाणी रेनबो की आवाज़ जाती है ना, इसके अलावा जहाँ पर भी आपको नेटवर्क ऐसा लगे दूर दूर चले जाइए साहब, एक हमारी ऐप है न्यूज़ ऑन एयर, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद साहब आप विदेश भी चले जाएंगे ना, ये वहाँ पर भी काम करेगी। और फिर आप वहाँ पर जब इसमें सर्च मारेंगे दिल्ली, दिल्ली के बाद सर्च मारेंगे रेनबो के चैनल, तो वहाँ पर ये जो आवाज़ आ रही ना आपको वहाँ पर भी सुनाई देगी। जिस तरह से हमारे को कई सारे लोग विदेश से मैसेज भेजकर बताते हैं कि साहब हम आपका प्रोग्राम वहाँ पर भी एंजॉय कर रहे हैं, इसलिए जहाँ पर कोई नहीं वहाँ पर आपको आकाशवाणी ज़रूर मिलेगी। अब बॉलीवुड की जो चकाचौंध वाली रोशनी है, आपके चहेते सितारे स्टार्स जिसको आप कह सकते हैं, उनके बच्चे भी उसी स्टारडम के दौरान उसी स्टारडम को देखते देखते देखते वो बड़े होते हैं साहब। जब वो बड़े होते हैं तो देखा जाता है कि उनके भी वही उसी तरह से वो टैंट्रम्स होने शुरू हो जाते हैं, पब्लिक उनको घेरना शुरू कर देती है, कोई एक फोटो कोई एक सेल्फी। ऐसे ही अभी शाहरुख खान साहब के बेटे आर्यन जी को भी देखा गया, जब वो एयरपोर्ट पर वो जा रहे थे तो पब्लिक ने उनको घेर लिया, अब वो एकदम से समझ ही नहीं पाए कि मैं क्या करूं कहां जाऊं। और तब एकदम से जो वहां सिक्योरिटी में स्टाफ थे उन्होंने एकदम से देखा कि साहब परेशान हो रहे, उन्होंने एकदम से घेरा बनाया, घेरा बना के उनको फिर वो वहां से बाहर गाड़ी तक लेकर आए। देखिए आपके चहेते स्टार्स हैं वो अच्छी बात है, आप उनको पसंद करते हैं ये भी अच्छी बात है, उनके कामों को पसंद करते हैं ये भी अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कुछ कारणों से अगर परेशान हो जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से, है ना। अगर आप जाएं तो एक सभ्यता के साथ साथ में जैसे धीरे धीरे कि सर एक सेल्फी लेनी है, अगर वो हाँ कहे तो ले ली, जबरदस्ती ना करी जाए ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं ज़्यादा है तो कभी

आप देखते हैं उनके घर के बाहर में कितने सारे लोग खड़े रहते हैं, हवेली। और इस हवेली के बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होगा स्टम्प्ड।

0: रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
5: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
6: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

0: है बगल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात,

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही? रोज तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
2: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
1: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
6: हर घर सूर्य घर।
7: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
8: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
9: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
7: NCR EPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

0: वालों कंकरखेड़ा मेरठ से।
1: बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई मेरठिया वालों को।
0: अजी हाँ,
1: अजी हाँ। तो बताइए राजेश भल्ला जी, जो हमने सवाल पूछा था कि जिम्मी शेरगिल की एक देशभक्ति के ऊपर पहले भी फिल्म आई थी जिसके अंदर उन्होंने फाइटर का रोल किया था, कौन सी फिल्म थी?
0: उसका नाम था अग्निपंखा।
1: अग्निपंखा
0: 2004 में आई थी।
1: अच्छा, उसके अंदर और कोई उनके साथीवादी कलाकार का नाम याद है?
0: नहीं, मुझे और साथी कलाकार का नाम याद नहीं।
1: उनके साथ उसमें थे राहुल देव, उनके साथ समीर थे, तीनों के तीनों फाइटर थे, इन्हीं के इर्द गिर्द वो कहानी थी। इसमें शमिता शेट्टी, दिव्या दत्ता, ये सब इनके साथ में थी। आप बताओ ये प्रोग्राम प्रोग्राम और रेनबो हमारा कैसा लगता, आकाशवाणी कैसा लगता, ये बता दो बस।
0: रेनबो के बगैर तो गुजारा नहीं, बच्चे भी कहते हैं इस बात को, उनको पापा को कुछ दो ना दो रेनबो जो सुनने को।
1: ये तो ऐसे होली जैसे मेरठ का सोन हलवा के बिना जो गुजारा ना है।
0: यही बात समझ लो जी।
1: बस यही समझ लो जी, यही समझ लो। चलो जी राजवल्लभ भाई, बहुत बढ़िया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई आज के बॉलीवुड सताज बनने के लिए।
0: धन्यवाद, शुक्रिया।
1: तो लगातार यूं ही सुनते रहिए और सरताज बनते रहिए। फिर इसके ऊपर क्या, इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं है साहब, इसके ऊपर आप और हम लगातार यूं ही जब चलते रहेंगे, आप एक दूसरे के साथ मिलते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं जा रही हूँ और फिर मैं 1 बजे वापस आ रही हूँ मेरा वाला सॉन्ग लेकर।

हमारे साथ प्रवीण चौहान जी खोरगांव से हमारे साथ सही जुड़े, हमारे साथ जुड़े हैं धर्म भाटिया जी रोहतक से सही जवाब, दानिश हमारे साथ खतौली से जुड़े हैं लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है, सुकुल बालाजी वेस्ट बंगाल से हमारे साथ सही जवाब के साथ जुड़े, निकिता पारेकर हमारे साथ पुणे से सही जवाब के साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और शेरगां इनका नाम किरदार सिद्धार्थ सोनू बिजनौर से हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ साथ सलीम मलिक हमारे साथ मेरठ से हमारे साथ जुड़े सही जवाब के साथ, ये बिल्कुल गलत जवाब के साथ हमारे साथ कंचन सोनिया विहार से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन आपका जवाब देने के लिए। हमारे पास सिद्धार्थ सिंह, दीपा बिजनौर से हमारे साथ जुड़ी हैं, धन्यवाद। और हमारे साथ एक से बढ़कर आप एक गाने सुनवा रहे हैं, जयराम खोरवाल जी ने लिया है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच है साहब। सही जवाब संतानी अकोला महाराष्ट्र जी से, राजकुमार जी धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही जवाब के साथ क्या बात है, प्रदीप सलूजा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धन्यवाद शुक्रिया, थैंक यू सो मच सभी का सही जवाब देने के लिए।

0: That was Takeaway by the Chainsmokers, and we are taking a quick break of our own right now. Back in just a bit, don't go anywhere. But wait, before that, you need to tell us your favorite monsoon getaway near Delhi. Send it across on our WhatsApp number 9868107070. 9868107070. Let's take a break now.
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
4: पता का चाय, गजब का स्वाद।
5: मम्मी, बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
6: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
5: अरे मम्मी, 1 घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
6: हैं? इतनी जल्दी?
5: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़ कर बस मिनटों में मेरठ।
7: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
9: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल विद अशानी ऑन 102.6 FM रेनबो। टुडेज बर्थडे स्पॉटलाइट इज ऑन शॉन मेंडेस, हु टर्न्स 28 टुडे। ही फर्स्ट कॉट एवरीवन्स अटेंशन बाय पोस्टिंग सॉन्ग कवर्स ऑनलाइन बिफोर बिकमिंग अ ग्लोबल पॉप सेंसेशन विद हिट्स लाइक स्टिचेस, देयर इज नथिंग होल्डिंग मी बैक एंड ट्रीट यू बेटर। And of course, one collaboration that took over the charts, Senorita. So let's listen to that. Happy birthday, Shawn Mendes.

0: We have a few messages. First is from M. Rajkumar from Trichy. He says, good afternoon, RJ Ashwani. Glad to hear you again on Play It Cool. Such a cool show. I'm glad that you are glad. It's always a pleasure to know that you're tuned in, sir. Then we have from Abhishek. He's from New Delhi and he says, Rishikesh is definitely my favorite monsoon destination. The lush greenery, peaceful vibes and beautiful Ganga views make it the perfect monsoon getaway. You're absolutely right. And now that you have mentioned Rishikesh, I really want to go there now. And it's a place that I can go to without planning anything. So you should also plan, actually. If the weekend is here, you can go there. And we have one more message from Bharat. And he says, my monsoon getaway near Delhi is Leopard Trail in Gurgaon that gives hill station vibes. You are absolutely right. That has been on my list since so many months, since last year, actually. And definitely this time I'll try to go there. Thank you so much for reminding me of this place. Let's take a short break here now.
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
4: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सराय काले खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में।
3: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में। आनंद विहार से बेगमपुर मेरठ सिर्फ 40 मिनट में।
4: हर 10 मिनट में ट्रेन उपलब्ध।
3: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत, घंटों का सफर मिनटों में।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।
8: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
0: वेलकम बैक टू प्ले इट कूल विद अशानी ऑन 102.6 FM रेनबो। Okay, before we carry on, let's make a little pact. You know, we always make a little pact in Play It Cool. So this monsoon, at least one of these getaways makes it off your list and actually onto your calendar. Not just talked about, planned. Okay, deal? Well, I'm going to take your silence as a yes. Now let's keep moving. Here's Moves.

0: Let's take a few messages now. Kamal from Jaipur says, Monsoon is my favorite season. Tea, pakoras, a gentle breeze and the view of forests or rivers make it magical. This weather is meant to be enjoyed, not spent worrying about traffic or things beyond our control. I'm planning a trip at the month's end. Though the destination is yet to be decided, your playlist has added even more charm to the season. Thank you so much, Kamal, for that. And I really hope your destination gets decided very, very soon. And this show has helped you a little bit. And we also have a message from Rajkumar from Trichy, and he has said that his favorite destination, no matter if it is monsoon or summer or winter, it is New Delhi. And hanging out around Rajiv Chowk window shopping relaxes and refreshes me the most, despite the small puddles of water. I love New Delhi. Well, I also love New Delhi. And then we have a message from Chef Saurabh from Gurgaon. Hello, Ashani. Listening to you for the first time. You're doing a great job. Keep it up. Thank you so much, Saurabh. And I hope you keep tuning in to FM Rainbow. Let's take a short break here.
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इंफॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लबरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

पेश हैं AIRFM रेनबो इंडिया पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में कहा, युवाओं के निर्णय विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री मोदी ने मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। झारखंड सरकार की JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत जारी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया कि UPI लेनदेन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने सीमा पार आतंक की साजिश रचने में 2 आरोपियों के विरुद्ध अभियोग पत्र दाखिल किया है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले पुंछ में 9 से 17 अगस्त तक वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा खराब मौसम और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति के कारण स्थगित की गई। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। पूर्वी राजस्थान और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। और खेलों में कोरिया मास्टर सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में भारत की अश्मिता चालिहा और रक्षिता रामराज महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: कोयल सी तेरी बोली,
2: हाय
1: तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग, गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
4: जी मैंने कहा सुन लिया कि कह रहे हैं भाई साहब, उन्होंने कहा जी आपकी भी फरमाइश यहाँ पर पूरी हो सकती।

है, यानी कि मेरा वाला सॉन्ग आ चुका है साहब। जब मेरा वाला सॉन्ग आ चुका है तो फिर आपकी पसंद के गीत यहां पर क्यों ना चलें। और जब एक ही पसंद दो दो तीन तीन लोगों की हो जाती है भाई, फिर मेरे को ऐसा लगता है कि इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो पाती है भाई। अलीगढ़ से सलीम अख्तर, रेशमा बेगम फिल्म का नाम जो उन्होंने बताया है, वो गाने के बोल जो उन्होंने बताए हैं, वो इसके साथ साथ में हमारे को जो फरमाइश भेजी है, ये उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका, भानु प्रकाश। भाई देखिए, आप दोनों की जो पसंद है ना, सेम पसंद है, तो फिर गाने मैं आपको चला के दिखा रहा हूं और फिर मैं आपको ये फिर बता रहा हूं। 9868107070 मेरा नंबर है। बाहर बारिश, हम अंदर, और देखो मौसम कितना अच्छा अच्छा सा है। कोशिश ज्यादा से ज्यादा

वैसे यार मैं अभी तक इन झूलों में झूला नहीं कभी, लेकिन मैं झूलना जरूर चाहूंगा। लेकिन फिर एक बार बता दूं, जो ये गाना एक बार ही चल जाए प्लीज, अगर आप प्रोग्राम में शुरू से एंड तक बने रहेंगे तो आपका गाना चल गया तो आप धन्यवाद लिख के बिल्कुल आराम से और लोगों के साथ आनंद कीजिए। लेकिन वो मेरे भाई का गाना था, ये मेरी बहन का गाना है, ये मेरा, ऐसा मत कीजिए साहब। मैं बहुत समझ जाओ प्लीज।

अगस्त वाला महीना चल रहा है साहब, हमारा ये स्वतंत्रता दिवस वाला महीना चल रहा है, हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है, जहां देखो तिरंगा नजर आ रहा है, यानी कि देशभक्ति की भावना सभी जगह ओतप्रोत है। तो फिर हमारी तरफ से भी एक ये वाला गीत हो जाए।

हरिप्पा ओए हम भी सीख गए भाई जरा सा भाई हम भी जब हम भी सीख गए तो सीखने के साथ साथ हम आपको बता दें कि साहब देखिए एक मेरी समस्या आपने एक मैसेज भेजा वो चला गया बिल्कुल नीचे। इस समय अगर स्क्रीन पर देखेंगे आप तो बहुत मैसेजेस की बिल्कुल भरमार है यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपके मैसेजेस वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो ऊपर के ऊपर रहेंगे, तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके गीत चला पाएं। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश, जहाँ पर हमारे पास विश्वकर्मा का पूरा परिवार है, फिल्म है।

0: वाह की सड़क, गाना
1: जेरा। आप भी अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं 9868107070 हमारा नंबर है। सौरभ और निजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोस्त कहीं भी शामिल कीजिएगा, कर लिया। जर्मनी से इला और सौरभ, हम आपको बता दें जो आपने गाना गाया वो हमारे पास नहीं है।

अमरदीप कुमार हमारे साथ हैं कुपमम पट्टी जलागांडा पूरम बाजार से। आमिर तमिल कार का नहीं ना, ना तमिल तेरी आता ठीक है, नी सोलो ना तो सॉन्ग्स ना इले ना सॉन्ग्स ना नेक्स्ट सॉन्ग्स प्लीज कुड़कना।

ओ भैया, हम भी थोड़ी थोड़ी सी बातों से घबराते हैं कि आपके मैसेजेस आते हैं फिर उसके बाद इधर से उधर हो जाते हैं, हम क्या करें साहब। मैंने कहा ना साहब, एक मैसेज 19 से चला गया, मैसेजेस ऊपर दिखेगा तो मैं कोशिश करूंगा चलाने की। फिर भी साहब देखिए, अगर आप एक ही परिवार के लोग हैं, सारे के सारे एक ही जगह पर हैं, तो एक से काम चला लेना चाहिए। फिलहाल भगवती, इसके साथ साथ अनिता वर्मा और ख्याला से उमेश, दिनेश, अनुज और सोनित हमारे साथ हैं। गाना आप सभी की पसंद का ये रहा, और इसके साथ साथ प्रदीप सलूजा भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सुनते रहिए मेरा वाला सॉन्ग। मैसेजेस भेजते रहिए भाई, एक मैसेज वो चला गया नीचे, फिर मैं ढूंढने के लिए नीचे जाऊंगा तब तक ऊपर वाले चले जाएंगे मेरी।

देखिए जी, कहते हैं ना कि थोड़ा सा मौसम है बरसात का, ऊपर से अगर भोले शंकर को याद कर लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम आपको लेके चलते हैं साहब होली चौक उत्तम नगर, जहाँ पर खोरवाल परिवार हमारे साथ है। इसके साथ साथ जोधपुर से हमारे साथ दिनेश जी भी खोरवाल परिवार के हमारे मित्र हैं वहाँ पर। तो प्लीज़ सर, ये गाने को एंजॉय कीजिए और खोरवाल परिवार के जितने भी लोग हैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच है। और हमारे पास एक मैसेज है कोराल रोड भोपाल से, रामबाबू मालवीय साहब, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जो भजन आपने कहा है कि वो हमारे पास नहीं है, तो इसके लिए बहुत बहुत बहुत माफी है। जे आगो मारो फेवरेट गानो, मैं नाचूं, आप नाचोगे, हो जाए, आ जाओ फिर।

भाई बड़ी मुश्किल है मेरे साथ तो भाई साहब, एक तो नाम पढ़ो उसके बाद फिर ये भी सुनने को मिलता है सर पूरा नाम नहीं पढ़ा आपने, यार ये क्या बात होती है, मतलब नाम आपका चेंज हो जाएगा क्या। चलिए हम आपको लेके चलते हैं अब आसिफ शेख अंसारी परिवार वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं कि साहब हमारा गाना इतनी देर से मैसेज भेजे जा रहे हैं और कितने मैसेज भेजे साहब बता दीजिए। अरे साहब देखिए मैसेज आपके जो आए हैं वो मैसेज मेरे पास जितने पहुँच जाते सारे के सारे पहुँच ही जाते हैं, कोशिश मेरी होती है साहब गाने ज़्यादा से ज़्यादा चलाने के लिए, अब आपको थोड़ा सा मेरे साथ तो बचे रहना पड़ेगा नहीं तो फिर सर मैं क्या करूँगा, कहीं ना कहीं मेरे को भी सर दिक्कत हो जाती है। और देखिए और उसके बाद अब जैसे यहाँ पर देखिए हमारे को साहब ने लिखा सर कोई बात नहीं, सर कोई बात नहीं आपने नाम ले दिया हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, मालवीय परिवार वाले। अब आप ऐसा होना चाहिए ना, अब यूपी आपकी गवर्नमेंट से हमारे पास आसिफ अंसारी हैं, तालिब शेख हैं, मुकीम शेख हैं, इमरान शेख हैं, अब ठीक है भाई। अब बोले सर आपने तो हमारा पूरा नाम ले लिया, यार ये गलत बात है यार, आप ये तो मेरे को फंसा रहे हो आप। चलिए कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा है ठीक है। इसके साथ साथ मोहम्मद इम्तियाज, सलमा बेगम, जवाहर कैंप, कीर्ति नगर से आप भी ये गाने इसका एंजॉय कीजिए, ठीक रहेगा ना। कोशिश मैंने करना, देखो ज़्यादा से ज़्यादा है। रिंकू कुमार गांव ककोंडा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से सर हमारे साथ आ गए हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी धन्यवाद करते हैं, थैंक यू सो मच है। मोनू अलीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये देखो जब ऐसे धन्यवाद दें तो सब अच्छी बात है। अब इसके बाद हमारे साथ कौन जुड़ा है, पारस भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुके हैं, पारस जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच है हमें मैसेज भेजने के लिए, कोशिश लगातार है, मैं ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा हूं। जे जे सोनू बिजनौर से हमारे साथ, भाई क्या बात है बिजनौर वालों, राहत और गजालाबाजी क्या हो रहा है, गाना सुन लो एंजॉय कर लो बस। सावन के झूलों ने मुझको बुला दिया, भाई सावन के झूलों ने हमने भाई गाना चला दिया आपका, हांसी से हमारे साथ रामधारी अवाना परिवार के जितने भी हमारे साथ, भाई ये गाना हम चला चुके थे, देखो भाई ये आपका गाना।

0: तो चलो, हम तो चलो दीवाने सही, पर अपनी बताओ कौन हो तुम।
1: मेरा नाम मनीष आजाद, रेडियो वाला है साहब, 9868107070 मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज करके बता सकते हैं साहब। कोशिश है मेरी ज्यादा से ज्यादा गीत चलाने की और ज्यादा से ज्यादा आपके नाम को शामिल करने के लिए। धामपुर लेके चलते हैं आपको, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश में, अफशा खानम हमारे साथ हैं और ये गाना सुनिए। जब तक ये टीनी टीनी टीनी कर रहा है तब तक देखिए साहब हमारा नंबर आएगा, ये मैं आपको मैं कैसे बताऊं नंबर आएगा नहीं आएगा। आपके मैसेजेस मैं तो बहुत नीचे जाके सोच रहा हूँ, पहले नीचे वालों को जितने मैसेज उनको देख लेता हूँ, अभी बाकी तो ऊपर चले जाते हैं मैसेज में, क्या करूं साहब बहुत मुश्किल है। देखिए साहब किसी भी गीत के अंदर शामिल कीजिए, मुरादाबाद गांव कौन सा, दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से, कश्यप परिवार के सभी लोग, सोनू राजपाल, काजल मानवी, लक्ष्य मोहिनी और बलवीर। आहा
2: गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, मुझे इस गाना सुना दीजिए। अरे सुना कैसे दूं, जब गाना होगा तभी तो सुनाऊंगा।

उत्तराखंड लेके चलते हैं कविता उत्तराखंड से। मैंने कहा ना मैसेजेस आपके ऊपर दिखेंगे तो साहब मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक रहेगा। बाकी कोशिश है मेरी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के गीत चलाने की, ठीक है ना साहब। मैसेज भेजते रहिए।

चलिए साहब, आपको लेके चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर बुरहानपुर से हमारे साथ युवराज चौहान हैं, लोखंडिया गांव से। तो साहब, आपकी पसंद का गाना ये रहा। बिजनौर से दीपा हमारे साथ हैं। दीपा, हमारे पास देखो, जो गाना आपने लिखा है वो गाना हमारे पास नहीं है, इसलिए आपको गाना बदलना पड़ेगा और मैसेजेस करने पड़ेंगे ताकि मैसेज ऊपर रहे। ध्यान रखो साहब, मैसेजेस, एक मैसेज वो सबसे नीचे है। मेरे को बहुत इस समय जो सक्रीन है ना मेरी, इतनी गड़बड़ गड़बड़ हो चुकी है। नाइन एट सिक्स एट वन जीरो सेवन जीरो सेवन जीरो। 20 और 22 मिनट और हैं।

जब तक ये डफली बजती है साहब, हम आपको लेके चलते हैं अब सीधा राजस्थान, जिला नागौर, जहां पर नारे नौरत राम सोवसिया हमारे साथ हैं, गांव रिया।

इसे साहब जी गानो ठीक से और हमारे साथ नई दिल्ली से कमलेश कुमार हमारे साथ है। कमलेश मुकुल सचिन दीपांशु साहब जो गाना आपने भेजा हमारे पास नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी।

0: चन चन चन चन चन चन चन चन चन चन। आप भी ऐसे बोलो अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप भी गाने के साथ साथ अगर गुनगुनाते हैं तो साहब अंदर की जितने भी अंजर और पंजर हैं सब के सब अपने आप खुले जाते हैं और फिर वो एक साथ सारे मिलकर गाते हैं। बिजनौर वालों आप दीपा के साथ जरा खुश हो लो। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर आपको आपकी पसंद का गाना मिल गया तो, और जिसका गाना नहीं चल पाया तो साहब सिर्फ एक बात समझिए, जो मजा ललक में है वो पाने में नहीं।
1: जय कौन है भाई, जय कौन है, कौन है, कौन है, कौन है भाई।

0: तेरी गली।
1: इस गाने के बाद होगा ब्रेक, यानी कि हमारे पास जो हमारे भाई जरूरी काम है वो करने पड़ेंगे। तो फिर नई दिल्ली से हमारे पास जो कमलेश मुकुल सचिन लीजिए साहब, इसके बाद बरेक है बारेक।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
3: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
2: इम्पॉसिबल
3: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
4: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
5: ये मेरा छोटा भाई।

0: है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
2: हर

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
4: अरे सर, फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
3: इम्पॉसिबल
4: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
5: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
6: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
7: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
8: NCRAPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
9: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: नमन इस देश की माटी का, वंदन इस देश के वीरों का।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में चल रहे मेरी माटी मेरा देश अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। 9 अगस्त से 15 अगस्त जन जन लेगा पंच प्रण शपथ।
0: घर घर लहराएगा तिरंगा और गाया जाएगा राष्ट्रगान। देश के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों के सम्मान में देश की पवित्र मिट्टी को हाथ में लेकर अपनी सेल्फी को yuva.gov.in पर अपलोड कीजिए।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
3: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
4: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
3: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
4: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
5: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम है जी, वेलकम बैक हो चुका है। अब जो ढोल बाजे भाई देखो, जैसा जैसा जो होता है, मैंने कहा ना ज़्यादा से ज़्यादा मैंने गीत चलाने की आपकी मैंने कोशिश करी है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम बोलेंगे सर ये वाला गाना आपने चला नहीं, सर ये वाला नहीं। हम यार ऐसा तो मत करो आप हमारे साथ प्लीज़। मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा गीत चलाने की। फ़िलहाल आज की फिल्म का जो गाना है ये आ चुका है। और हमारे साथ जैद और हुदा है। भाई ये वाला गाना हमारे पास है नहीं, ये हमने फिल्म में उड़ा दी है, मतलब उड़ गई है। ओहो, गुजरात से हमारे साथ राम कुमार भी जुड़े हैं। कोशिश करूंगा एक गाना ही जो चल रहा है चल जाए, इसके बाद देखते हैं, जाने की विदा भी लेंगे। जिसका नहीं चल पाया कोई बात नहीं, 3 दिन चलता है प्रोग्राम, आज नहीं कल चल जाएगा।

चलिए साहब, इससे पहले मैं यहाँ से विदा लूँ आपसे, हम बता दें कि प्रियंका आपके साथ होंगी, प्रोग्राम होगा आशियाना, रेडियो डॉक्टर लेकर आएंगे प्रवीण शर्मा, इसके बाद में विकास राय आप लोगों के साथ में होंगे, प्रोग्राम होगा मैसेज मसाला मिक्स, इसके बाद में आप देखेंगे नविता कुमारी आपके साथ में होंगी, प्रोग्राम होगा आपकी याद आती रहे, और भैया हम यहाँ से ओंगे को जाती रहें।

नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में कहा, युवाओं के निर्णय विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। श्री मोदी ने मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। झारखंड सरकार की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता सकारात्मक माहौल में सम्पन्न हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्रिक्स देशों की संस्कृति मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बिहार से पहली बार GIT टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया निर्यात की गई। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया है कि UPI लेनदेन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निशुल्क बना रहेगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा खराब मौसम और जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति के कारण स्थगित की गई। आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर की 50वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। और खेलों में भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चलिया कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका के सेंट लुइस में आयोजित रैपिड एंड ब्लिट्स चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। इस खुले आसमां तले जमी के आगोश में, इस खुले आसमां तले जमी के आगोश में है एक छोटा सा जहां मेरा, मैं कहती हूँ जिसको अपना आशियाना, किया इकट्ठा इसे चुन चुन कर तिनके, है तमन्ना कि हर शाख पे इसके फूल महके और आए कभी ना इस पे खिसा, मैं कहती हूँ जिसको अपना आशियाना। आकाशवाणी रेनबो प्रोग्राम आशियाना शुरू हो चुका है, जहाँ मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। गुड आफ्टरनून।

0: वंदे मातरम। दोस्तों ये सिर्फ एक पेट्रियाटिक सॉन्ग नहीं लगता बल्कि एक इमोशनल कैनवास बन जाता है ना, जहाँ सरहद, तिरंगा, सोल्जर्स, सेक्रीफाइस, भारत की मिट्टी एक ही एहसास में घुल जाते हैं। और जब कहते हैं ना, देख इस रंग के सिवा कोई रंग ना हो जिसके सामने बाकी हर रंग फीका पड़ जाता है, और जब वही तिरंगा हमारा लहराता है तो हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आकाशवाणी रेनबो पर मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ, और प्रोग्राम चल रहा है आशियाना, सुकून भरी नींद महकता आशियाना। आज इस पे बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ, थकी हुई पलकों को जब नींद की चादर मिलती है, थकी हुई पलकों को जब नींद की चादर मिलती है, मन की सारी थकान सुकून में धीरे धीरे खुलती है। जब दिल को सुकून और रिश्तों को अपनापन मिलता है ना, तो प्यार हर आशियाने के दीवारों में गुनगुनाता है। दोस्तों थकी हुई पलकों को जब नींद की चादर मिलती है, तो सिर्फ बॉडी नहीं बल्कि मन की सारी थकान धीरे धीरे सुकून में घुल जाती है। दिन भर की भाग दौड़, जिम्मेदारियां और स्ट्रेस के बाद एक गहरी और क्वालिटी स्लीप इंसान को नई एनर्जी देती है। इसलिए नींद सिर्फ आराम नहीं बल्कि बॉडी और माइंड को हील और रिचार्ज करने का एक जरूरी हिस्सा है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक नींद सिर्फ रेस्ट का समय नहीं बल्कि बॉडी और ब्रेन की रिपेयर और रिकवरी प्रोसेस है। डीप स्लीप के दौरान बॉडी सेल्स की हीलिंग, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना, मेमोरी को कंसोलिडेट करना और हार्मोन्स को बैलेंस करने जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इसलिए हेल्दी स्लीप हैबिट्स अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अच्छी नींद हमारी हेल्थ, मूड और रिलेशनशिप पर पॉजिटिव असर डालती है। तो जी आज बात करेंगे प्रोग्राम में कि कैसे एक हेल्दी स्लीप सिर्फ एक हेल्दी इंसान की पहचान नहीं है बल्कि रिश्तों की गर्माहट और अपनेपन के एहसास से भरे एक महकते आशियाने की बुनियाद भी बनती है। फिलहाल ये ट्रैक आपका इंतजार कर रहा है और मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ प्रोग्राम आशियाना में।
1: डुम डुमक कडम डम डमक डुम डुम डुमक कडम डुम डुम डुम डुमक कडम डम डमक डुम डुम डुमक

कितना प्यारा गाना है ना। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, वो घर के आंगन की खुशबू, शादी की रस्में और बेटी की विदाई के भीगते हुए एहसास अपने सुरों में समेट लेते हैं। ये गाना मुझे बहुत प्यारा लगता है। आई एम श्योर आपने भी इस गाने को एंजॉय किया होगा। साथ ही वो फिल्म का ये ट्रैक है। और फिलहाल जी हाँ, चलिए सुकून भरी नींद महकते आशियाने को आगे कंटिन्यू करते हैं। वैसे परिवार की हर उम्र की नींद बहुत ज़रूरी है। अब किसी के लिए नींद जो है ना, वो एक माँ की लोरी का एहसास है, और किसी के लिए कल के सपनों का आगाज है। किसी के लिए दिन भर की थकान का सुकून, तो किसी के लिए यादों भरी रातों की दास्तां है। बचपन से बुजुर्ग तक हर उम्र की एक ही कहानी है। सुकून भरी नींद की तो हर आशियाने की निशानी है। दोस्तों, किसी के लिए नींद माँ की लोरी की तरह एक प्यारा एहसास है, तो किसी के लिए नए सपने और नए हौसलों की शुरुआत। दरअसल देखा जाए तो नींद सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है, बल्कि बॉडी और माइंड को हील करने का एक खूबसूरत सफ़र है। बचपन में नींद मासूम सपनों और माँ बाप के प्यार की छांव होती है। छोटे बच्चों के लिए सफिशेंट स्लीप उनके ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट और लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहीं यंगस्टर्स के लिए नींद नए सपनों को पूरा करने के लिए एनर्जी और फोकस देती है। वर्किंग एडल्ट्स के लिए दिन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेंटल एग्जॉशन के बाद एक पीसफुल स्लीप बॉडी को और माइंड को रिचार्ज करती है। और बड़े बुजुर्गों की नींद में छुपी होती है यादों की कहानियां, जहां अपनों का प्यार जिंदगी के खूबसूरत पल फिर से मुस्कुराते हैं। हर उम्र की नींद की अपनी एक कहानी है, लेकिन हर कहानी का एक ही एहसास है, सुकून और सेहत। लेकिन एक हेल्दी स्लीप के लिए सिर्फ कंफर्टेबल बेड ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि ज़रूरी होता है एक पीसफुल एनवायरनमेंट। जी हाँ, इमोशनल एनवायरनमेंट। घर का माहौल हमारी मेंटल पीस पर गहरा असर डालता है। जब घर में बार बार झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स या टेंशन का एनवायरनमेंट होता है, तो इसका इमोशनल इम्पैक्ट हर एक मेंबर की नींद और वेलबींग पर पड़ता है। जब पेरेंट्स के बीच अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन की कमी होती है, तो दोस्तों डिसएग्रीमेंट्स बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये झगड़े डोमेस्टिक वायलेंस जैसे सीरियस सिचुएशंस का भी रूप ले सकते हैं, जिसका असर पूरे परिवार, खासकर बच्चों की इमोशनल हेल्थ पर गहरा होता है। एक पप्पा जी, जी हाँ एक फादर, जो ऑफिस के स्ट्रेस के बाद घर में सुकून की उम्मीद लेकर आते हैं, या एक वर्किंग मदर जो दिन रात घर और काम की जिम्मेदारियां संभालती है, या हर वो एक महिला जो घर की जिम्मेदारियां संभालती है, दोनों को ही इमोशनल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। दोस्तों, घर तभी सच में आशियाना बनता है जब हर मेम्बर की फीलिंग्स और एफर्ट्स की कदर की जाती है। स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में माइंड हमेशा अलर्ट मूड में रहता है। स्ट्रेस और इनसिक्योरिटी की वजह से थाट्स का सिलसिला चलता ही रहता है, जिससे रिलैक्स करना और गहरी नींद लेना मुश्किल हो सकता है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नींद हमारी बॉडी और ब्रेन के लिए एक एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। नींद के दौरान ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, मेमोरी को स्ट्रेंथन करता है, और बॉडी सेल्स की रिपेयर और रिकवरी होती है। ये इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने, हार्मोन्स को बैलेंस करने और इमोशनल हेल्थ को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और आज के समय में स्क्रीन टाइम, ओ हो हो, स्ट्रेस और इरेगुलर रूटीन हमारी सर्कैडियन रिदम यानी बॉडी क्लॉक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनफैक्ट कर चुके हैं, है ना। इसलिए फिक्स्ड स्लीप स्केड्यूल, बेड टाइम से पहले स्क्रीन से दूरी और पीसफुल स्लीप इन्वायरमेंट बनाना है ज़रूरी। जब परिवार के हर मेंबर अपनी ज़रूरत के हिसाब से हेल्दी स्लीप लेते हैं ना, तो सिर्फ हेल्थ इम्प्रूव नहीं होती, बल्कि घर में पेशेंस, पॉजिटिविटी और प्यार भी बढ़ता है। जब पलकों को सुकून की चादर मिल जाती है, तो हर सुबह नई उम्मीद से खिल जाती है। यानी नींद का सुकून हर सेहतमंद रिश्ते और महकते आशियाने की नींव बन जाती है। फिलहाल एक बहुत ही प्यारा ट्रैक जो आपका वेट कर रहा है। आई एम टेलिंग यू, आप शायद इस गाने को थोड़ा टाइम बाद सुनेंगे। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, हरी हरन की आवाज़, और इसमें जो सुखविंदर सिंह के भी बीच में एक मतलब उनकी भी आप आवाज़ थोड़ा सा सुनेंगे, प्रियसी करके। तो चलिए, आप समझ गए होंगे, फ्रॉम द मूवी ताल।

0: बड़ी है मात।
1: पता का चाय, गजब का स्वाद।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

कंधों पे कांवड़, दिल में महादेव का नाम और होठों पर नमो नमो शंकरा की गूंज, हर कदम भक्ति समर्पण विश्वास का एहसास बन जाता है। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा आशियाना। आज हम बात करें सुकून भरी नींद महकता आशियाना। अगर आप भी इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं कि नींद कितनी जरूरी है आशियाना में रह रहे हर शख्स के लिए, तो जरूर बताइएगा प्लीज 9868। यस, जो जानते हैं नंबर वो अभी सामने ही मैसेज फ्लैश हो रहे हैं। अच्छा लग रहा है मुझे कि मेरे कहने से पहले ही मैसेज जो है वो फ्लैश हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं नंबर बताना चाहूँगी 9868107070 9868107070। जी हाँ, जल्दी से मुझे मैसेज भेजिए और बताइए कि नींद कितनी ज़रूरी है आपके लिए। कोई एक्सपीरियंस आपका हुआ हो कि आपकी नींद पूरी हुई हो तो आपने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हों घर में, या फिर नींद पूरी नहीं हो, आप बेफालतू की लड़ाइयों में उलझ गए हो, अपने ही थॉट प्रोसेस में उलझ गए हो। अभी हमें मैसेज आया है पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, लेकर हैं गुड आफ्टरनून आज प्रियंका वर्मा मैडम जी, कार्यक्रम आशियाना हेल्दी स्लीप स्पेशल प्रोग्राम है, बहुत बढ़िया प्रस्तुति, इन्हें गीत पसंद आ रहे हैं और बचपन से बुढ़ापे तक हर किसी को सुकून नींद जरूरत होती है। बिल्कुल, नींद हमारे शरीर और ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होती है। आपको गीत भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्पेशली केदारनाथ का नमो नमो शंकरा जी, मुझे भी बहुत बहुत पसंद है। अभी और मैसेजेस का आप भी मैसेज भेज सकते हैं, और भी मैसेजेस आए हुए हैं, अभी हम उनका सिलसिला जो है वो चलता रहेगा प्रोग्राम में। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। रातों की खामोशी को स्क्रीन्स ने चुरा लिया। ब्लू लाइट ने पलकों से नींद का सुकून ही चुरा लिया। थोड़ी देर गैजेट से भी दूरी रखिए दोस्त, सुकून भरी नींद से अपने आशियाने को फिर से महकाइए। जब मैं ये लिख रही थी ना खुद, तो मुझे लग रहा था कि प्रियंका तू भी इस बात पे अमल कर लिया करो। मैं यकीन मानिए, मैं अपने फ़ोन को टेबल पे रखती हूँ, मैं खुद बेड पे रहती हूँ, मैं सोने से पहले फ़ोन को साइड में रख देती हूँ, बहुत डिस्टर्ब रहता है वरना माइंड, क्योंकि एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ फिर नींद आने में लेट हो जाता है। और पता, इसका साइंटिफिक रीज़न मुझे पता लगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज के डिजिटल ज़माने में मोबाइल स्क्रीन हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर बन गई है ना, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी नींद का सुकून भी चुरा रही है। सोने से पहले लगातार स्क्रॉलिंग या गैजेट्स का इस्तेमाल बॉडी की नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब कर सकता है, इनफैक्ट कर रहा है। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के प्रोडक्शन को कम करती है दोस्तों, जो हमें नींद लाने में मदद करता है। फिर उससे क्या होगा, नींद देर से आएगी, गहरी नहीं होगी, और सुबह उठकर भी हमें थकान महसूस होती है। होती है ना ऐसा कि हम थके थके रहते हैं, वो इसलिए रहते हैं। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक हमारी बॉडी के सर्केडियन रिदम यानी नेचुरल बॉडी क्लॉक पर काम करती है। रात होते ही ब्रेन मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज करता है, जो हमें नींद के लिए तैयार करता है। लेकिन मोबाइल, टेबलेट और लैपटॉप से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को दबा सकती है, इस वजह से नींद देर से आती है, उसकी क्वालिटी कम हो सकती है, सुबह उठने पर भी थकान महसूस होती है। इसलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बेड टाइम से कम 30 से 60 मिनट पहले ही गैजेट से दूरी बना लेना, यानी उन्हें गुड नाइट कह देना है, ये हेल्दी हैबिट है। उन चंद लम्हों में आप अपने परिवार से बात कीजिए, कोई किताब पढ़िए, या फिर हल्का म्यूजिक सुनिए, या फिर खुद के साथ कुछ पल गुजारिए। एक छोटी सी आदत आपकी नींद को ही नहीं, रिश्तों को भी गहरा बनाती है और आपके कंसंट्रेशन को भी फोकस करती है। तो याद रखिए, बस बंधु यही कहना चाहेंगे कि डिजिटल दुनिया से थोड़ी सी दूरी जरूरी है, अपनों से थोड़ी सी और नज़दीकी बन जाती है इससे। और जब नींद सुकून भरी होती है तो उसकी खुशबू, उसकी पॉजिटिविटी हर आशियाने में महसूस होती है। फिलहाल ये ट्रैक बहुत ही प्यारा ट्रैक है, ये ट्रैक जो है ये रूप कुमार राठौड़ की सोलफुल वॉइस में है, तो चलिए सुनिए इसे।

साथ हमें रूप कुमार राठौड़ की आवाज़ के बाद हमें मैसेजेस ले लेते हैं। जी हाँ, ये मैसेज आया है कि डॉली का दिल्ली से कहते हैं, नींद अच्छी लेने से हेल्थ अच्छी रहती है, अच्छी नींद लेने से थकान नहीं रहती है, मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ता है, सॉफ्ट नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। और मेरे पापा को नसों का इलाज चल रहा है, तो उनकी नींद की मेडिसिन देनी होती है, उन्हें उसके बिना उन्हें नींद नहीं आती है। तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप सबको बताएं कि देखिए नींद कितनी ज़रूरी है, नींद उन्हें नहीं आती तो उसकी मेडिसिन उन्हें दी जा रही है, उनको तो प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम जैसे जो जो ठीक ठाक हैं, काम कर रहे हैं, और बस ये कोशिश करें कि अपने घर में अच्छा माहौल रखें, ताकि सबकी नींद ज़रूरी है। अगर आपकी वाइफ काम कर रही है तो उन्हें हेल्प करें, अगर आपके हस्बैंड थके हुए आ रहे हैं तो उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, अगर बच्चा जो है वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुका है उसकी नींद को भी समझें। सबकी नींद ज़रूरी है बंधु, जाना सभी से तो बनता है ना। फिलहाल ये एड ब्रेक, और प्लीज स्टेशन छोड़ के तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि हम आते हैं आपके लिए और जाते हैं आप किसके लिए। दिल्ली

0: साथ 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

वेलकम बैक। जी हाँ, प्रोग्राम आशियाना में आपका स्वागत है, पुनः स्वागत है। और आज हम बात करें सुकून भरी नींद महकता आशियाना। जब मन को मिलता है सुकून तो नींद बनती है एक खूबसूरत सफर, है ना। ना फिक्रों को तकिया बनाइए दोस्त, ना फिक्रों को तकिया बनाइए, ना स्ट्रेस को हम सफर। सुकून की सांसों से ही मुस्कुराने लगता है हर सफर। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन और ग्रेटिट्यूड को अपनी आदत बनाइए, तभी जिंदगी अपने सांस पर सुकून की धुन छेड़ती है और हर लम्हा सुकून की सरगन बनकर आशियाना गुनगुनाता है। हर लम्हा सुकून की सरगम बनकर आशियाने में गुनगुनाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में दोस्तों, स्ट्रेस और एंग्जाइटी हमारे दिमाग पर एक अनजाना बोझ बनकर बैठ जाती है। दिन भर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस और वरीज का असर अक्सर रात की नींद पर दिखाई देता है। जब मन शांत नहीं होता तो आंखों को बंद करना तो आसान है, लेकिन दिमाग को रेस्ट देना मुश्किल हो जाता है। और बंधु, तब दिमाग में चिंताओं का शोर ज्यादा हो जाता है और नींद की खामोशी कहीं खो जाती है। स्ट्रेस के सबसे पहला इफेक्ट जो होता है ना, वो होता है उसका सबसे इफेक्ट, पहला इफेक्ट हमारी नींद पर होता है। कुछ लोगों को इंसोम्निया यानी नींद ना आना, देर तक जागते रहना या बार बार नींद टूटने की प्रॉब्लम से वो गुजरते हैं। रात की खामोशी में भी थॉट्स का शोर चलता रहता है, पुरानी बातें, कल की चिंता, अनजाने डर मन को उलझा कर रखते हैं। यानी रात को आंखें बंद होने के बाद भी थॉट्स का सिलसिला जो चलता रहता है और माइंड रिलैक्स नहीं कर पाता, इसका असर सीधा नींद के अलावा बल्कि हमारे मूड और एनर्जी लेवल, इनफैक्ट ओवरऑल हेल्थ पर भी होता है। कुछ लोगों के लिए रेस्टलेस स्लीप एक चैलेंज बन जाती है, जिसमें इंसान रात भर करवटें बदलता है, पूरी रात बेचैन रहता है या सुबह उठकर भी फ्रेश फील नहीं करता। कुछ लोगों में लाउड स्नोरिंग यानी खर्राटे भी एक वार्निंग सिग्नल है। जी हाँ, अगर खर्राटों के साथ सांस रुकने जैसा महसूस हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर खर्राटों के साथ सांस रुकने

अपने आप से जुड़े के एहसास स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकते हैं। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक जैसे माइंडफुलनेस, लाइट स्ट्रेचिंग और पॉजिटिव थॉट्स के साथ बेड टाइम रूटीन बनाना नींद की क्वालिटी इंप्रूव कर सकता है। सोने से पहले मोबाइल और बेकार की डिस्ट्रेक्शन से दूर रहना भी एक हेल्दी हैबिट बन सकता है, तो बनाइएगा। जी हाँ, और सबसे अच्छा है कि आप काम जो होता है ना, बेड टाइम रूटीन, उसको फॉलो कीजिए, अपने मसल्स को रिलैक्स कीजिए। ये सब बहुत ही पावरफुल टेक्निक्स हैं, इन्हें फॉलो करना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी अच्छी नींद ना सबको चाहिए, तो क्यों ना अच्छी अच्छी टेक्निक जो है वो हम साथ निभाएं। फिलहाल ये ट्रैक सुने। जी हाँ, चलिए इस ट्रैक को सुनते हैं, और ये ट्रैक हर देशभक्ति के एसेंस से भरा हुआ ट्रैक है।

था माथे पे माटी सजा के चलो। दोस्तों ये सिर्फ एक पेट्रियोटिक गाना नहीं है बल्कि एक सोल्जर के जज्बात का गहरा एहसास है। उन्होंने अपने माथे पर सिर्फ माटी नहीं अपने देश की इज्जत अपनी भारत माता का गुरूर भी सजाया है। चलिए वेलकम बैक, आशियाना प्रोग्राम चल रहा है। नींद जो होता है ना उस पर हम बात करें, सुकून भरी नींद और महकता आशियाना आज का हमारा टॉपिक है। नींद भी चाहती है थोड़ा सा प्यार और इंतज़ार, नींद भी चाहती है थोड़ा सा प्यार और इंतज़ार। फिक्स बेड टाइम से मिलता है बॉडी क्लॉक को करार, शांत कमरा सही टेम्परेचर सुकून का पसेरा, स्लीप हाइजीन से फिर महक उठता है हर अपना आशियाना। दोस्तों नींद भी चाहती है थोड़ा सा प्यार और इंतज़ार, क्योंकि दोस्त एक अच्छी नींद के लिए सिर्फ थकान ही नहीं बल्कि सही आदतें और बेहतर माहौल भी ज़रूरी होता है। स्लीप हाइजीन यानी नींद से जुड़ी अच्छी हैबिट्स हमारी बॉडी और माइंड को एक सुकून भरी नींद के लिए तैयार करती है। साइंटिफिक तौर पर नींद हमारे बॉडी के लिए एक रिपेयर और रिकवरी प्रोसेस है। सोने के दौरान ब्रेन मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करता है, बॉडी टिश्यूज़ को रिपेयर करता है और इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक अच्छी नींद के लिए सिर्फ एक बेड पर जाना ही काफ़ी नहीं है बल्कि हेल्दी स्लीप हैबिट्स भी ज़रूरी होती है जिन्हें स्लीप हाइजीन कहा जाता है। हमारी बॉडी एक नेचुरल सर्केडियन रिदम यानी बॉडी क्लॉक के अकॉर्डिंग काम करती है। रोज़ एक फिक्स्ड बेड टाइम रूटीन फॉलो करने से ब्रेन को सोने और जागने का रेगुलर सिग्नल मिलता है। इससे मेलाटोनिन हार्मोन का रिलीज नेचुरल तरीके से होता है और ये स्लीप क्वालिटी को इम्प्रूव होता है। एक आइडियल स्लीप एनवायरनमेंट भी गहरी नींद के लिए ज़रूरी एहसास है। शांत कमरा, कंफर्टेबल टेम्परेचर, हल्की रोशनी, एक कंफर्टेबल मैट्रेस पिलो नींद को और बेहतर बनाते हैं। लेकिन आज के डिजिटल दुनिया में जी हाँ, मोबाइल स्क्रीन्स जैसे कि मैंने कहा इससे दूरी बना लीजिए क्योंकि स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट ब्रेन को ये महसूस कराती है कि अभी दिन का वक्त है, जिस वजह से मेलाटोनिन हार्मोन का रिलीज कम हो सकता है। मेलाटोनिन वही नेचुरल हार्मोन है जो बॉडी को नींद के लिए तैयार करता है, इसलिए देर रात तक स्क्रॉलिंग करना नींद के आने में देरी और स्लीप क्वालिटी को अफेक्ट करता है। इसलिए रात को थोड़ी सी दूरी स्क्रीन से बनाइए, एक पीसफुल एनवायरनमेंट और हेल्दी बेड स्लीप रूटीन अपनाइए और अपनी नींद को फिर से सुकून का एहसास दीजिए। क्योंकि स्लीप हाइजीन को बस ये कहूंगी अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए और अपनी आशियानों को महकाइए। फिलहाल रात का खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रात को आप जो हर निवाला होता है ना वो उसकी भी एक कहानी होती है। जी हाँ, अगर समय होगा तो बात करेंगे, बस ये कहूँगी कि रात को हैवी खाना मत खाइए, लाइट खाना खाइए। और इसी के साथ मैसेजेस भी आए हैं वो ज़रूर लेंगे दोस्त, लेकिन पहले ये खाना।

अभी चलिए, आपने बोला है अपने मैसेजेस के थ्रू हम ले लेते हैं। मैम स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर नींद पूरी ना हो तो हम छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो जाते हैं, ऑफिस में भी शिफ्ट कंप्लीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्लीप प्रॉपर हो तो आप फैमिली और बच्चों के साथ नाइस फैमिली टाइम स्पेंड करते हो। इसलिए इंग्लिश में कहते हैं बिफोर टेकिंग एनी बिग और इम्पॉर्टेंट डिसीशन स्लीप ओवर इट, मीन्स जो कोई ज़रूरी फैसले लेने से पहले एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है, सो दैट आर माइंड फंक्शंस प्रॉपरली। मैम माय नेम इज़ फारस फ्रॉम चंडीगढ़। देखिए आपने तो हमें बहुत सही सॉल्यूशन भी दे दिया, हमारे दोस्तों को जो हमें सुन रहे हैं। और इसी के साथ डॉली का भी मैसेज है, कुछ लोग इतनी गहरी नींद गहराई से याद करते कि हम खुद सो नहीं पाते। ओके ओके डॉली। और इसी के साथ ये मैसेज आया है कि गीत अच्छे लग रहे हैं, थैंक यू सो मच आशा नारंग सोनाली। और इसी के साथ स्लीप हाइजीन से जुड़ी

आपको अच्छी लग रही है जानकारी। इसी के साथ टेक केयर गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। आऊंगी अल्फा जैन लेके, रहिएगा हमारे साथ प्रोग्राम में, जी हाँ, ठीक 4 बजे। तब तक के लिए बाय बाय।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी। आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है।
2: मजबूत हड्डियां, सुरक्षित कदम और स्वस्थ जीवन, इसी विश्वास के साथ करते हैं आज के रेडियो डॉक्टर की शुरुआत। नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त शिल्पा गुप्ता, आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। कहते हैं स्वस्थ शरीर ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी चूक, सड़क दुर्घटना, खेल के दौरान लगी चोट या फिसलन जैसी घटनाएं हमारी हड्डियों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। हड्डी का टूटना यानी फ्रैक्चर केवल दर्द ही नहीं देता, बल्कि समय पर सही उपचार ना मिले तो लंबे समय तक परेशानी का कारण भी बन सकता है। हमारे आज के रेडियो डॉक्टर का विषय है फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट, जिस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं विशेषज्ञ डॉक्टर अजय शर्मा, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद जी।
2: और साथ हैं डॉक्टर विनय सिंगला, ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
4: धन्यवाद।
2: आप हमारे इस प्रोग्राम को प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से सुन सकते हैं। तो श्रोताओं, जुड़े रहिए हमारे साथ, आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पर। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि किस दर्द या चोट को हम समझे कि फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर क्या होता है और इसका मुख्य कारण क्या है?
3: देखो, फ्रैक्चर के मेन कारण तो है कि चोट लगना, भले वो एक्सीडेंट हो, कहीं फिसल के गिरे या खेल कूद में भी स्ट्रीनस एक्टिविटीज के कारण भी कभी भी फ्रैक्चर हो सकता है। कोई भी दर्द जो जरूर से ज्यादा हो रही है, उसमें सूजन आ रही है, तो उसमें फ्रैक्चर सस्पिशन हमेशा रखना चाहिए, जो कि एक डॉक्टर को दिखा के भले वो एक्सरे करे, उससे निकाल लगाया जाए कि फ्रैक्चर है या नहीं।
2: तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर कोई गिर गया, दर्द हो रहा है, तो क्या यही फ्रैक्चर का इंडिकेटर है या कुछ और भी हो सकता है? डॉक्टर विनय,
5: गिरने के बाद तो हमेशा हमें फ्रैक्चर का सस्पिशन करना ही चाहिए, लेकिन गिरने के बाद अगर पर्सन अपना अपर लिम या लोअर लिम यूज ना कर पाए, वजन ना दे पाए, जरूरत से ज्यादा दर्द हो, सूजन आ जाए, या कहीं ओल्ड एज पेशेंट जो ब्लड थिनर्स वगैरह खा रहे होते हैं, तो उसमें गिरने के बाद अंदर खून इकट्ठा हो जाता है, नीला रंग पड़ जाता है, ये सब कंडीशंस के अंदर हमें फ्रैक्चर सस्पेक्ट करना चाहिए।
2: तो क्या इसके भी कुछ अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं कि हाँ हमें डिफ्रेंशिएट कर सके हम?
3: हाँ, फ्रैक्चर्स के कई टाइप्स हैं मैडम। जैसे कि अगर फ्रैक्चर हुआ और कहीं उसमें ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो उसे हम क्लोज फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, क्लोज फ्रैक्चर्स में बाहर से कोई जख्म नहीं होता, लेकिन जो ओपन फ्रैक्चर्स होते हैं जिनमें उसका फ्रैक्चर का कॉन्टैक्ट एक्सटीरियर से हो जाता है, बाहर से हो जाता है, तो कीटाणु वहां जल्दी पहुंचते हैं और इन्फेक्शन होने का डर काफी हो जाता है, जिसमें हमें अर्जेंसी में उस इलाज करना चाहिए, एंटीबायोटिक्स वगैरह भी देने चाहिए, ये सब है उसमें।
2: बातें हम इस पर और भी करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए।
1: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
0: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
1: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें healthairdelhi@gmail.com पर।
2: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पे। तो डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि फ्रैक्चर के लक्षण क्या हैं, सामान्य लक्षण क्या हैं, जिनकी अनदेखी हमें नहीं करनी चाहिए।
3: जब भी किसी को फ्रैक्चर होगा तो वहाँ पे सूजन होगी और मूवमेंट्स जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी, हमारे हाथ की या पैर की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। तो इसमें हमें खड़ा नहीं हुआ जाएगा या मूवमेंट नहीं करी जाएगी, तो ये मान लेना चाहिए कि फ्रैक्चर की काफी संभावना है और डॉक्टर को दिखा के इसका इलाज कराया जाए। भले वो प्लास्टर करें, ऑपरेशन करें, किसी भी ढंग से करें, तो वो करना चाहिए।
2: यदि किसी व्यक्ति को अगर फ्रैक्चर हो जाए, वो गिर जाए या चोट लग जाए, तो वो क्या करे और क्या ना करे इमीडिएटली?
3: सबसे पहले को चोट लग जाए, कहीं जख्म नहीं है, सिर्फ क्लोज इंजरी है, तो बर्फ का सेक करें, कोल्ड फर्मेंटेशन इज बेटर। कोई गर्म पट्टी बांध दें, कोई स्प्लिंट होता है गले में डालने का, स्लिंग हो गया या कोई स्प्लिंट, गले का पट्टा, पैर का पट्टा, नी इमोबिलाइजर या कोई भी तरह का जो ब्रेस हो, बाइंडर हो, वो पहना जाए और वेट ना करे, इसके ऊपर वजन ना दे। कई कई चोटें ऐसी हैं वहां पे मालिश करने से ज्यादा गड़बड़ हो जाती है, जैसे कोहनी का फ्रैक्चर हो गया, वहां मालिश करने से ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखे जाते हैं। कोहनी के मूवमेंट में आगे चल के बहुत रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, मूवमेंट काफी कम हो जाती है। तो जैसे कोहनी की कभी मालिश नहीं करनी चाहिए चोट पे भी। बाकी तो फिर जब एक्सरे होगा उसका इलाज अलग अलग है, किसी में प्लास्टर होगा, किसी में ऑपरेशन होगा, वो डॉक्टर ही बताएगा।
2: एक मैसेज हमारे पास ये है, लिखते हैं, आई एम सागर मखीजा फ्रॉम विजयपुरा कर्नाटका। आई हैव टू क्वेश्चंस। इफ अ पर्सन फेल्स फ्रॉम अ बाइक ऑन रोड एंड इफ ही गेट्स फ्रैक्चर इन लेग, हाउ कैन वी टेक हिम टू हॉस्पिटल सो दैट इट डजंट गेट वर्स? व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर इट एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू क्योर द फ्रैक्चर? डॉक्टर विनय,
4: if the patient falls from the bike and the suspicion of fracture is there, it means when suspicion fracture is there, when there is a cross swelling and out of proportion pain is there, and there is the mobility at the bone site, means the bone fragments gets the improper mobility is there at the fracture site, and the patient is having a severe pain.

0: In that case, patient has to be mobilized to the hospital. In that case, if we have some splint, some wooden splint, we can tie it with a cloth and we can transport the patient to the hospital. Or if we don't have anything, we can tie both the legs along with that. Or sometimes we have some cast in the ambulance. In that case, we can put up a cast and transport the patient to the hospital.
1: एक और मैसेज है हमारे पास, लिखते हैं आरजे मैम और डॉक्टर साहब को नमस्कार, मैं जानना चाहता हूँ कि कॉलर बोन का फ्रैक्चर कैसे पता चलता है, इसका क्या इलाज है और इसमें इतनी तकलीफ होती है, इसके लिए हम क्या करें, तो कृपया बताने का कष्ट करें, शिव मेरठ से। डॉक्टर जी
2: नमस्कार जी। कॉलर बोन जैसे कि नाम ही है, हमारी जो कॉलर है उसके नीचे की जो बोन है इसे कॉलर बोन कहते हैं। तो इसमें ये सबक्यूटेनियस बोन मतलब स्किन के नीचे की बोन है, इसमें जब भी फ्रैक्चर होगा, सूजन आएगी तो एकदम से मालूम पड़ ही जाता है कि हाँ इस हड्डी का टूटा है या कुछ गड़बड़ हुई है। तो इसमें सबसे पहले तो स्लिंग बांधा जाए, जब भी चोट लगे स्लिंग बांध के रखें, कफ एंड कॉलर स्लिंग बोलते हैं, गले से लेकर आपकी कलाई तक वो बांध के रखें और फिर उसके बाद में डॉक्टर से मिलें। अब इसके जो इलाज है, 90% केसेस तो बिना ऑपरेशन के ही ये ठीक हो जाता है। उसमें हम फिगर ऑफ एट बैंडेज, क्लेविकल ब्रेस बांधी जाती है, जो 1.5 से 2 महीने तक समय लगता है इस हड्डी को जोड़ने में। कई कई केसेस में जहां वो फ्रैक्चर जो है स्किन को पियर्स कर रहा हो या काफी दूर फ्रैगमेंट्स पड़े हैं, तो उनमें प्लेट्स लगाना और रॉड डालना, इस करके भी हम इस अस्थि को अच्छे से जोड़ सकते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो
3: हेलो
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
3: मेरा नाम राजेंद्र है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी बताइए क्या प्रश्न है आपका।
3: हाँ, पहले तो एंकर मैम और दोनों डॉक्टर साहिबान को नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
3: पहला सवाल मेरा ये है कि किसी शख्स को, चाहे वो पेशेंट है या फिर बिल्कुल फिटाफिट गुड़म गुड है, कैसे उसे पता चले कि मेरी हड्डियों में कमजोरी है और या फिर मेरी हड्डियाँ मजबूत हैं? दूसरा सवाल के बढ़ती उम्र में होता है कि हड्डियाँ ही बढ़ती हैं, नसें ही बढ़ती हैं, पर अब आवश्यकता से ज्यादा नसें हड्डियाँ बढ़ जाएं या धनुषनुमा हो जाए, आगे और झुक जाते हैं। लोग देखो बुढ़ापे में, अधेड़ अवस्था में जो होता है, ओल्ड एज में लोग ये हड्डियाँ झुक जाती हैं, लोग झुक के चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में कोई शख्स क्या करे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, जरा बताएं, बड़ी मेहरबानी होगी, प्लीज गाइड करें।
2: नमस्कार जी राजेंद्र जी। तो सबसे पहले तो आपने ये पूछा कि कैसे पता लगाएं कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं। हम एक्सरे से, डेक्सा भी एक स्कैन होता है बोन मिनरलाइजेशन का, विटामिन डी के चेकअप होते हैं, कैल्शियम के चेकअप होते हैं, इनसे हमें आइडिया लग जाता है कि हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ऑस्टियोपेनिया या ऑस्टियोपोरोसिस है या नहीं। ठीक है, और जैसे आपने बताया कि रीढ़ की हड्डी जो झुक जाती है उम्र में, जिसे हम अपनी मेडिकल भाषा में काइफोसिस कहते हैं, ये भी ऑस्टियोपोरोसिस का खास लक्षण है। ठीक है, जैसे हमारी जो वर्टिबल बॉडीज है उनकी हाइट एंटी आगे की तरफ से कम होती जाएंगी तो पीछे झुकाव आता जाएगा, कुब निकलती जाएगी, ये कमजोर हड्डियों की निशानी है। इसको करेक्ट करने के लिए अच्छा खान पान, कैल्शियम, वाइटामिन डी, एक्सरसाइजेज, आपका बैठने का पोस्चर, जैसे हम सोफे पे बड़ी देर तक लीन करके बैठ जाते हैं, वो सब गलत चीजें हैं। और करेक्ट करने के लिए ब्रेसेस भी आती हैं, करेक्टिव ब्रेसेस भी आती हैं, जो पीछे आपका पोस्चर करेक्ट करे, बैठने का सही ढंग, तो ये कैल्शियम, वाइटामिन डी, एक्सरसाइज और इन चीजों से सही हो सकता है।
1: और डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने टेस्ट की बात करी, तो फ्रैक्चर की पुष्टि के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं?
2: फ्रैक्चर्स की पुष्टि के लिए सबसे जो कॉमन टेस्ट है वो एक्सरे है मैडम। एक्सरे से हमें मालूम पड़ जाता है कि इफ देयर इज अ ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन देन इट मींस अ फ्रैक्चर। अगर हड्डी की कंटिन्यूशन में कहीं ब्रेक है तो वो फ्रैक्चर ही होता है। और दूसरी जांचें जिनमें मालूम पड़ जाता है, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन चीजों से भी मालूम पड़ जाता है हमें फ्रैक्चर है या नहीं।
1: डॉक्टर विनय आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के फ्रैक्चर है तो किन कंडीशंस में या सिचुएशंस में प्लास्टर लगाया जाता है या किन मामलों में ऑपरेशन करना पड़ता है?
0: आमतौर पे बच्चों में ज़्यादातर फ्रैक्चर्स जो होते हैं प्लास्टर से ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों में अगर प्लास्टर लगने के बाद भी थोड़ा बहुत टेढ़ापन रहता है, वो उम्र के हिसाब से जैसे जैसे हड्डी ग्रो करती है वो टेढ़ापन ठीक हो जाता है। और लेकिन कुछ एक फ्रैक्चर्स होते हैं बच्चों के अंदर भी जिसके अंदर ऑपरेशन करना जरूरी हो जाता है, जैसे मान लो एल्बो के अंदर फ्रैक्चर होता है, अगर फ्रैक्चर ज़्यादा डिस्प्लेस होता है या एल्बो के अंदर बाहर की तरफ जिसको हम लेटरल कंडाइल कहते हैं उसके अंदर फ्रैक्चर्स होता है, इन कंडीशंस के अंदर हमें ऑपरेशन करके उसके अंदर बिना खोले हुए, बिना चीरा दिए हुए दूरबीन के नीचे हड्डी को बिठाकर तारें डालनी पड़ती हैं। एडल्ट पेशेंट के अंदर हम आज की डेट में जैसे हम डिक्टम कहा जाता है, लाइफ इज द मोबिलिटी एंड मोबिलिटी इज द लाइफ, इट मीन

0: कि वी हैव टू मेक द पेशेंट मोबिलाइज एज अर्ली एज पॉसिबल। इसमें पेशेंट्स को आज की डेट के अंदर बहुत डिफरेंट मॉडलिटीज आ गई हैं, जिसके अंदर हम पेशेंट फ्रैक्चर्स को बिना चीरा दिए हुए लेजर के द्वारा अंदर रॉड डाल देते हैं और पेशेंट की मोबिलिटी जल्दी हो जाती है और हड्डी भी जल्दी जुड़ जाती है। देर इज नो स्टिफनेस ऑफ द ज्वाइंट्स। बट समटाइम पेशेंट जब फ्रैक्चर्स अनडिस्प्लेस्ड है और इन एक्सेप्टेबल कंडीशन है एंड पेशेंट इज नॉट विलिंग और द पेशेंट इज नॉट मेडिकली फिट फॉर द सर्जरी, इन दोज केसेज वी कैन अप्लाई द प्लास्टर ऑल्सो।
1: जैसे बच्चों की अगर बात करी, बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, उनके फ्रैक्चर हो जाता है, तो क्या कुछ ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे उनकी बोन्स पे इफेक्ट ना आए, ग्रोइंग एज पर, ग्रोइंग हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े?
2: जो कई के फ्रैक्चर्स ना बच्चों में खास ध्यान देने वाली बात है, जिससे बच्चों के बोन एंड्स पे ग्रोथ प्लेट्स होती हैं, ठीक है। वो ग्रोथ प्लेट्स बच्चे की बोन को लंबा कर रही हैं और वो जब बच्चा मैच्योरिटी अटेन करेगा 15-20 साल की एज में, तब जाके वो ग्रोथ प्लेट फ्यूज्ड होंगी। अगर उस तरफ फ्रैक्चर हो जाए तो वो जुड़ने के बाद भी बोन ग्रो होगी वो टेढ़ी ही होती जाएगी, डेट विल क्रिएट डिफॉर्मिटी। तो ऐसे केसेस में हम ऐसा नहीं सोच सकते कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जुड़ जाए तो चल जाएगा। ऐसे केसेस में हमें परफेक्ट अलाइनमेंट चाहिए होती है, ठीक है ना। इसे एपिफिजियल फ्रैक्चर्स बोलते हैं या ग्रोथ प्लेट के अराउंड फ्रैक्चर्स बोलते हैं। इसमें अच्छा 100% अलाइनमेंट ऑफ द फ्रैक्चर इज मस्ट, ठीक है। बाकी जो बीच की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है, जिसे हम डायफाइसिस कहते हैं, जो एंड्स ऑफ द बोन्स नहीं हुए, बीच में हुआ, उसमें थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ापन रहेगा, तो बच्चा रिमॉडल कर जाता है। जब बच्चा ग्रो होता है द बोन रिमॉडल्स एंड डिफॉर्मिटी गेट्स करेक्टेड, बट नॉट एट द बोन एंड्स, जहां किनारे हैं, यानी कि कोहनी के पास वाले, घुटनों के पास वाले हड्डियां जो फ्रैक्चर होती हैं बच्चों में, उनमें ऑपरेशन की काफी संभावना रहती है, क्योंकि 100% अलाइनमेंट लाना पड़ता है।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
3: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप
3: नमस्ते
1: कहाँ से कॉल
3: डॉक्टर
1: कर
3: साहब,
1: रही हैं?
3: मैं मिस्टर बेबी बोल रही हूँ, पंचकुला हरियाणा से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
3: हाँ डॉक्टर साहब, ऐसा है, नवंबर 30, 24 को मेरी सर्जरी हुई थी, मैं गिर गई थी। तो मेरा फ्रंट का फेमर वॉल टूट गया था, तो मेरी सर्जरी हुई तो हो भी गई जल्दी और मैं रिकवर भी बहुत जल्दी कर गई।
2: आपका आपकी एज क्या है?
3: मैं 75+ हूँ।
2: ठीक है मैडम।
3: नवंबर 24 में मेरा ऑपरेशन।
2: हाँ मैडम, ठीक है।
3: और मैं 27वां साल है, मैं योगा में हूँ। तो उससे वो मेरे डॉक्टर कहते हैं शायद आपकी मेंटल हेल्थ भी उसी से ज्यादा ठीक है, तो आप जल्दी रिकवर कर गए। अब डॉक्टर साहब, ऐसा है कि नीचे बैठना बिल्कुल मना होता है।
2: मैडम आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि ये इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर था, जो
3: हाँ जी, हाँ
2: जो
3: जी।
2: हिप के एकदम साथ में, तो इसमें
3: हाँ
2: इसमें हम बॉल को रिप्लेस कर देते हैं,
3: हाँ जी,
2: ठीक है ना।
3: रिप्लेस किया है।
2: जिस शेप की वो आपका जो हेड था वो, उसमें ब्लड प्रवाह खत्म हो जाता है, वो डेड हो जाता है, इसलिए 75 की एज में उसे जोड़ के हम स्क्रू एंड प्लेट्स वगैरह किसी चीज से जोड़ते नहीं, उसको निकाल के उसी शेप का दूसरा रिप्लेस कर दिया जाता है हेड,
3: हाँ
2: ठीक है ना, जिसे लेमैन लैंग्वेज में चूल्हा बदलना बोलते हैं, ठीक
3: हाँ
2: है
3: जी,
2: ना।
3: हाँ जी।
2: तो इसका सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन है वो है डिसलोकेशन,
3: ठीक है।
2: तो डिसलोकेशन ना हो इसलिए कहते हैं कि नीचे ना बैठें, आलती पालती ना मारें, स्क्वेटिंग एंड सिटिंग क्रॉस लेगिंग हैज टू बी अवॉइडेड थ्रू आउट योर लाइफ।
3: पर डॉक्टर साहब, जैसे मैं क्लास करती हूँ, मैं बेड पर लेट के कर सकती हूँ?
2: अब बेड पे लेट के कर सकती हैं, बैठ के कर सकती हैं, कुर्सी पे, सोफे पे, बिल्कुल
3: भी करती हूँ,
2: हाँ खड़े होके भी कर सकती हैं, बस आलती पालती नहीं मारनी है और नीचे नहीं बैठना है।
3: नहीं नहीं वो नहीं, बेड पर उल्टा भी लेट के कर सकते हैं?
2: बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं मैडम।
3: नहीं नहीं, मेरे को ये था कि मैं कहा जब तक कोई कंफर्मेशन आपके थ्रू ना हो तो
2: नहीं,
3: मैं कुछ ऐसा नहीं।
2: ऐसी
1: तो चलिए मिसेस
2: है।
1: बेदी, आपको आपकी जानकारी मिल गई है। डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने, मिसेस बेदी ने बात करी, ओल्ड एज पीपल हैं, अगर ओल्ड एज में अगर हिप फ्रैक्चर हो जाए तो जनरली और क्या किया जाता है?
2: ओल्ड एज में हिप फ्रैक्चर हो जाए मैडम, तो मैं कहूंगा 100% पेशेंट्स में एक ही अप्रोच होनी चाहिए सब डॉक्टरों की, कि उस फ्रैक्चर्स को ऑपरेट करके पेशेंट को खड़ा किया जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो फ्रैक्चर होता है ये चोट के कारण ही नहीं टूटा है, ये कमजोर हड्डियां जो हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस, इस कारण भी फ्रैक्चर हो जाता है। अगर इसमें हम प्लास्टर करें या ट्रैक्शन लगाएं तो लेटे रहने के कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो जैसे बेड सोर हो जाएगा लेटे रहने से, पैर में पिंडलियों में खून जमा हुआ है, जमा खून ब्रेन में जाके ब्रेन क्लॉट करेगा, कहीं गड़बड़ करेगा, लेटे लेटे यूरिन इन्फेक्शन बढ़ेगा, तो कॉम्प्लिकेशन इज मच हायर इन दोज पेशेंट्स विच वर नॉट ऑपरेटेड। तो अच्छे रिजल्ट उन्हीं पेशेंट्स में है जिसमें रिस्क उठा के जल्दी से ऑपरेशन किया जाए ताकि पेशेंट की एक्सरसाइज और चलना जल्दी से जल्दी किया जा सके, क्योंकि बेड रिडन कॉम्प्लिकेशन बहुत जल्दी इस एज में पकड़ लेती हैं।
1: और अगर जैसे कमर की हड्डी की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर फ्रैक्चर हो जाए तो उसे कैसे ट्रीटमेंट करी जाती है?
0: कमर की हड्डी के जब फ्रैक्चर होते हैं, पहली बात तो ये या तो किसी हाई एनर्जी ट्रॉमा से जैसे फॉल फ्रॉम हाइट है उससे हो जाते हैं, जैसे ओल्ड एज पेशेंट के अंदर जो फर्श गीला हो वहां स्लिप करके गिर के, जैसे ओल्ड एज पेशेंट मंदिर जाते हैं फर्श गीला हो वहां गिर जाते हैं, वहां फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। इन कंडीशंस के अंदर आमतौर तो वैसे जहां पेशेंट दर्द बताता है उस जगह के पार्ट का एक्सरे लेकर पता चल जाता है कि मरीज को फ्रैक्चर है कि नहीं, पर जब कई बार हड्डी बहुत कम पचकी होती है जहां पे अभी हमें पता नहीं चलता तो उस कंडीशन के अंदर हमें MRI करवा लेते हैं जिससे कन्फर्म हो जाता है। ये तो बात होगी कि कन्फर्मेशन कैसे करना है, नंबर वन। नंबर टू, जब कमर की हड्डी का फ्रैक्चर होता है इस कंडीशन, कमर की हड्डी के पीछे ही जो स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम है पीछे स्पाइनल कॉर्ड आती है, इट इज जस्ट लाइक केबल विच कैरीज अ करंट टू होल ऑफ द बॉडी। अगर हमें इसके अंदर उस केबल के ऊपर उस स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर कंप्रेशन पड़ता है तो कॉरेस्पॉन्डिंग हमें न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आ जाता है, जैसे पैरालिसिस हो जाता है वैसी कंडीशन हो जाती है। उस चीज को बचने के लिए जब भी कमर का फ्रैक्चर होता है पेशेंट को एब्सोल्यूट बेड रेस्ट कहा जाता है। एब्सोल्यूट बेड रेस्ट मीन्स टॉयलेट भी आपको बेड पे ही करना है। अब रहेगी उसकी बात मैनेजमेंट की। अगर तो ऐसे पेशेंट हैं जिसको हमें कंजर्वेटिव मीन्स हमें कुछ भी नहीं करना है, उस कंडीशन के अंदर कुछ ब्रेसिस बना दी जाती है डिपेंडिंग अपॉन द फ्रैक्चर साइट, जैसे टेलर्स ब्रेस है उस तरीके से अंदर ब्रेस पहना के पेशेंट को कहा जाता है कि कम से कम बिस्तर के अंदर 6 से 8 हफ्ते आपको बिस्तर के अंदर ही रहना है, लैट्रिन पेशाब भी आपको बिस्तर पे ही करना है, तब की हड्डी थोड़ी स्ट्रांग नहीं हो जाती। नहीं तो बिना स्ट्रांग किए अगर हड्डी नहीं जुड़ती, पेशेंट खड़ा होता है, नसों पे दबाव पड़ेगा, तो जैसे पैरालिसिस कंडीशन जैसी हो जाती है वैसी कंडीशन हो सकती है। अगर जिस कुछ कंडीशन के अंदर हम इसके अंदर जब वहां पे फ्रैक्चर होने के कारण जो फ्रैक्चर के फ्रेगमेंट्स हैं स्पाइन के फ्रेगमेंट्स हैं वो पीछे डिस्प्लेस होकर पीछे नसों को चुभोते हैं, उस पर प्रेशर डालते हैं, उस कंडीशंस के अंदर हमें इसको ऑपरेशन करने के उस प्रेशर को खत्म करना पड़ता है और उसके अंदर हमें प्लेट पेच भी लगाने पड़ते हैं। पर कई बार आज की डेट में अब लेटेस्ट जो मॉडलिटी आई है जिसके अंदर इतना कंप्रेशन नहीं है और पेशेंट को पेन काफी ज्यादा है, इस कंडीशन के अंदर हम लेजर वाला ऑपरेशन भी कहते हैं जिसको हम वर्टिब्रोप्लास्टी कहते हैं, काइफोप्लास्टी कहते हैं, वेसलप्लास्टी कहते हैं। उस कंडीशन के अंदर हम लेजर दूरबीन के नीचे देखते हुए एक इंजेक्शन लगा देते हैं, सीमेंट का इंजेक्शन लगा देते हैं, वो वर्टिब्रल बॉडी यहां फ्रैक्चर होता है उसके अंदर जाता है, फ्रेगमेंट्स फिलने बंद हो जाते हैं, पेशेंट को हम जल्दी चला सकते हैं, उसको बेड रिडन नहीं होना पड़ता।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं, मैम नमस्ते, डॉक्टर विनय जी को भी नमस्ते, डॉक्टर अजय जी को भी नमस्ते, आप सभी टीम को धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। मैं 52 वर्षीय हूँ और कुछ वजन उठाने के कार्य को करने की मजबूरी है, दोनों कंधों में दर्द रहता है, पेन बाम से आराम मिलता है, तो सलाह दीजिए जिससे मेरी हड्डियां मजबूत रहे। ये है कृष्णा रायपुर सी जी।
2: हाँ जी कृष्णा जी, देखो वजन उठाना आपकी मजबूरी है जैसा बता रहे हैं, तो उसमें तो हमें कमर दर्द की और घुटनों की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, आपको कंधों की जरा दिक्कत है, तो फिर अगर शुगर वगैरह नहीं है आपको, कोई फ्रोजन शोल्डर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको व्यायाम वर्जिश ही करनी है कंधों की, जो फिजियोथेरेपी वाले आपको सर्वाइकल शोल्डर एंड स्कैपुलर एक्सरसाइजेस अच्छे से सिखा देंगे, ठीक है। और बाकी अपना खान पान में दूध दही पनीर फल सलाद का ध्यान रखेंगे, विटामिन डी की जो नेचुरल डाइट है वो है बॉइल्ड एग्स फिश एंड सनलाइट, अगर आप ये सब का सेवन नहीं हो पाता है तो विटामिन डी कैल्शियम डॉक्टर से मिलके भी लें, एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी से आप ये सब चीजें कर पाएंगे।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पर, अभी हम जानेंगे कि किस तरीके से अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं, कैसा खान पान रखे और कैसे सुरक्षित लग रहे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।
4: इस भागती दौड़ती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए,
5: क्यों ना रेडियो डॉक्टर सुनकर स्वस्थ रहा जाए।
4: रेडियो डॉक्टर प्रतिदिन दोपहर 3 बजे FM रेनबो 102.6 MHz पर।
5: कार्यक्रम का फीडबैक और सुझाव भेजें health@delhi@gmail.com पर।

0: आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर।
1: रेडियो डॉक्टर में आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट पे। तो डॉक्टर साहब, ये जानना चाहेंगे, अगर कोई ऐसा बॉडी पार्ट अगर फ्रैक्चर हो जाता है जहां पर और प्लास्टर नहीं लग सकता, तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है?
2: हाँ, कई जगह ऐसी हैं, जैसे कि रिब्स हो गई, रिब्स में पसलियों का जो फ्रैक्चर होता है, कॉलर बोन का भी फ्रैक्चर होता है, तो इसमें भी प्लास्टर नहीं करते हम। रीढ़ की हड्डी में भी बहुत सारे फ्रैक्चर्स में प्लास्टर नहीं किया जाता। टेल बोन जो है, रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा, कॉक्सिक्स, वहां भी प्लास्टर की जरूरत नहीं होती है, ना कर सकते हैं। कूल्हे की हड्डियां भी टूट जाएं, उसमें अगर प्लास्टर कर दें तो पेशेंट की डेली एक्टिविटीज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो उसमें भी प्लास्टर इलाज नहीं है इसका। बच्चों में तो फिर भी ठीक है, कूल्हे की हड्डियों के फ्रैक्चर्स में हम प्लास्टर कर देते हैं, स्पाइका कर देते हैं, पर बड़ों में ये संभव नहीं हो पाता। तो इनके जो इलाज हैं वो शुरुआत से शुरू करता हूँ मैं, जैसे गर्म पट्टी बांधी, रेस्ट किया, थोड़ा समय दिया, अच्छा खान पान किया, तो उन चीजों से हड्डियां जुड़ जाती हैं समय के साथ। ये ध्यान रहे, फ्रैक्चर जो है हम डॉक्टर्स लोग इतने नहीं जोड़ते जितने पेशेंट खुद जोड़ता है। पेशेंट का अच्छा खान पान, अच्छी हीलिंग, जो उसको एंसेस्ट्रल एसेट मिला है, उसको पुश्तैनी जो हड्डियां जोड़ने की हीलिंग की पावर मिली है, उससे हड्डियां जुड़ती हैं। हमारा तो काम उसे सही राह दिखाना है जब तक वो जुड़े ना, ठीक है ना। वी ओनली असिस्ट द नेचुरल हीलिंग, वी कांट फाइट विद द नेचुरल हीलिंग। तो गर्म पट्टी बांधना, सिकाई करना, रेस्ट देना, इन चीजों से जुड़ जाती हैं। कॉक्सिक्स, रिब्स का फ्रैक्चर हो जाए तो ज्यादातर में तो रिब बेल्ट पहनने से काम चल जाता है, बड़े रेयर केसेस में ऑपरेशंस वगैरह करने की नौबत आती है। कॉक्सिक्स का जहां तक बात है तो खड़े होने और चलने में भी प्रॉब्लम है, तो इनके लिए बैठने के लिए सीट आती है, कॉक्सीडाइनिया सीट,

0: ठीक है ना, ऐसी ऐसी सीट पहने तो 2-3 2 महीने में लगभग ये हड्डी जुड़ जाती हैं। ठीक है, कूल्हे की जो हड्डियां टूट जाएं इसमें ट्रैक्शन लगा सकते हैं, छोटा मोटा फ्रैक्चर है रैमाए वगैरह का पेल्विस में, तो स्किन ट्रैक्शन विल बी सफिशियंट। उस पैर में खिंचाव लगा दिया 2 किलो का 3 किलो का, तो 3-4 हफ्ते में वो काफ़ी हील हो जाता है। लेकिन कूल्हे की हड्डी जो टूटी हैं तो उसमें ऑपरेशन की ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऑपरेशन करके प्लेट लगाई जाए, स्क्रूज डाले जाएं, या जैसे अभी बेदी जी का फ़ोन आया था, उनका इंटरकैप्सुलर नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर था जो जिसमें जुड़ने की संभावना नहीं होती है, तो उसमें ऑपरेशन करना पड़ता है। ये सब चीज़ें हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं रघुवीर सिंह ठाकुर बोल रहा हूँ, उत्तराखंड से।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा प्रश्न ये था कि डॉक्टर साहब से कि जैसे हड्डी को मजबूत बनाने के लिए या जैसे लेंथ होती है हड्डियों की, जैसे पेरेंट्स होते हैं उनके अनुसार ही उनके बच्चों के कद्स होते हैं, या उसको बढ़ाने के लिए या कुछ मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम हड्डियों को?
0: हाँ देखिए, इसमें आपके क्वेश्चन में 2 पार्ट हैं। आपने एक तो हड्डियों की मजबूती के लिए क्या किया जाए, दूसरा आप हाइट के बारे में पूछ रहे थे, हाइट कैसे इंक्रीज की जाए।
2: हाँ,
0: ठीक है ना, आप उत्तराखंड से हैं।
2: हाँ,
0: तो पहाड़ी लोगों की हाइट वैसी कम होती है।
2: हाँ, जैसे पेरेंट्स होते तो उन्हीं के अनुसार ही बच्चे होते हैं।
0: नेचर ने ऐसा बनाया है।
2: अच्छा,
0: क्योंकि उन्हें पहाड़ों पर रहना है।
2: हाँ,
0: पहाड़ों पर रहने वाले जो बाकी भी जानवर भी हैं, पालतू जानवर भी हैं, वो भी ज्यादा हाइट वाले नहीं होते।
2: हाँ,
0: ठीक है ना, वहां आपको जिराफ नहीं मिलेंगे, कैमल नहीं मिलेंगे, ठीक है ना, कम हाइट वाले मिलेंगे। नेचर ने ऐसा इसलिए किया है ताकि गिरें कभी तो कभी इन्हें चोट ना आए ज्यादा। ठीक है ना, तो हड्डियों की मजबूती के लिए तो सबसे बढ़िया कैल्शियम है, जिसके सोर्सेज हैं ही हमारे पास, दूध दही पनीर। विटामिन डी है ही, विटामिन डी के सोर्सेज हैं सूर्य की रोशनी, एग और फिश। ठीक है,
2: ठीक है, ठीक है।
0: और ये सब चीजें आप ये ना सोचें कि ये सब खाना पीना मुंह में डाल लिया हमने, पच गया तो हमारी हड्डियां मजबूत हो गईं। मजबूती के लिए एक्सरसाइज व्यायाम बहुत जरूरी होता है, तभी वो कैल्शियम हड्डियों में जाके जमा होता है और हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अब रही बात आपने जो कहा था जो हाइट बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल चीज इतना ध्यान रखें कि विटामिन डी कैल्शियम अच्छा रहे। जब बच्चा लंबा हो रहा है, जब उसकी हाइट गेन हो रही है, वो गेम्स खेले, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ऐसी चीजें खेलने से थोड़ी हाइट विटामिन डी लेते हैं तो अच्छी निकल आती है। लेकिन जो हेरिडिटरी है, किसी का जो हाइट ज्यादा नहीं बढ़ रही है, कोई ऑपरेशन की संभावना है, तो ऐसा नहीं कहूंगा नहीं है, तो कई ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एलिजा राव होता है, एक्सटर्नल फिक्सेटर लगा के हम हाइट धीरे धीरे बढ़ाते हैं। वो एक लंबा प्रोसेस है, साल तक चलने वाला प्रोसेस है। कभी टांग की हाइट लंबी करेंगे, फिर उसके बाद थाई की हाइट लंबी करेंगे, तो उसमें भी एक लिमिट है, एक लिमिट तक कर सकते हैं। अगर हम पैरों की हाइट ज्यादा लंबी कर दें और स्पाइन की हाइट कम है तो मिसमैच भी हो जाता है, देखने में भी सही नहीं लगता है। ठीक है, फिर हार्मोन थेरेपीज भी बच्चों में दे देते हैं, ग्रोथ हार्मोन दे दिया ताकि उसकी हाइट बढ़े, उसमें भी थोड़ा सा खतरा रहता है। ग्रोथ हार्मोन जब देते हैं तो सेक्स हार्मोन जो है वो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। फिर भी एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बच्चे में, जो बच्चे अभी मैच्योरिटी अटेन नहीं करे हैं, जिनकी उम्र 13-15 साल से कम है, उसमें ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह के भी बच्चों का डॉक्टर देख के या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देख के इस बारे में सोच सकता है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये है जोया, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। डॉक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय गुड फूड टू मेक ब्रोकन बोन टू क्योर इटसेल्फ?
3: सी, द बोन्स आर मेड अप ऑफ द प्रोटीन एज वेल एज द कैल्शियम। सो द हाई प्रोटीन इनटेक मींस इफ द यू आर द वेजिटेरियन, टेक लॉट ऑफ पल्सेस, सीरियल्स, स्प्राउट्स, चीज, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड इन द नॉन वेजिटेरियन यू कैन टेक द एग along with the green leafy vegetables, non-veg also. And exercises and all these things will help in to strengthen the bone.
1: एक और मैसेज है हमारे पास, ये लिखते हैं शिल्पा मैम, दोनों डॉक्टरों को गुड आफ्टरनून। महिलाओं में कमर का दर्द एक आम बीमारी है, वो अपने शरीर पर ध्यान नहीं देती हैं अक्सर महिलाएं, तो दोनों डॉक्टर इस पर क्या कहेंगे? नरदेव सिंह चौहान, कोटद्वार, उत्तराखंड।
0: ये सही कहा आपने, महिलाओं में कमर दर्द की जो प्रॉब्लम है थोड़ी मर्दों की अपेक्षा में थोड़ी अधिक ही होती है। ठीक है, कमर दर्द के कई कारण हैं, हमारे पेशाब की जगह का इन्फेक्शन, या फिर गर्भाशय की कोई भी दिक्कत हो, इवन किडनी का भी जो पथरी है या इन्फेक्शन है वो भी सब कमर दर्द करती है। ठीक है ना, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज जो लेडीज में है काफी, इसके बारे में एक गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा के ये रूल आउट कर लें, ये नहीं है तो फिर आता है कि हमारी हड्डियां और मांसपेशियां जिससे कमर दर्द होती है, तो उसके लिए कमर के व्यायाम करना, सही पोस्चर बैठने का होना, ये सब चीजें ज्यादा जरूरी हैं जिनसे ठीक रहेगा।
1: डॉक्टर साहब, जैसे कई बार है बच्चे हैं या बड़े हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ठीक है, वो गिर गए, उनकी फिंगर्स पे लग गए, शोल्डर्स में लग गई, समझ में नहीं आता फ्रैक्चर है या दर्द है, तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें और इमीडिएटली क्या करें?
3: बच्चों में खेलते वक्त चोट लग जाना और फ्रैक्चर्स हो जाना एक आम सी बात है। इस कंडीशंस के अंदर अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे हम चमड़ी कटती है, चोट लगती है, खून बहता है, इस कंडीशन के अंदर खून नहीं बहा पर अंदर तो खून बहा ही, जिसकी वजह से वहाँ पे नीलापन आ जाना, या लॉन्ग बोन फ्रैक्चर हो वहाँ पे टेढ़ापन आ जाना, ये सब चीज़ें हैं जो सस्पेक्ट करती हैं फ्रैक्चर है। इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले हमें कोल्ड वाटर फॉर्मेंटेशन करना चाहिए, आइस पैक लगानी चाहिए, ना कि हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन करना चाहिए। उस कोल्ड वाटर फॉर्मेंटेशन से, आइस पैक से सूजन कम रहेगी, नंबर वन। नंबर टू, जहां पे उस चीज को हम इमोबिलाइज करें बाय किस लकड़ी के डंडे से, इंच से, और इन कंडीशन जैसे लोअर लिम्ब में फ्रैक्चर्स है कोई डंडे से बांध दें, अगर नहीं है तो दूसरे लिम्ब के साथ ही किसी कपड़े से बांध दें, और उसके बाद हॉस्पिटल में ले जाकर वहां पे एक्सरे करके डॉक्टर की आगे सलाह लें। और अगर फ्रैक्चर है तो आमतौर पर जैसे पहले बताया था कि बच्चों के अंदर फ्रैक्चर्स के कंडीशन में प्लास्टर से ठीक हो जाते हैं, पर कुछ एक कंडीशन जैसे एल्बो फ्रैक्चर्स, जो फ्रैक्चर नोटोरियस फ्रैक्चर्स हैं, जो कई बार प्लास्टर लगे लगे भी बाद में अंदर ही अंदर टेढ़ापन वापस आ जाता है, इन कंडीशंस के अंदर भी हम कई बार चांस लेते हैं प्लास्टर करने के बाद हम सीरियल एक्सरेज लेते हैं, मींस एक हफ्ते बाद, दो हफ्ते बाद एक्सरेज लेते हैं, ताकि ये देखने के लिए कि प्लास्टर लगा तो दिया पर प्लास्टर लगे लगे भी हड्डी अंदर गलत ढंग से तो नहीं जुड़ रही। तो अगर फ्रैक्चर्स, अगर एक्सरे करने के बाद फ्रैक्चर्स नहीं हमें नजर आता, इट मींस पेशेंट को सॉफ्ट इंजरी है या लिगामेंटस इंजरी है, उस कंडीशंस के अंदर हमको गर्म पट्टी या स्प्रिंट बांध देते हैं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, हेलो।
4: हेलो,
1: नमस्कार जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
4: नमस्ते मैम, नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर साहब।
3: नमस्कार,
4: संजीव कुमार चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ सर।
1: जी बताइए, क्या प्रश्न है आपका?
4: मेरा प्रश्न मैम ये है कि एक दो दिन से ना मेरे जो जॉ की हड्डी है, जबड़े की हड्डी में बहुत दर्द हो रहा है राइट साइड पे।
0: ठीक है जी, कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी ना? कोई चोट नहीं लगी?
4: नहीं सर, कोई चोट नहीं लगी।
0: आपके अंदर के दांतों में तो नहीं कोई सड़न या कीड़ा टाइप इस तरह से?
4: नहीं, नहीं सर।
0: कई बार मोलर टीथ के कारण भी यहाँ पे दर्द होती है, बाकी हाथों पैरों के जोड़ों में कोई सूजन दर्द ऐसा नहीं?
4: नहीं सर।
0: और क्योंकि आपको बड़े थोड़े टाइम से ही है, दो दिन से ही है ये अभी?
4: पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है सर।
0: हाँ,
4: आज तो मेरे से खाना भी नहीं खाया गया।
0: हाँ, तो अब इसमें कई चीजें हो सकती हैं, जैसे एक वायरस इन्फेक्शन हो जाता है हमारे हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में, पैरोटिड में, कई बार मम्प्स भी हो जाते हैं, इस कारण भी जो है ये दर्द हम जॉ की तरफ समझते हैं, तो इस बारे में भी किसी डॉक्टर को दिखा लें, आप एमबीबीएस डॉक्टर हो या एमडी मेडिसिन डॉक्टर हो, वो देख लेगा। रही बात आपके जो जोड़ होता है, जबड़े का जोड़ होता है जो,
4: वही वही दर्द हो रहा है,
0: अगर वहाँ दर्द है तो कई बार गठिया रोग का भी लक्षण होता है ये, इसमें हम यूरिक एसिड, आर ए फैक्टर, ये सब चीजें,
4: यूरिक एसिड की मेडिसिन लेता हूँ सर मैं।
0: हाँ, तो एक गठिया रोग है आपको। खैर चलो, यूरिक एसिड की वैसे ही कोई ज्यादा पसंदीदा जगह नहीं है, पैरों की तरफ ज्यादा दर्द करता है यूरिक एसिड, लेकिन आपको जबड़े में हो रहा है तो फिर भी एक बारी एक्सरे करके देख लेंगे, आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल लें। बहुत सारे लोगों को गलत ढंग से टीवी देखना, मोबाइल देखना, किताबें पढ़ना, अपनी हथेली का ऐसा जोर पड़ जाता है जबड़े पे पढ़ते लिखते वक्त, तो उससे भी होता है। ठीक है
1: जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को रिब बोन में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो फिर उसकी कैसे ट्रीटमेंट की जाती है?
0: रिब बोन मैडम ये मूवमेंट वाली बोन है, इंसान जब सांस लेगा तो एक मिनट में लगभग 18 बार वो बोन हिलती ही रहेगी, वो कभी उसकी मूवमेंट आप रोक नहीं सकते, तो मगर एक अच्छी बात है कि इसमें अच्छी हीलिंग हो जाती है, तो 90% से भी ज्यादा केसेस में रिब बेल्ट दे देते हैं हम लोग, जैसे कमर की बेल्ट आती है ऐसे पसली की बेल्ट आती है, उसे इमोबिलाइज हो जाता है और वो हील हो जाता है, और अच्छा खान पान, ये हीलिंग, इन चीज सब चीजों से ठीक हो जाता है। बड़े रेयर केसेस में रिब का कोई शार्प फ्रेगमेंट टूट के अंदर फेफड़े के इस पे चुभ जाता है तो उसमें सांस में दिक्कत आ जाती है, तो इमरजेंसी वाली बात भी बन जाती है, उन केसेस में ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। कई केसेस में रिब में जोड़ने के लिए छोटी छोटी प्लेट्स एंड वायर्स भी आती हैं, उनसे भी जोड़ी जाती हैं, पर 90% केसेस में जरूरत नहीं पड़ती।
1: जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर्स की ट्रीटमेंट्स पर, तो क्या कुछ ऐसी आधुनिक तकनीकें उपलब्ध हैं कि जिसे जल्दी क्योर हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए?
3: मैम, सर्जरी जो होती है वो फ्रैक्चर हीलिंग को डिले करती है। हमारा पर्पस है हड्डी को जोड़ना। हड्डी को जोड़ना फ्रैक्चर सर्जरी तब करी जाती है जो फ्रैक्चर फ्रेगमेंट्स को हम नॉर्मल पोजीशन में अलाइनमेंट में नहीं ला पाते प्लास्टर की वजह से। अदरवाइज सर्जरी हमेशा फ्रैक्चर हीलिंग को डिले करती है, क्योंकि सर्जरी के अंदर जब स्पेशली हम सर्जरी में जब फ्रैक्चर को खोलते हैं प्लेट वगैरह लगाने के लिए, जब हड्डी टूटने के बाद अंदर जो खून इकट्ठा होता है जिसको हम हिमेटोमा कहते हैं, वो हड्डी जोड़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। लेकिन जब हम सर्जरी करते हैं प्लेट वगैरह लगाते हैं तो हिमेटोमा ड्रेन आउट हो जाता है, तो उसको डेट डिलेज द हीलिंग। बट इन चीजों को अवॉइड करने के लिए आजकल हम नेलिंग करते हैं, जिसको हम दूरबीन वाला ऑपरेशन भी कह लीजिए। उसमें हम दूरबीन के द्वारा हड्डी को बिठा के खोखली हड्डी के अंदर अंदर रॉड डाल देते हैं, और जिस जगह पे फ्रैक्चर होता है उस जगह पे इंसीजन नहीं दिया जाता, और जो अंदर हिमेटोमा कलेक्ट होता है वो ड्रेन आउट नहीं होता, तो इससे हीलिंग डिले नहीं होती। सो दीज आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स। यहाँ पे हम फ्रैक्चर को ट्रीट करते हैं बाय द इसको कहते हैं इंट्रामेडुलर नेलिंग या इंटरलॉकिंग नेलिंग कहते हैं। बट इन केस ऑफ द हिप फ्रैक्चर्स, जिसके अंदर यहाँ पे 60 साल से उम्र ज्यादा होती है, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है, इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है, यहाँ पे हड्डी को जुड़ने की संभावना बहुत कम होती है। अगर जुड़ भी जाए तो हड्डी में चूल्हे का खून का दौरा खत्म होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। उस कंडीशंस के अंदर हम 60 साल की उम्र के बाद और जोड़ के अंदर का फ्रैक्चर, जिसको इंट्राकैप्सुलर कहते हैं, उसमें जोड़ को बदलकर नया जोड़ डाल दिया जाता है। अगर 60 साल की उम्र से कम हो तो उसको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं।
1: तो फ्रैक्चर या के बाद जो जैसे प्लास्टर है वो खुल जाता है, या फिर ऑपरेशन के बाद का, उसके बाद का प्रोसीजर क्या रहता है?
0: ये सारी चीजें डॉक्टर के एडवाइस से ही फॉलो होती हैं। ज्यादातर केसेस में तो हम प्लास्टर निकलने के बाद जो लिंब है हाथ या पैर, वो स्टिफ मिलेगा हमें, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगी, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी का एक कोर्स जरूर करना पड़ता है। वो डॉक्टर गाइड करता है, ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका, कि फिजियोथेरेपिस्ट इसको कौन कौन सी देनी है, कैसी सिकाइयां करनी है, कितनी मूवमेंट किस किस रेंज में लानी है। ज्यादातर केसेस में 3-4 हफ्ते में फुल मूवमेंट आ जाती है और ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं।
1: एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पर, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। तो जैसे फिजियोथेरेपी की आपने बात करी, तो फिजियोथेरेपी या व्यायाम कितना जरूरी है और ये रिहैबिलिटेशन में कितना समय लगता है?
0: देखिए, हमारे इसमें कहावत है कि सक्सेस ऑफ ए गुड ऑर्थोपेडिक सर्जरी लाइज इन द हैंड्स ऑफ ए फिजियोथेरेपिस्ट। हम कितने भी अच्छे से हमें जोड़ दें हड्डियां, जोड़ उसकी अच्छी मूवमेंट के लिए, अच्छी वर्किंग में आने के लिए अच्छा व्यायाम बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है।
1: एक मैसेज हमारे पास, ये लिखते हैं, नमस्ते मैडम, ऐसा कहते हैं कि बुढ़ापा पैरों से आता है, क्या सही है? क्या करें जिसे एजिंग लेट आए बोन्स को फिट रखने में? राखी फ्रॉम किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट अजमेर।
3: राखी जी, देयर इज नो मेडिकेशन इन द वर्ल्ड एज सच जो एजिंग प्रोसेस को रोक सके। एजिंग हैज टू अकर विद टाइम इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, टू स्ट्रेंथन द बोन, यस, वी कैन टेक अ गुड अमाउंट ऑफ द कैल्शियम एंड प्रोटीन्स एंड गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विद द सन एक्सपोजर एंड द विटामिन डी।
1: एक और मैसेज है, ये लिखते हैं, थैंक यू सो मच फॉर सच एन एजुकेशनल प्रोग्राम, डॉक्टर अनिल कालरा, गुरुग्राम से। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे फिजियोथेरेपी की, तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में, जैसे कि आपने बताया था, तो ये हमें कितना लेना चाहिए, कैसे कैसे लेना चाहिए जिससे हम अपनी बोन्स मजबूत रख सके? कई बार होता है कि कहते हैं कि बोन्स वीक हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, कमजोर बोन्स है, इसलिए चटक चटक कई बार आवाज भी आती है।
0: नहीं, ये जो आवाज़ आती है ये अपने जो कहते हैं वो ऐसा नहीं, कई बार बहुत सारी तो जो जोड़ों में कड़ाके निकालते हैं, जॉइंट की मूवमेंट्स आती है, वो तो साइनुअल फ्लूड में एयर बबल्स बनते हैं उसके कारण होती है। लेकिन जो दूसरी आवाज़ें आती हैं, जो एब्नॉर्मल साउंड्स हैं, वो ऑस्टियोफाइट बोलते हैं, जोड़ घिस के हड्डी बढ़ जाए, सब इन कारणों से आती हैं, तो उसके इलाज हैं, जैसे कि ब्रेसिस पहन लो, सिकाई करें। कई की केसेस में जहाँ जोड़ों में ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, पेन है, इमोबिलिटी, ज़्यादा चला नहीं जा रहा, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, एक्सरे में डॉक्टर देख रहे हैं जॉइंट स्पेस खत्म हो गई है, तो ऐसे केसेस में जॉइंट रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, जहां नहीं कर पा रहे हैं उनमें ब्रेसिस पहना के एक्सरसाइज करा के काम चलता है।
1: अच्छा, कई बार होता है कि जैसे कोई बच्चा है, कहते हैं कि इसकी बोन्स कमजोर है, किसी की कहते हैं बोन्स हैवी है, तो क्या डिफ्रेंशिएट है ये?
0: नहीं, बोन कमजोर और हैवी का ऐसा नहीं है। ज्यादातर तो कॉर्टिकोमेडुलरी रेशियो एक्सरे में देख के डॉक्टर बोलते हैं कि ठीक है भाई, इसमें बोन जो है थोड़ी स्ट्रॉन्गर है, जिसमें कॉर्टेक्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसमें मेडुला ज्यादा वाइड है उसमें बोल देते हैं। डॉक्टर विनय, आप कुछ बताना चाहिए बारे में?

0: नर्व्स, मसल एंड बोन्स को डैमेज ना करें। फिर उसके बाद जैसे डॉक्टर ने इलाज बताया, भले प्लास्टर बताया है तो प्लास्टर की पूरी केयर रखें, प्लास्टर के अंदर गीला ना करें, पानी ना जाए, एक्सरसाइज जो बताई है वो बराबर करें, डॉक्टर की बताई हुई दवाइयां, कैल्शियम, विटामिन डी बराबर लीजिए। अगर डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन बताया आपके, तो ऑपरेशन की एडवाइसेज अलग हैं, इस किस फ्रैक्चर में वेट देना नहीं है, किसी में एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, तो हीलिंग अच्छी आनी आनी है।
1: एक मैसेज है हमारे पास, ये पूछते हैं कि फ्रैक्चर हीलिंग में मेडिकली हमें कितना समय लगता है?
0: फ्रैक्चर हीलिंग मेडिकली, तो फ्रैक्चर हीलिंग टेक्स 1 ईयर टू हील, ठीक है ना। एक कोई भी हड्डी टूट जाए, 1 साल उसे जोड़ने में, माइक्रोस्कोपिकली उसे 1 साल लगता है जुड़ने में। वो अलग बात है कि हीलिंग के हमें जो साइंस हैं वो एक्सरेज में 1-2 महीने में, 3 महीने में अच्छे दिख जाते हैं, वो तब हम पेशेंट को बोल देते हैं कि नाउ यू कैन स्टार्ट बियरिंग वेट या मूवमेंट अपनी अच्छी करना शुरू कर सकते हैं वो। पर किसी में अगर ऑपरेशन किया है, प्लेट, रॉड, स्क्रू डालना पड़ी है डॉक्टर्स को ऑपरेशन करके, तो वो निकाली तभी जाए जब वो फ्रैक्चर हील हो जाए अच्छा, जो कि 1 साल के बाद होता है।
1: एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर, हेलो
2: जी। ओम शांति।
1: ओम शांति जी, आपका नाम, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
2: मैं मेरठ से बोल रहा हूँ
1: जी, बताइए क्या प्रश्न है आपका?
2: मेरा कहना है कि ऐसा माना गया कि घुटने में कोई चोट लग जाए, कोई ऑपरेशन करना पड़े, तो वो 100% ठीक नहीं होता। अगर वो डॉक्टर को भी चोट लग जाए तो पूरी तरह ठीक नहीं होता, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कृपया विस्तार से बताएं।
0: हाँ देखिए, ऐसा है कि घुटने की चोटें वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, 2 प्रकार आप मान के चलिए। एक तो जिसमें फ्रैक्चर नहीं हुआ है, सिर्फ मेनिस्कस सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, या मेनिस्कस गए हैं जो रस्सी बोलते हैं, ठीक है ना, ACL, PCL, मेनिस्कस जो खेल कूद में ज्यादा टूटते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल या कोई भी गेम्स खेले तो मेनिस्कल इंजरी हो गई, क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी हो गई, तो ये ज्यादातर आपस अपने आप जुड़ते नहीं, क्योंकि इनमें खून का प्रवाह नहीं होता। जिसमें खून का प्रवाह नहीं, वो चीज नेचुरली हील होगी नहीं। ऑपरेशन करके हम भी वो उसे जोड़ेंगे नहीं, हम उसे रिप्लेस करेंगे। कोई मेनिस्कस है या क्रूशिएट टूटा है तो वो टेंडन से, लिगामेंट से रिप्लेस किया जाएगा। तो और रिप्लेस करने के बाद फिजियोथेरेपी करके पूरा नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल अपनी एफिशिएंसी पे, वर्क पे आ सकते हैं कुछ महीनों में। ऐसा नहीं कहेंगे कि पूरी आती नहीं। अब दूसरी इंजुरी हुई फ्रैक्चर्स। फ्रैक्चर्स में भी ऑपरेशन करके आप अच्छी हीलिंग 1-2 महीने में अच्छी आप कर सकते हैं। ये कहना गलत है कि पूरी ठीक नहीं होता है।
1: तो डॉक्टर साहब, अलग अलग फ्रैक्चर्स को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, कि अगर कोई घर में है, काम कर रहा है, फिसल गया, कोई रास्ते में जा रहा है, उसके एक्सीडेंट हो गया, तो कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है?
3: डिफरेंशिएट का मतलब, जैसे इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि लो एनर्जी ट्रॉमा एंड द हाई एनर्जी ट्रॉमा। लो एनर्जी ट्रॉमा बेसिकली वहाँ होता है जब हमारी बोन्स वीक होती हैं, और आमतौर पे जैसे इस आम जब बोन्स वीक होती हैं, कलाई का फ्रैक्चर, स्पाइन का फ्रैक्चर और हिप का फ्रैक्चर, दीज आर कॉमन फ्रैक्चर्स विच अकर स्पेशली इन द फीमेल, बिकॉज ऑफ द इन द मेनोपॉज, बिकॉज द हार्मोन डेफिशिएंसी, फीमेल्स आर मोर प्रोन टू डेवलप ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और जब रोड पे जाते हैं तो जैसे हाई एनर्जी ट्रॉमा, वह फ्रैक्चर कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है।
1: तो हड्डियों को मजबूत रखने के लिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
3: हड्डियों को मजबूत रखने के लिए, जैसे पहले बताया, हड्डियां जो हैं हमारी कैल्शियम से बनी हैं और प्रोटीन से बनी हैं। तो कैल्शियम के लिए हमें दूध और दूध की बनी चीज़ें विदाउट फैट के, अगर हम पनीर इज आल्सो नॉट सो गुड, डबल टोंड दूध पीना चाहिए, उसी के बना पनीर लेना चाहिए, उसी के बने दही और छाछ लेनी चाहिए। बाकी रही बात प्रोटीन की, वेज लोगों के लिए जैसे है सोयाबीन है, प्रोटीन दालें हैं, स्प्राउट्स हैं, ये सब लेने चाहिए। और नॉन वेज लोगों के लिए एग है, मीट लेनी चाहिए। और रेगुलर एक्सरसाइजेज, सन एक्सपोजर ये जरूर कर लेना चाहिए। और हमें बाकी जो कोमॉर्बिड कंडीशंस लाइक द डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायरॉइडिज्म है, हाइपरथायरॉइडिज्म है, और अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर एड ऑन करते हैं। इन चीज़ों से हमारी हड्डियां और कमजोर हो जाती हैं, और आगे हमारी टेंडेंसी रहती है लो एनर्जी ट्रॉमा के साथ भी फ्रैक्चर्स होने की। जैसे मंदिर में जाते हैं ओल्ड एज, वहाँ फिसल गए, घर के अंदर पोछा लगाया वहाँ फिसल गए, जब वेरी मोड कॉमन मोड ऑफ इंजरीज हैं, ओल्ड एज पीपल सुबह उठते हैं, वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम के अंदर गिर जाते हैं, दे डेवलप फ्रैक्चर्स।
1: तो आप बच्चों को और बुजुर्गों के लिए क्या मैसेज देंगे कि जिससे वो अपनी हड्डियों की सुरक्षा कर सके, और बच्चे जिनसे उनकी ग्रोथ अच्छी हो, और बुजुर्ग जो फिट रहे?
0: देखो बोन है।

0: के लिए तो सबसे खान पान का ही खास ध्यान रखें, एक्सरसाइजेस करें, सनलाइट एक्सपोजर रहे, तो इससे बोन्स आपकी अच्छी रहेंगी। जो बोन्स के लिए ठीक नहीं है, फ्रैक्चर हीलिंग के लिए भी जो ठीक नहीं है, मैं बताना चाहूंगा। एक तो हो गया पेन किलर्स, दर्द की दवाइयां जो हैं दे डिले दी बोन हीलिंग, तो दर्द की दवाइयां जितनी कम हो सकें ना लें, और इन चीजों का खास ध्यान रखें तो बोन हेल्थ आपकी सही रहेगी। और टोबैको का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, टोबैको ऑल्सो डिलेज द हीलिंग।
1: तो डॉक्टर विनय, तो जाते जाते आप हमारे श्रोताओं के लिए क्या मैसेज देंगे?
2: श्रोताओं के लिए मैं मैसेज यही है कि जैसे पहले ऑलरेडी बता दिया गया है हाउ टू मेंटेन ए गुड हेल्थ ऑफ द बोन्स, वो तो आपको बता ही दिया है। मेडिकली एडवाइस आपको ये देना चाहूँगा, जब भी कोई भी डॉक्टर आपको एडवाइस करता है फ्रैक्चर्स के अंदर ऑपरेशन करवाने की, उसको फॉलो करें। ये अब हम ना मान के चलें कि एवरी फ्रैक्चर रिक्वायर्स प्लास्टर ओनली, कि उसमें सर्जरी की जरूरत नहीं है। कई सारे फ्रैक्चर्स में जैसे पहले बता दिया गया है, फ्रैक्चर्स ऑपरेशन किए बिना ठीक नहीं होते। या दूसरी बात ये है कि जब कुछ लोग सलाह ना मानते हुए किसी पहलवान के पास या मसाज क्वैक के पास चले जाते हैं, वहाँ मसाज करवाते हैं, स्पेशली द एल्बो जो कि मायोसाइट ऑसिफिकेंस कर देते हैं और नुकसान कर देते हैं, या प्लास्टर करने के बाद कुछ देर बाद आते हैं, 6 महीने बाद, साल बाद आए तो हड्डी टेढ़ी जुड़ चुकी होती है, तो जो कि आगे चल के टेढ़ी हड्डी जुड़ने के कारण बॉडी की सारी बायोमैकेनिक्स को खराब करती है। वहां पे फिर हड्डी को काट कर सीधा करना, प्लेट लगाना काफी मुश्किल हो जाता है।
1: और डॉक्टर अजय, आप क्या मैसेज देंगे हमारे श्रोताओं को?
0: मेरा ये कहना है अच्छे से अपना एक्सरसाइजेस और खान पान का ध्यान रखें, डॉक्टर्स की एडवाइस पूरी फॉलो करें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं।
1: तो श्रोताओं, उम्मीद है कि आज की चर्चा से फ्रैक्चर से जुड़े आपके कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ध्यान रखिए, हड्डियां हमारे शरीर का आधार हैं, सावधानी दुर्घटना से बचाती है और समय पर उपचार जल्द स्वस्थ होने का रास्ता दिखाता है। किसी भी चोट को हल्के में ना ले और जरूरत पड़ने पर तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सक से सलाह लें। आज कार्यक्रम में हमारे साथ रहे डॉक्टर अजय शर्मा ऑर्थोपेडिक सर्जन और डॉक्टर विनय सिंगला ऑर्थोपेडिक सर्जन। डॉक्टर साहब, आप दोनों का कार्यक्रम में आए और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: दोस्तों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर मेल कीजिएगा। हमारा मेल आईडी है healthair@gmail.com। इसी के साथ मैं शिल्पा गुप्ता आपसे लेती हूँ अनुमति, फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ आपके अपने कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
4: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आप सुन रहे

नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्र में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUCFDC के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। दिल्ली सरकार ने राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बिहार से पहली बार GIT टैग वाला मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया निर्यात की गई। भारतीय भुगतान परिषद ने स्पष्ट किया है कि UPI लेन देन उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए निःशुल्क बना रहेगा। राष्ट्र आज नोबल

पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर की 50वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। श्री अमरनाथ जी यात्रा खराब मौसम और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की खराब स्थिति के कारण स्थगित की गई। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आज सुबह एक निजी बस दुर्घटना में 7 लोगों की मौत और 11 घायल। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी अश्मिता चलहिया कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंची और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो ये थे इस घंटे के आकाशवाणी रेनबो पर अब तक के मुख्य समाचार।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। मेडिकल हिस्ट्री में अहम रोल प्ले करते हैं रेगुलर हेल्थ चेकअप। डॉक्टर्स कहते हैं कि रेगुलर हेल्थ चेकअप से न सिर्फ किसी बीमारी को शुरुआती स्टेज में पकड़कर उसका इलाज किया जा सकता है, बल्कि ये किसी व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री को भी बताने में भी काफी मदद करती है। हेल्थ चेकअप के द्वारा डॉक्टर को मरीज का इलाज करने में अच्छी समझ मिलती है, साथ ही उसे डॉक्टर मरीज की बॉडी और उसके मेटाबॉलिज्म को भी अच्छी तरह से समझ पाता है। इसके आधार पर डॉक्टर मरीज को दवाइयां और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की सलाह देता है। लोग क्यों नहीं कराते रेगुलर हेल्थ चेकअप? अगर आम आदमी की बात करें तो वो अपने बजट को लेकर बहुत सीरियस होते हैं। आम आदमी के रेगुलर हेल्थ चेकअप न कराने के पीछे उसका बजट एक कारण है। कई बार लोग हेल्थ चेकअप के फायदे के बारे में जागरूक तो होते हैं, लेकिन वो इसलिए इसे रेगुलर बेसिस पर नहीं कर पाते क्योंकि वो उनके हेल्थ प्लान में शामिल नहीं होता है। दरअसल अधिकतर हेल्थ प्लान पैथोलॉजी टेस्ट जैसे ही ब्लड और यूरिन टेस्ट, हार्ट इमेजिंग टेस्ट लाइक एक्सरेज एंड अल्ट्रासाउंड, किडनी टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट को शामिल नहीं करता है। ऐसे में लोग अलग से इन्हें कराने से कतराते हैं।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। तो दोस्तों, आप सुनिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करने के फायदे। अपने बीमार होने का जोखिम बहुत कम हो जाता है। खतरनाक स्वास्थ्य स्थितियों और जानलेवा बीमारियों का जल्दी पता लग जाता है। बीमारी का पता लगने पर इलाज और उपचार में मदद मिलती है। मौजूदा स्थितियों की बारीकी से निगरानी करके जटिलताओं के जोखिम को सीमित किया जा सकता है। स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद मिलती है। महंगी चिकित्सा सेवाओं से बचकर स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम किया जा सकता है। रेगुलर हेल्थ चेकअप से डॉक्टर के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बन सकती है, जो इलाज को आसान बनाती है। नई चिकित्साओं और तकनीक की जानकारी मिलती है। तो इतने फायदे हैं दोस्तों, और बहुत कुछ भी सीखने को मिलता है दोस्तों अपने हेल्थ के बारे में। तो ध्यान से सुनिए लम्हे प्रोग्राम चेतन से।

दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। एक महिला को परिवार की रीढ़ की हड्डी के रूप में माना जाता है, क्योंकि वह हर जरूरत को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है और घर के हर सदस्य की देखभाल, हर चीज और हर किसी की देखभाल करती है। एक महिला घर की हर जरूरत और अनुरोध को पूरा करने के लिए दिन के 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन काम करती है। कई बार इस वजह से महिलाएं अपने सेहत को भी नजरअंदाज कर देती है, इसलिए एक महिला को विशेष देखभाल और समय पर कुछ स्वास्थ्य परीक्षण और जांच कराने की आवश्यकता होती है, वे अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रह सके और सेहतमंद रहे। रूटीन ब्लड टेस्ट संभावित स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने में मदद करता है। ये टेस्ट एक महिला के समग्र शारीरिक स्वास्थ्य की जांच करने के सबसे महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। नियमित अंतराल पर परीक्षण करवाने से महिलाएं देख सकती है कि समय के साथ उनका शरीर किस तरह से बदलता है और उन्हें अपने स्वास्थ्य के बारे में सूचना निर्णय लेने के लिए जागरूक होना है। रूटीन ब्लड टेस्ट में आमतौर पर ब्लड प्रेशर टेस्ट, एनीमिया परीक्षण, ब्लड शुगर टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, विटामिन डी सहित अन्य टेस्ट शामिल है। एक महिला साल में 2 बार इन रक्त परीक्षण को करना चाहिए। मैमोग्राम मूल रूप से महिलाओं के स्तनों का एक्सरे होता है। मैमोग्राम स्तनों कैंसर के लक्षण को पता लगाने में मदद करता है। यह महिलाओं में कैंसर से संबंधित मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। एक महिला को आमतौर पर 40 साल की उम्र के आसपास अपना मैमोग्राम करवाना शुरू कर देना चाहिए और फिर हर 1 या 2 साल के बाद इसे दोहराना चाहिए। कुछ डॉक्टर आपको 50 साल की उम्र तक मैमोग्राम करने की सलाह दे सकते हैं। यह परीक्षण एक महिला के स्तनों में होने वाले सौहार्दपूर्ण परिवर्तन जैसे गांठ, असामान्य त्वचा और अन्य की पहचान करने के लिए किया जाता है। गर्भवती महिलाओं को यह परीक्षण नहीं कराना चाहिए। कैंसर संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की जांच के लिए पेल्विक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। दोस्तों, 21 साल की उम्र के आसपास में एक बार पेल्विक टेस्ट करवाना चाहिए।

एक बोन डेंसिटी टेस्ट एक महिला के शरीर के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कूल्हे, एड़ी और कलाई में हड्डी के द्रव्यमान को मापती है। बीएमडी ऑस्टियोपोरोसिस का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण परीक्षणों में से एक है। ऑस्टियोपोरोसिस महिलाओं में एक स्वास्थ्य स्थिति है जिसमें उनकी हड्डियां भंगुर और कमजोर हो जाती है और टूटने के लिए अति संवेदनाशील हो जाती है। विभिन्न मशीनों का उपयोग करके बोन डेंसिटी टेस्ट किया जा सकता है। इस सभी स्क्रीनिंग टेस्ट को हर महिला को समय समय पर जरूर करवाना चाहिए, जिससे सेहत की उचित देखभाल के साथ चिकित्सकीय परामर्श लिया जा सके और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपने आरजे चेतन को इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों। आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। This program is produced and sponsored by Adventist Media Center.

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: हेलो एंड नमस्ते इंडिया। स्क्रॉल स्वाइप क्लिक अल्फा जनरेशन टेक सेवी डायनेमिक और आज के दुनिया के यंगेस्ट कंज्यूमर्स उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं तीन वर्ड्स यानी स्क्रॉल स्वाइप क्लिक के आसपास ही घूमती नजर आती है ना। इन्फॉर्मेशन उनके फिंगर टिप्स पे है, दुनिया उनकी स्क्रीन पर है, लेकिन इस डिजिटल स्पीड के बीच कभी कभी जरूरत पड़ती है एक छोटे से पॉज की, एक डिटॉक्स की। आकाशवाणी रेनबो पर प्रोग्राम अल्फा जेन के आज के एडिशन लेट्स डिटॉक्स में हम बात करेंगे एंगर डिटॉक्स की। जी हाँ, ताकि हम सब जो गुस्से की एनर्जी है ना उसे कहीं ना कहीं इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं बल्कि माइंडफुल रिस्पॉन्स, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशनल बैलेंस और पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की डायरेक्शन उसे दे सके। मैं हूँ प्रियंका वर्मा आपके साथ। Good evening.

कांवर दिल में महादेव का नाम, कंधों पे कांवर दिल में महादेव का नाम, और होठों पर नमो नमो शंकरा की गूंज, हर कदम भक्ति समर्पण और विश्वास का एहसास बन जाती है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अल्फाजन और आज लेट्स डिटॉक्स के एडिशन में हम बात करेंगे एंगर डिटॉक्स की। ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो जरा ठहरो, ए जाते हुए लम्हों जरा ठहरो, मुझे खुद से मिलना है, इस भागती हुई जिंदगी में अपनी धड़कनों को भी सुनना है, बस एक दिन चुरा कर वक्त से खुद के नाम करना है। तो आइए आज कुछ देर के लिए इस फास्ट पेस दुनिया से लेते हैं छोटा सा ब्रेक, थोड़ी देर ठहर कर खुद से मिलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कभी कभी खुद के साथ बैठना भी सबसे बड़ी इमोशनल हीलिंग होती है। लेट्स डिटॉक्स आज के एडिशन में हम बात करेंगे एंगर डिटॉक्स की। जब छोटी छोटी बातें भी हमारे इमोशंस को ट्रिगर करने लगते हैं, जब बिना सोचे समझे दिन गए रिएक्शंस रिश्तों में दूरियां पैदा करने लगते हैं, और जब हमें लगता है कि गुस्सा ही हर प्रॉब्लम का जवाब है, जब स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट, अनमेट एक्सपेक्टेशंस और पुराने इमोशनल वूंड्स और अंदर ही अंदर गुस्से की शक्ल लेने लगते हैं, जब हर छोटी बात इरिटेट करने लगती है या हम समझ ही नहीं पाते कि क्या है असली, क्या ये ट्रिगर सिचुएशन है, क्या हमारे अंदर छुपा कोई अनरिजॉल्व इमोशन। आज मैं और मेरा डेली रूटीन, यानी आपका और आपका डेली रूटीन, एक छोटा सा इमोशनल चेक इन करेंगे आज

आप अपने आप से पूछेंगे, क्या मेरा गुस्सा वाकई सिचुएशन के लिए इस सिचुएशन की वजह से है या इसके पीछे कोई पुराना हर्ट, स्ट्रेस या इमोशनल ट्रिगर छुपा है? क्या मैं अपने एंगर ट्रिगर्स को पहचान पाती हूँ या पाता हूँ, या हर बार बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ? क्या मेरा गुस्सा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है या मेरे इनर पीस यानी एनर्जी को और रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहा है? इमोशंस को दबा रही हूँ या दबा रहा हूँ, या उन्हें अनहेल्दी तरीके से एक्सप्रेस कर रही हूँ या कर रही हूँ या कर रहा हूँ? और सबसे जरूरी, क्या मैं अपने गुस्से को, अपना गुस्सा, क्या मेरा गुस्सा मुझे कंट्रोल कर रहा है या मैं अपने गुस्से को समझकर उसे रेगुलेट करना सीख रहा हूँ या कर रही हूँ? तो आइए थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, अपने एंगर ट्रिगर्स को पहचानते हैं, गुस्से को दबाते नहीं उसकी वजह को समझते हैं। एक गहरी सांस, माइंडफुलनेस और इमोशनल अवेयरनेस के साथ रिएक्शन से रिस्पांस की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि जब हम गुस्से को दुश्मन नहीं एक इमोशनल सिग्नल समझने लगते हैं तभी हमें अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाते हैं और जिंदगी की रिदम को सुकून, बैलेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ जीना सीख पाते हैं। फिलहाल ये गाना, फिर आती हूँ आपसे बात करने के लिए प्रोग्राम अल्फा जेन में, और आज के एडिशन लेट्स डिटॉक्स में बात हो रही है एंगर डिटॉक्स की।

कविता सेठ की सोलफुल आवाज इस गीत को एक अलग ही रूहानी रंग दे देती है ना। इनफैक्ट ये जो ट्रैक है ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इस ट्रैक को सुनते वक्त जैसे किसी शहर की भीड़ में कोई अपनी इनर वॉइस सुन रहा हो, अपनी अंदर की आवाज सुन रहा हो। ये गाना सिर्फ एक रोमांटिक मेलोडी नहीं बल्कि सेल्फ डिस्कवरी और इमोशनल फ्रीडम का एक साउंड ट्रैक है। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा। इसके लिरिक्स को अगर आपने बहुत ध्यान से सुना है या समझा है, आकाशवाणी रेनबो पर अल्फा जैन चंद्र सुन रहे हैं आप और लेट्स डिटॉक्स में आज हम बात कर रहे हैं एंगर डिटॉक्स की। गुस्से की आग में अक्सर अपने ही जज्बात जल जाते हैं। गुस्से की आग में अक्सर अपने ही जज्बात जल जाते हैं। कभी अपनों पर तो कभी अनजानों पर लफ्ज बरस जाते हैं। पल भर के गुस्से को जरा संभालिए बंधु, थोड़ा सा ठहराव रखिए, कहीं ये जिंदगी भर का अफसोस न बन जाए। गुस्सा एक नेचुरल बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इमोशन है। ये एक ऐसा इमोशन है जो हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा है ना। इसके पीछे कुछ इमोशनल, मेंटल और फिजिकल ट्रिगर्स छुपे होते हैं। कभी किसी की बात दिल को चुभ जाती है, कभी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, तो कभी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाती है और हम गुस्से का शिकार हो जाते हैं। लेकिन गुस्सा आना गलत नहीं है, गुस्से को गलत तरीके से एक्सप्रेस करना जरूरी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, एंगर मैनेजमेंट का सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना। ट्रिगर का मतलब है कोई भी सिचुएशन, पर्सन या शब्द या मेमोरी जो ब्रेन को ये सिग्नल देती है कि आप किसी चैलेंज को या डेंजर को फेस कर रहे हैं। जैसे ही ये सिग्नल मिलता है ब्रेन को, जी हाँ एक सिग्नल मिलता है तो इमोशनल अलार्म सिस्टम की तरह काम करता है एमिगडाला। जी हाँ, तो वो बॉडी के फाइट और फ्लाइट रिस्पांस को एक्टिवेट कर देता है। इसके बाद जो है कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मसल्स टाइट हो जाती है, ब्रीदिंग भी फास्ट हो सकती है। इसी वजह से कुछ एक पल में अक्सर हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। तो रिसर्च ये भी बताते हैं कि इंटेंस एंगर के दौरान ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होता है, टेम्पररी तौर पर कम इफेक्टिव हो सकता है। इसलिए गुस्से में किए गए डिसीजंस या बोले गए शब्द बाद में अफसोस का कारण बन जाते हैं और ये हमने देखा भी है ना। और हर इंसान के ट्रिगर्स अलग होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि गुस्सा अक्सर प्राइमरी इमोशन नहीं होता, बहुत बार इसके पीछे हर्ट, रिजेक्शन, फियर, गिल्ट, शेम, डिसअपॉइंटमेंट, इनसिक्योरिटी, कभी किसी बात को ना समझ जाने का दर्द होता है। ये बहुत सारे इमोशंस छुपे होते हैं, यानी जो बाहर दिख रहा है वो गुस्सा है लेकिन अंदर कहानी कुछ और चल रही है। इसलिए जरूरी है कि हम गुस्से से लड़ने के बजाय उसकी वजह को समझने की कोशिश करें। रिसर्च ये भी बताती है कि नींद की कमी, भूख, क्रॉनिक स्ट्रेस और फिजिकल फटीग, ये जो है ना, ये एमिगडाला की सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है। इस वजह से हम थके हुए और स्ट्रेस्ड होते हैं, तब छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगने लगती है और बहुत बार गुस्से के एक पल में निकले हुए कड़वे शब्द ना हमारे अपनों को चोट पहुंचा देते हैं। जी हाँ, जो हमारे सबसे करीब होते हैं। एक छोटी सी बहस कभी कभी रिश्तों में दूरियां ला देती हैं। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से में लिए गए फैसले, गुस्से में बोले गए शब्द, दोनों को अक्सर असर बहुत ही ज्यादा गहरा होता है। इसलिए एंगर डिटॉक्स का मतलब गुस्से को दबाना नहीं है। हेल्दी अप्रोच यही है कि हम गुस्से को पहचानें, उसकी वजह समझें, उसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से एक्सप्रेस करें। बात करेंगे आगे भी कि एंगर डिटॉक्स के बारे में। अभी तो बस ये कहूंगी कि अपने ट्रिगर्स को पहचानिए दोस्तों, क्योंकि अवेयरनेस ही एंगर मैनेजमेंट का सबसे पावरफुल शुरुआत है।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

की एंड श्रेया घोषाल की आवाज़। ये गाना जब मैंने पहली बार सुना था ना जिस टूर से, तो मैंने बस इस गाने ने जगह बना ली थी मेरे दिल में। और ये गाना जो है ना, ये सिर्फ रोमांस को सेलिब्रेट नहीं करता बल्कि उस पल को कैप्चर करता है जब किसी की मोहब्बत जिंदगी को एक नया एहसास दे जाती है। जो मोहब्बत में हो, इश्क में हो, प्यार में हो, ये तो वही जान सकता है ना। डिटॉक्स के बारे में आज बात कर रहे हैं हम, लेट्स डिटॉक्स में। अगर आपकी भी कोई कहानी है गुस्से को लेकर, कोई किस्सा है, तो हमसे शेयर कर सकते हैं कि कभी आप अपने गुस्से का ही शिकार हो, या आपके गुस्से को आपने कंट्रोल करके आपने एक समझदारी का डिसीजन लिया हो। 9868107070 पर भेज सकते हैं, 9868107070। मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। खामोशियों के पीछे भी एक कहानी होती है, खामोशियों के पीछे भी एक कहानी होती है, हर मुस्कुराहट के पीछे कोई परेशानी होती है। बामुशायर गुस्से को दबाइए नहीं, समझा कर संभालिए, दिल के एहसासों को समझदारी से बयां कीजिए। हम अक्सर गुस्से को सिर्फ एक तेज़ आवाज़, आर्ग्यूमेंट से, एग्रेशन से जोड़ते हैं, जिसके बारे में हमने पहले बात की। ये गुस्सा हमेशा शोर के रूप में नहीं आता दोस्तों, कभी कभी गुस्सा खामोशी के लिबास पहन कर आता है। इंसान बाहर से शांत, बिल्कुल शांत नज़र आता है, नॉर्मल, काम, लेकिन अंदर ही अंदर हर्ट, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन या कोई रिजेंटमेंट को कैरी करता रहता है। अंदर एक तरह का इमोशनल स्ट्रगल चल रहा होता है, इसी को हम साइलेंट एंगर के रूप में समझ सकते हैं। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जब हम अपने इमोशंस को बार बार सप्रेस करते हैं तो ब्रेन का इमोशनल प्रोसेसिंग सिस्टम कंटिन्यूसली एक्टिव रह सकता है। एमिग्डाला जो इमोशंस और स्ट्रेस रिस्पांस को प्रोसेस करता है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में अलर्ट मोड में आ जाता है। अगर इमोशनल स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे तो बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जो मूड, स्लीप, एनर्जी लेवल और ओवरऑल वेलबींग को अफेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बहुत ध्यान से हमें अपने शब्दों का यूज़ करना चाहिए दोस्तों। साइलेंट एंगर का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इमोशनल सप्रेशन। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब हम अपने इमोशंस को इग्नोर करते हैं या उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो इमोशनल बर्डन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब हर्ट, फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट को समझने के बजाय हम अंदर ही अंदर दबा देते हैं तो वही अनरिजॉल्व्ड इमोशन कभी इरिटेशन, एंग्जाइटी, इमोशनल एग्जॉशन या रिलेशनशिप डिफिकल्टीज के रूप में सामने आ सकते हैं। साइलेंट एंगर की सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि पता ही नहीं चलता इसका आसानी से। इंसान बाहर से बहुत ही नॉर्मल, कंपोज नजर आता है, लेकिन अंदर एक इमोशनल स्ट्रगल चल रहा होता है। कभी वो बात करना कम कर देता है, या अपने आप में रहने लगे, या फिर छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लगे, या अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करता रहे। ये खामोशी अक्सर इस बात का सिग्नल होती है कि दिल के अंदर कुछ इमोशंस हैं जिन्हें समझने और एक्सप्रेस करने की जरूरत है। दोस्तों, अगर हम अपने ही अंदर अंदर गुस्सा दबाते रहेंगे और उसे हेल्दी तरीके से चैनलाइज नहीं कर पाएंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर पड़ सकता है। लॉन्ग टर्म इमोशनल सप्रेशन से स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिससे एंग्जाइटी, इमोशनल एग्जॉशन, स्लीप प्रॉब्लम्स और कुछ केसेस में सीवियर इमोशनल डिस्ट्रेस या डिप्रेशन जैसे चैलेंजेस का रिस्क बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने गुस्से को इग्नोर ना करें बल्कि उसे समझें और सही डायरेक्शन दें। बंधुओं, साइलेंट एंगर डिटॉक्स का मतलब गुस्से को खत्म करना बिल्कुल नहीं है, अपने इमोशंस को समझना, रेगुलेट करना, उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन देना। क्योंकि जो इमोशंस हम समय पर समझ लेते हैं ना, वो बोझ नहीं बनते, वो हमें खुद को बेहतर समझने और जिंदगी को ज्यादा बैलेंस के साथ जीने का मौका देते हैं। फिलहाल ये ट्रैक कह रहा है मुझे प्ले कर दो, तो फिलहाल ये बहुत ही रोमांटिक डुएट है, तो इसको एंजॉय करते हैं अरिजीत सिंह एंड असीस कौर फ्रॉम द फिल्म खेसरी।

0: मम्मी बस अभी निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन अभी आई है।
1: बेटा कुछ खा लो, मेरठ आते आते शाम हो जाएगी।
0: अरे मम्मी एक घंटे में घर पहुंच जाऊंगा, आप बस खाना तैयार रखिए।
1: हैं इतनी जल्दी?
0: देश बदल रहा है मम्मी, अभी एयरपोर्ट जैसे ट्रेवलेटर पर चलकर साथ के नमो भारत सराय कालेखा स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से ट्रेन पकड़कर बस मिनटों में मेरठ।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय कालेखा से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगमपुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।

वेलकम बैक आ गई हूँ मैं प्रियंका वर्मा जी हाँ आपके साथ बातें करने के लिए प्रोग्राम अल्फा जैन में। और लेट्स डिटॉक्स के आज के एडिशन में हम बात करें एंगर डिटॉक्स की। गुस्सा जी गुस्सा, गुस्से में लिए गए फैसले, गुस्से में बोले गए शब्द ओहो बहुत ठेस पहुंचाते हैं, है ना। तो गुस्से को बहुत ध्यान से सोच समझ कर एक्सप्रेस करना चाहिए। अभी मैसेज आया जैसे कि मैंने कहा कि आप भी अपने कुछ विचार शेयर कीजिए 9868107070 पर। बताइए कि आपने कभी अपने गुस्से को कंट्रोल करके कुछ अच्छा डिसीजन लिया हो या गलत कुछ हो गया हो तो वो भी हमसे शेयर कर सकते हैं। मैसेज आया है, राम राम जी, सभी के मुख से निकले शब्द इतना पवित्र हो सकते हैं कोई सोचता नहीं। शब्द ही है जो आरती का हिस्सा बनते हैं, शब्द ही है जो प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, कथा करते हैं। शब्दों की भी एक आत्मा होती है, उसको पवित्र करना आपके हाथ में है। उसको अपशब्द बोलकर कभी उनका मान ना तोड़ें और सदा पवित्र बने रहें। इसके लिए प्रभु से कहे गए शब्द भी आपके हैं प्रभु, इनको भी हमारी तरह सद्बुद्धि ही देना। इतने ही काबिल है हम ये संदेश भेज रहे हैं जिनके आगे हम कुछ भी नहीं। हेलो एंड नमस्ते इंडिया, रोहित खेरा, दिल्ली 9। सुंदर मैसेज भेजते हैं रोहित जी। सच में शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, उनमें भाव और असर दोनों होते हैं। प्रभु हम सबको ऐसे शब्द बोलने की बुद्धि दे जो किसी के मन को दुखी ना करे, सुकून करे। राम राम जी। और वैसे भी शब्दों में एक अलग सी एनर्जी होती है, इस बात को महसूस हम करते हैं। अगर आप लोगों ने महसूस किया कि शब्दों की भी अपनी एक एनर्जी होती है और इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, अपने मन को संभालना चाहिए, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होती है, सामने वाले के मन तक पहुंचने वाली एनर्जी होते हैं। प्रभु हमारी वाणी में प्रेम और सद्बुद्धि हमें बनाए रखे, मैं तो यही कहूंगी। बहुत ही खूबसूरत आपका मैसेज है। और इसी के साथ दोस्तों हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुस्से की लहर जब दिल के किनारों से टकराए, गुस्से की लहर जब दिल के किनारों से टकराए, थोड़ा ठहर जाइए बंधु, सांसों से अपना रिश्ता निभाइए। एक गहरी सांस में छुपा है सुकून का रास्ता, एक पल का ठहराव बदल सकता है दोस्त आपके गुस्से का अंदाज। तो लफ्जों को रोक कर पहले दिल को समझाइए, अपने गुस्से को सही दिशा दिखाइए और फिर जिंदगी के रिदम के साथ अपनी तार मिलाइए। गुस्सा एक नेचुरल इमोशन है, हर इंसान को कभी ना कभी गुस्सा आता ही है, लेकिन असली चैलेंज ये नहीं कि गुस्सा आए या नहीं, चैलेंज तो ये है कि आप अपने गुस्से को कैसे हैंडल करते हैं। जब इमोशंस इंटेंस हो जाते हैं तो हमारा ब्रेन एमिग्डाला जो इमोशन रिस्पांस को एक्टिवेट करता है जल्दी रिएक्ट करने लगता है और हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं या कर सकते हैं। इसलिए छोटा सा पॉज, एक डीप ब्रेथ, गहरी सांस और थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकता है। दोस्तों हर सिचुएशन में तुरंत रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता और यहीं से शुरू होता है एंगर मैनेजमेंट और इमोशनल रेगुलेशन का प्रोसेस। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक डीप ब्रेथिंग टेक्निक्स यानी गहरी सांसें लेना नर्वस सिस्टम को काम करने में मदद करती है। जब हम गुस्से के वक्त धीमी और गहरी सांसें लेते हैं ना तो पैरासिम्पटोमेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है जो बॉडी को के रिस्पॉन्स स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट कर उसको रिलैक्स मोड पर ले आता है। ये टेक्निक हार्ट रेट और टेंशन को कम करने में मदद करता है जिससे माइंड को क्लैरिटी मिलती है। सिर्फ सेकेंड्स के का माइंडफुल पॉज भी ब्रेन का इमोशनल फ्रंट, जी हाँ, एमिग्डाला और लॉजिकल थिंकिंग वाले पार्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के बीच बैलेंस बनाने में हेल्प करता है। इसे हम इम्पल्सिव रिएक्शन देने के बजाय सोच समझ के रिस्पांस देना सीखते हैं और अपने गुस्से को ज्यादा इफेक्टिवली मैनेज कर पाते हैं। गुस्से को मैनेज करने का पहला स्टेप है ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना, जी हाँ, इंपॉर्टेंट। अपने गुस्से के

पीछे कोई ना कोई ट्रिगर तो होता ही है, या कोई स्ट्रेस होता है, आपने स्लीप नहीं लिया, प्रेशर में हो, फियर हो, डर हो किसी बात का, या आप हर्ट हुए हो। जब हम अपने ट्रिगर्स को समझने लगते हैं तो हम अपने इमोशंस पर ज़्यादा कंट्रोल डेवलप कर पाते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन टेक्निक्स नहीं है बंधु, बल्कि ये हमारे माइंड को ट्रेन करने के पावरफुल टूल्स हैं। माइंडफुलनेस हमें ये सिखाता है कि हम अपने थॉट्स और इमोशंस को तुरंत रिएक्ट किए ऑब्जर्व करें। जब गुस्सा आए तो उस फीलिंग को एक सिग्नल की तरह समझें, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जिसे समझने की ज़रूरत है, ये हम पूछें अपने आप से। ये अवेयरनेस हमें गुस्से के बहाव में बहने के बजाय सिचुएशन को शांति और समझदारी से हैंडल करने की एबिलिटी देता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी एंगर मैनेजमेंट का इफेक्टिव तरीका है। गुस्से के पल में हम खुद से कहें, जी हमें ये कहना भी होगा कि मुझे पहले काम होना है फिर बात करनी है। सिंपल, ब्रेन को इमोशनल रिएक्शन से लॉजिकल रिस्पांस की तरफ ले जाता है। और काउंटिंग टेक्निक, ये तो मेरी मम्मी बचपन से कराती है, जब गुस्सा आए तो 10 तक काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जो उस समय वो गुस्सा होता है ना, बस काउंट करना है, आपका शांत हो जाएगा, फिर एकदम से लॉजिकल माइंड काम करेगा, मुझको थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए, है ना, करके देखेगा। फिजिकल एक्टिविटी और हेल्दी कम्युनिकेशन जैसे मेथड्स भी स्ट्रेस हार्मोन्स को बैलेंस करने और इमोशंस को रिलीज करने में मदद करते हैं। गुस्से को दबा देना इसका सॉल्यूशन नहीं है बंधु, क्योंकि अंदर ही अंदर दबाए गए इमोशंस स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। जरूरी है कि हम अपनी फीलिंग्स को पहचानें, उनकी वजह समझें, उन्हें हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करें, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब गुस्सा कभी नहीं आना बल्कि गुस्से के पल को में खुद को संभालना होता है। जब अपने ब्रेन बॉडी इमोशंस के बीच बैलेंस बनाना सीख जाते हैं तो रिलेशनशिप भी बेहतर होते हैं और मेंटल वेलबींग भी इम्प्रूव होता है। तो जी एंगर मैनेजमेंट टेक्निक्स को अपनाइए, अपने गुस्से को सही दिशा दिखाइए और फिर जिंदगी के रिदम के साथ अपनी ताल मिलाइए। और फिलहाल हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए, आकाशवाणी रेनबो पर आप सुन रहे हैं ये प्रोग्राम। जी हाँ, तो चलिए अभी हम सुनते हैं गाना, वो गाना जो मुझे अब नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, स्क्रीन थोड़ा हो जाता है कभी कभी हमारे साथ, करता है, मस्ती करता है, स्क्रीन भी कहता है कि कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं होना, शांति से हैंडल करना है। तो बस शांति से हैंडल करते हैं और आते हैं आपसे बात करने के लिए।

0: में प्यार की सॉफ्टनेस और लॉन्गिंग दोनों ब्यूटीफुली ब्लेंड करते हैं, और इसका जो रियल मैजिक है वो है फोकस, जैस्मीन और सतेंद्र के अलग अलग टेक्सचर्स के साथ एक खूबसूरत इमोशनल कैनवस क्रिएट करते हैं ना। इन दोनों के वोकल ट्रांजिशन मैजिकल है, जहां एक गाना एक एहसास से दूसरे एहसास में स्मूथली ब्लेंड होता है।
1: न तेज बारिश से दिक्कत, न ट्रैफिक का झंझट, नमो भारत ट्रेन से आरामदायक और तेज यात्रा की पक्की गारंटी।
2: दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच लाखों यात्री उठा रहे हैं सुगम यात्रा का आनंद। सरायकाली खां से गाजियाबाद सिर्फ 20 मिनट में,
1: आनंद विहार से मोदी नगर सिर्फ 25 मिनट में, आनंद विहार से बेगमपुर

थोड़ा हंस के राम राम जी, फुर्सत नहीं यहाँ प्यार करने की, गुस्से के लिए समय कहाँ से लाएं। जैसे सुख को खुशी में जब प्रभु बदलते हैं तो हम समा नहीं सकते, ठीक उसी तरह जब गुस्सा करते हैं तो खुद से अपने दुखों को जन्म देते हैं। फैसला आपका है, आपको क्या चुनना है। प्रियंका जी, कुछ आपने छोड़ा ही नहीं जो गुस्से के लिए नहीं कहा, हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं क्योंकि कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं जिस पर आप नहीं बता सकते। हमें कुछ गजब का ज्ञान है आपके पास, इसलिए आपको और आपके परिवार की टीम को नमन है हमारा। रोहित खेरा लिखते हैं, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हमें यशपाल जी द्वारका दिल्ली से लिखते हैं, नाइस टॉक प्रियंका। आई थिंक एंकर फर्स्ट हर्ट्स यू देन समबडी एल्स, सो रियलाइज इट एट द टाइम ऑफ एंकर एंड कंट्रोल इट, इट वर्क्स विद मी। देखिए यशपाल जी ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है, सबसे पहले वो आपको खुद ही हर्ट करता है, ये तो है। और इसी के साथ पंकज अमरावती लिखते हैं कि गुस्सा है तो 1 से 10 तक गिनती करना बहुत अच्छा लगा। जी बिल्कुल, और ये मेरी मम्मी का बचपन का नुस्खा है सीरियसली। इसी के साथ गुस्सा करना, गुस्से को बाय बाय फिलहाल। ठीक है गाइस, अपने देश का मान बनाइए और अपने चेहरे पे भी मुस्कान लाइए। ठीक है गाइस, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि।
1: दोस्तों, प्रस्तुत है अब तक के FM रेड में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत की मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने IIT के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड NUC FDC के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। झारखंड सरकार ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख नेताओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ट इंडिया, कार्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना और उन्हें कानूनी मान्यता देने से जुड़े मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्रिक्स देशों के संस्कृति मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बिहार से पहली बार GI टैग वाला मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया निर्यात की गई। राष्ट्रराज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर की 50वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के इस संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में

आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। तो ये थे अब तक के एफएम रेन मुख्य समाचार। स्टेट फॉर सिटी लाइट्स।

नमस्कार, हेलो आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों आप सुन रहे हैं म्यूजिकल यूर्स आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा दोस्तों आप हमें अलग अलग जगहों पर मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं। अब वक्त हो गया आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम का, जिसका नाम है सिटी लाइट्स। और दोस्तों आज सिटी लाइट्स में आपके साथ आपका दोस्त रोस्ट है प्रवीण शर्मा। तो यूं ही बने रहेगा हमारे साथ, सुनते रहिए प्रोग्राम सिटी लाइट्स में, खूबसूरत गीत और भी ढेर बातें करेंगे मिलकर एक साथ।

0: दोस्तों आकाशवाणी एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटेलाइट स्काई में जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से अंतराल के बाद।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: आप सुन रहे हैं FM Rainbow 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस वक्त सिटी राइट्स के खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो, दिल से दिल तक। 215 अगस्त यानी स्वाधीनता दिवस का पर्व आने वाला है। हर देशवासी के मन में देशभक्ति की लहरें, उमंगें, हिलोरे ले रही हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगे का अभियान 9 से 17 अगस्त तक मनाया जा रहा है, जिसमें वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न भी शामिल है। तो आइए हम सब मिलकर अपने घरों पर तिरंगा लगाएं और शान से कहें कि हम भारतीय हैं, गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं। दोस्तों, सच ही कहा है किसी ने, दीन धर्म की बात जब आए धर्म मेरा इंसान ही लिखना, दीन धर्म की बात जब आए धर्म मेरा इंसान ही लिखना, जब भी मेरी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना।

दोस्तों मौसम की बात की जाए तो जहां तक मौसम का सवाल है तो आज आसमान में बादल छाए रहने और रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश या बौछारें पड़ने का अनुमान है, जैसे कि हो रहा है दोस्तों दिल्ली में। आज का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

0: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों बात कर रहे थे मौसम की, तो भाई कल के अगर मौसम की दोस्तों बात की जाए तो आज के मौसम जैसा ही कल का भी मौसम रहने का अनुमान है दोस्तों, जिसमें तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की और हल्की बारिश या रिमझिम फुहारें जारी रहने की संभावना है दोस्तों। कल अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

दोस्तों आखिरकार इतने इंतजार के बाद मानसून आ गया दोस्तों। वर्षा के फुहारे हमारे तन और मन को प्रफुल्लित कर रहे हैं दोस्तों। यकीनन इतने गर्मी के बाद इतनी गर्मी से हमें निजात जो मिल गई है ना। तो भाई ऐसे इस यानी कि ऐसे मौसम यानी कि बारिश के मौसम में हम कुछ सावधानी अपना कर अपने आप को स्वस्थ और तरोताजा रख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल तरोताजा बने रह सकते हैं। बस वो क्या है सावधानियां वो हमको बताएंगे, क्या है उपाय। बस आप यूं ही बने रहेगा हमारे साथ, सुनते रहेगा सिटी लाइट्स, कहीं में जाइए क्योंकि आप ले रहे हैं आनंद इन खूबसूरत से गीतों का।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
3: दोस्तों बारिश के मौसम की बात हो रही है, तो बारिश के मौसम में दोस्तों सेहत और घर को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा उबला और साफ पानी ही पीना चाहिए। बाहर का खुला खाना यानी स्ट्रीट फूड खाने से बचना चाहिए। घर से बाहर जाते समय हमेशा छाता और रेनकोट अपने साथ जरूर रखिएगा, और मच्छरों से बचने के लिए अपने घर के आसपास पानी जमा ना होने दीजिएगा। दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स, कहीं जाइए, हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

दोस्तों स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व आने वाला है। दोस्तों आप हम सचमुच हम नमन करते दोस्तों अपने देश के वीर सपूतों को जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आज़ादी की खुली हवा में सांस लेने लायक बनाया। दोस्तों हमें ये सौभाग्य प्रदान किया, हम उन्हें शत शत नमन करते हैं और सलाम करते हैं दोस्तों सीमा पर पहरा दे रहे अपने वीर जवानों को, वीर सपूतों को, जिनकी वजह से हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सच ही कहा है, निडर सिपाही मौत के बैरी दुनिया को दहलाएं, निडर सिपाही मौत के बैरी दुनिया को दहलाएं, आसमान पर बर्बादी की आंधी सा छा जाएं, पर्वत काटें, नदियां चीरें, पुष्प राह बिछाएं और नहीं खुद धूली बनकर रस्ते में बिछ जाएं।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

दोस्तों आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सिटी लाइट्स आकाशवाणी एफएम रेनबो पर। अब एक खास खबर दोस्तों आपके लिए, और खास तौर पर उनके लिए जो मेट्रो से सफर करते हैं, मेट्रो से यात्रा करते हैं। दोस्तों स्वतंत्रता दिवस को ध्यान में रखते हुए मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा जांच में आपको कुछ ज्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप अपने जब भी यात्रा करें यानी मेट्रो में अगर आप कहीं आ जा रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समय लेकर घर से निकलें। यह असुविधा पीक आवर्स में ज्यादा हो सकती है दोस्तों, तो इस बात का आप विशेष ख्याल रखिएगा और सुरक्षा कर्मियों के साथ जी हाँ उनका सहयोग कीजिएगा। बस यही आपसे अपेक्षा है दोस्तों। सुनते रहिए प्रोग्राम छोटी लाइट्स, हम हाजिर हो रहे हैं इस प्यारे से गीत के बाद।

दोस्तों आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं, आप अपने सुझाव और शिकायत हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों हमारा ईमेल आईडी है, नोट करें, हमारा ईमेल आईडी है feedbackfmrainbow@gmail.com। जी हाँ, feedbackfmrainbow@gmail.com। और सुनना न भूलें, हर महीने के तीसरे शुक्रवार को दोपहर 1 बजे प्रोग्राम बिंदास बोल। फिलहाल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटेलाइट आकाशवाणी FM रेनबो पर। सुनते रहिए सैटेलाइट्स, भी हम हाजिर हो रहे हैं छोटे से प्यारे से गीत के बाद।

दोस्तों, दिल्ली सरकार ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को मंजूरी दी है और ये बिल निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना और संचालन के लिए कानून ढांचा देता है। बिल के तहत विश्वविद्यालयों को यूजीसी और अन्य नियामक संस्थाओं के मानकों का पालन करना होगा और 25% सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए आरक्षित रखनी होगी। दोस्तों, इसके तहत सरकार अधिसूचना जारी कर निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की इजाजत देगी। सभी विश्वविद्यालयों को यूजीसी और अन्य वैधानिक नियामक संस्थाओं के मानकों का पालन करना होगा। साथ ही विश्वविद्यालय यूनिटरी मॉडल पर काम करेंगे, यानी किसी अन्य कॉलेज को एप्लीकेशन नहीं देंगे। हालांकि जरूरत के मुताबिक नए कैंपस, क्षेत्रीय केंद्र और अध्ययन केंद्र खोले जा सकेंगे। दोस्तों,

दोस्तों म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों जैसे कि पता है आपको, बारिश जो है वो बिल्कुल अपने शवाब पर है, यानी कि मूसलाधार बारिश हो रही है और धीरे धीरे हमें सुकून भी दे रही है दोस्तों, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद हमें कम से कम निजात मिली और हमें कुछ तो राहत का एहसास हुआ। तो हम आपको कुछ देर पहले बता रहे थे कि बारिश के मौसम में आप अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों बारिश के मौसम में सेहत का बचाव रखने के कुछ उपाय हम आपको बता रहे थे। तो जैसे कि हमने पहले कहा कि हमेशा उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी पीना चाहिए, बाहर से कटे हुए फल या फिर कोई स्ट्रीट फूड हम ना खाएं, बारिश में भीगने के बाद तुरंत कपड़े ज़रूर बदल लें और हाथों को समय समय पर साबुन से धोते रहें, साफ करते रहें। और हाँ, फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए पैरों को सूखा रखें। बस इसी तरह के कुछ उपाय अपनाकर आप बारिश के मौसम में अपने आप को स्वस्थ और खुश रख सकते हैं।

कुछ पंक्ति आपकी नजर। सब देशों से सुंदर सुख कर मेरा प्यारा भारत देश, सब देशों से सुंदर सुख कर मेरा प्यारा भारत देश, विश्व गगन में चमके बन प्रभात का प्रखर दिनेश, सदा समुन्नति होवे इसकी हो जाए कष्टों का शेष, भागे दुश्मन पैर शीश थर आवे जब हम असली वेश, इसके गौरव की रक्षा को हित हो जाऊं मैं बलिदान, आन बान पर मिट जाऊं बस दिल में आज यही अरमान।

0: रानी सिंगर।
1: और दोस्तों अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, तो फिलहाल प्रवीण शर्मा को दीजिए सैटेलाइट से इजाजत, और लेकिन कहीं मत जाइए, आप कीजिए विकास राय का स्वागत, क्योंकि वो लेकर आ रहे हैं आपका फेवरेट प्रोग्राम जिसका नाम है मैसेज मसाला मिक्स। बस आने वाले स्वतंत्रता दिवस की आपको एक बार फिर से ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां।

आइए सुनते हैं इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और ड्रोन जैसे उभरते क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता विकसित भारत को मजबूत नींव रखेगी। उन्होंने आईआईटी के विद्यार्थियों से अपने निर्णयों में राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आईआईटी दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को संस्थान का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दो दिन के दौरे पर श्री विजयपुरम पहुंचे। उपराष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज मुंबई में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों

और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स डार्विन डायनेमिक्स वर्ल्ड इंडिया कोर्स 24 और काउंसिल फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्रिक्स देशों की संस्कृति मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाला मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया निर्यात की गई। राष्ट्र आज नोबेल पुरस्कार विजेता और राष्ट्रगान के रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर की 85वीं पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशभक्ति के इस संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

वाणी आकाशवाणी। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम शुरू हो गया है आपका और हमारा अपना फेवरेट शो जिसे कहते हैं हम MMM, यानी मैसेज मसाला मिक्स। और वादे के अनुसार लेकर प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स आ गया है अपना विक्स, आपका अपना खास, आपका अपना विकास। और जी बिल्कुल, वो तो चलेगा ही, क्या आपके संदेश हम तक पहुंचेंगे और आप पहुंचाएंगे। कैसे पहुंचाएंगे? जैसे हमेशा पहुंचाते हैं, नंबर है हमारा 9868107070। दिल की बात मैं पूछ ही लेता हूं अभी। तो आज की दिल की बात मेरी ये है, एक ऐसे इंसान को याद करना है आपको जो आपके जिंदगी का हिस्सा बना, अब चाहे वो दो दिन के लिए बना, चाहे चार दिन के लिए बना, एक घंटे के लिए बना, एक साल के लिए बना, मतलब कि कोई ऐसा एक इंसान, उसे याद कीजिए जो आज आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है और जिसे आपने जब मुलाकात हुई, मिले, समझा कुछ और वो निकला कुछ। तो ऐसा इंसान जी, और उस इंसान के ना होने से आपकी जिंदगी में आप ज्यादा खुश हैं। कंप्लीट हो गया जी दिल की बात। तो अब शुरू हो जाइए और अपने जज्बात दिल के मुझ तक पहुंचाइए। 9868107070 नंबर है हमारा। ऑलरेडी मेरे कहते ही, कहने से पहले ही प्रोग्राम में आने शुरू हो गए हैं आपके जो मैसेजेस, बिल्कुल बारिशों की तरह, हमेशा की तरह। तो फिर आगाज करते हैं आज के इस प्रोग्राम का। आप सुन रहे हैं मैसेज मसाला मिक्स।

जी बिल्कुल, जोर की बरसात हो रही है और मौसम भी सुहाना बना हुआ है और हमारी मुलाकात तो हो ही गई है। आज तो शुरू करते हैं, आज का प्रोग्राम मैसेज आया है बताऊंगा, लेकिन मैसेज पहले पढ़ते हैं। वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। सावन की शाम है, बारिश भी बेहिसाब है, फिर भी मेरे दिल में कोई रौनक नहीं है। जिसके साथ भीगने की तमन्ना थी कभी, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। बरसती है बूंदे तो यादें भी बरसती हैं, हर बूंद में उसकी ही आहट सी लगती है। जिस राह पर साथ चलने के ख्वाब थे कभी, आज उस राह पर मेरा कोई अपना नहीं है। बादल तो वही है, वही सावन की घटाएं, मगर उसके बिना फीकी हैं सारी फिजाएं। कभी जिसके नाम से महकता था मेरा जहां, आज उस नाम को लेने का भी हौसला नहीं है। बारिश की हर बूंद पूछती है मुझसे, कहाँ गया वो जो इतना अपना था तुझसे। मैं चुप हूँ, मेरी आंखें ही जवाब देती है, वो अब मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद सरफराज आलम, जोकिहट दर्शना बाजार, जिला अररिया, बिहार से। बहुत खूबसूरत लाइन हमेशा की तरह, लेकिन ये कहूंगा सरकार की थोड़ा सा संक्षिप्त कर देंगे तो हमें भी मजा आ जाएगा। हम आप समझते हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, मैं समझता हूं जी। पाजी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, तुसी कैवें हो सरकार जी? असीं वधिया है जी, और उम्मीद करते हैं आप भी बहुत वधिया ही होंगे। प्रदीप सलूजा जी, जनकपुरी न्यू दिल्ली से। आदाब जी, आदाब सरकार। मैसेज है हमारा, ये कहाँ से आया? ओके जी, फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया तायरा। आज मेरी बेटी फरहीन का जन्मदिन है जी, एक गीत तो बनता है तो जी। शुक्रिया जी, कस्बा गुन्नौर यूपी से। हाँ बिल्कुल बनता है, और गीत तो बहुत सारे बने हुए हैं, मतलब प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। और सबसे पहले आकाशवाणी रेनबो की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से, आपकी बेटी को इस खास दिन की, और आपके पूरे परिवार को भी बहुत बहुत दिली शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। जश्न मनाइए अच्छे से, हम भी यहीं से आपके जश्न में शरीक हो जाएंगे सरकार। नमस्ते जी, शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। हम अभी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेमचंद प्रेमी जी धामपुर बिजनौर से, और आगे लिखते हैं, टूटे नफरत की दीवारें होकर बेबस और लाचार, इतना जग में बांटो प्यार, ठंडी ठंडी सुख की घटाएं सबके आंगन में घिर आए, दुख पीड़ा का एक भी आंसू बैठे ना पलकों के द्वार। कलरव हो पर क्रंदन ना हो, पशु पक्षी का शोषण ना हो, जीवन रूपी सुपवन में सबका अपना हो आधार, इतना जग में बांटो प्यार। क्या बात है, और आगे भी लिखा है कि जो बुझ गए थे राह में चिराग, जल दिए अंधेरे बचा के दामन चुपचाप चल दिए। मैंने तपिश से दूर मांगा था एक पल, और तुमने तो मेरे दोस्त मौसम बदल दिए, मौसम बदल दिए। प्रेमचंद प्रेमी धामपुर जी, क्या बात कही है आपने, निराला अंदाज हमेशा की तरह आपका। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सरकार। बलवंत सिंह चौहान।

इच फलसारी मार्केट गाजा टीरी गढ़वाल उत्तराखंड से हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है सर। जी जी जी, दिल से निकलता है ना। मेरा मैसेज तो पढ़ लो सर। पढ़ दिया सरकार, पढ़ दिया। मेरा ख्याल से आपने सुन भी लिया होगा। पंकज अमरावती महाराष्ट्र से, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरकार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। मेरी एक इंसान से कुछ साल पहले दोस्ती हुई थी और वो मुझे बहुत अच्छे और सच्चे लग रहे थे। कुछ दिन बाद उनसे मिलने को बुलाया था और मैं वहाँ गया था, तब वहाँ नहीं था और उसने मुझसे झूठ बोल के वहाँ बुलाया था। ये बात मैं समझ गया, सामने वाला इंसान झूठा है और मैंने उससे नाता तोड़ दिया। उसका मेरी जिंदगी से ना होने में आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है, यही यही यही मैं बोल रहा था कि इस तरह के इंसान से दूर हो जाना कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ है ना। तो ऐसे इंसान को याद करते हैं और याद करने से क्या होता है ना, ऐसे पुराने इंसिडेंट्स जो होते हैं वैसे कोई याद नहीं करना चाहता, लेकिन हम अलर्ट मोड पे, यानी हमेशा इस चीज़ को अगर कभी कभी याद कर लेंगे तो ये मानिए कि आगे इस तरह के धोखे खाने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे जी। रामकिशोर विद वाइफ मान्या बेलवंशी फ्रॉम सतना मध्य प्रदेश से, वी आर न्यूली मैरिड कपल्स और हम आपके शो को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस शो में और इस दोस्ती को आगे भी बनाए रखिएगा। और आपके लिए मेरी शुभकामनाएं आकाशवाणी रेनबो के पूरे परिवार की तरफ से, आने वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, दिल्ली शहर मुरुगेट होना चाहिए मेरे ख्याल से, लेकिन चलिए आपने लिखा है तो पढ़ देते हैं। सरकार, कन्हैया कुमार लिखते हैं, आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, गीत एक से एक सुने काफी अच्छा लग रहा है। हमें भी बर्थडे विश करना है जो उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर में चंदा कुमारी और उनके बर्थडे पर पूरे एफएम की टीम की तरफ से हैप्पी बर्थडे और सारे लिसनर्स की तरफ से हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, धन्यवाद। जी बिल्कुल, सारी बात आपने कह दी दिल की और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत मुबारकबाद दिल से दिल तक। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, आगे इसके बाद कुछ नहीं लिखा जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों से जो सुन रहे हैं प्रोग्राम आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से मैसेज मसाला मिक्स, कि अपना नाम और जिस जगह से आप लिख रहे हैं उस जगह का नाम अगर लिखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। आ जाएगा ना? मजा बिल्कुल आएगा।

0: इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दादी दादी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त।
2: पता का चाय, गजब का स्वाद।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।

0: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत। आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
1: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरे छी नजर में है जादू।
3: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
2: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
3: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
4: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
5: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
4: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
5: अल्फा जेन
4: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

वेलकम बैक जी प्रोग्राम मैसेज मसाला मिक्स। मैं हूं आपके साथ आपका अपना विक्स, आपका अपना खास, आपका अपना विकास। वीरू बख्शी जी मेरठ से जुड़ी हमारे साथ और अपने दिल की बात लिखी है। क्या लिखा है? मैं मेरठ से वीरू बख्शी और आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। रिश्ता और नाता बहन बेटी बच्चों से भी होता है। मेरा एक बेटा बहुत ही अच्छा, वो मुझे समझने वाला, दुनिया से ही चला गया। ओह सॉरी सॉरी, पर मेरे को यादें छोड़कर चले गए मेरे पास। बहुत ही अच्छा बच्चा, उसको मैं रोज़ याद करती हूँ। बहुत क्या कह सकता हूँ, अंदर से बहुत लगा मुझे ये बात कि इतना आप बीती आपके साथ हुई है। और बस यही करूँगा, यही कहूँगा, कहना चाहूँगा कि दुख सुख तो हर इंसान का हिस्सा है ज़िंदगी का, ये तय है। तो परमात्मा से, ऊपर वाले से यही दुआ करनी चाहिए, जो मेरा मानना है कि सहने की शक्ति और आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, हमेशा हमें उससे मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा इसी तरह अपनी दोस्ती से हमारे इस परिवार को गुलजार रखिएगा, जुड़े रहिएगा। और कहते भी हैं कि दर्द बांटने से कम हो जाता है। शुक्ला बाला फ्रॉम फलाकाटा वेस्ट बंगाल से, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरकार, इसके बाद आपने कुछ भी नहीं लिखा, तो और भी कुछ लिखिए ना टॉपिक से रिलेटेड। वेलकम जी, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। प्यारे पिक में आप सभी को दीपा बिजनौर, प्यारी पिक में आप सभी को दीपा बिजनौर, मतलब दीपा बिजनौर से हैं, लेकिन उसके बाद की जो, उसके बाद का जो मैसेज है वो क्लियर नहीं हुआ है दोस्त। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरकार। मोहम्मद इम्तियाज जवाहर कैम्प कीर्ति नगर न्यू दिल्ली से इंडिया। ये सावन और उसका ना होना मेरी जिंदगी का सबसे पॉजिटिव थिंकिंग है। पहली मुलाकात पिछले साल हुई थी, मैं आज उसके ना होने से बहुत खुश हूँ, खुश हुई, क्योंकि गलत इंसान गलत ही होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरह पीतल पे गोल्ड का पानी यूज, गोल्ड नहीं बनता, उसी तरह जिनका नेचर ही खराब हो वो सही नहीं होता। यानी कहने का मतलब है कि जिसका बेसिक ही सही नहीं हो तो ऊपर से, मतलब मुंह के मीठे भी हो सकते हैं लेकिन दिल के अच्छे ना हो। और भी कई सारे शब्द हैं जिनमें हम पिरोकर अपनी अपनी भावनाएं कह सकते हैं। तो मैं आपकी बात समझ गया हूं और आप खुश हैं कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में एक साल पहले आया था, आज वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है। बहुत अच्छी बात है। प्यारी सी गुड इवनिंग रहते हैं आप सोनू बिजनौर से। आपको भी बहुत बहुत प्यारी सी गुड इवनिंग सरकार सोनू। और आज के टॉपिक से रिलेटेड, आज के दिल की बात से रिलेटेड कुछ कहेंगे तो और भी मजा आ जाएगा सरकार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी मैसेज मसाला मिक्स। हम बड़े शिद्दत से यह कार्यक्रम सुन रहे हैं, गीत और संगीत बेहद पसंद आ रहा है। हमारी भी अटेंडेंस लगा लीजिए। अटेंडेंस लगा ली सरकार, हम भी शामिल हो गए हैं। नाइस प्रेजेंटेशन, शुक्रिया जी। किशन वंजानी, नीलम, स्वाति और केशु रेलवे कॉलोनी आनंद विहार से। कभी रोकर

मुस्कुराए हम, कभी मुस्कुरा कर रोए हम, जब भी उसकी याद आई उसे भुला कर रोए हम। एक उसी का तो नाम था जिसे हजार बार लिखा था, जितना लिखकर खुश हुए उससे ज्यादा मीठा कर रोए हम। विकास सिलीगुड़ी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से। मेरे हम जुबा दोस्त यही कहना चाहूंगा, दिल की बात है, जुबा पे आई है और अपने अंदाज में आपने लिखा है, बहुत ही प्यारा अंदाज है आपका। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हम तो अच्छे हैं, बहुत बढ़िया। मेरे पूछने से पहले ये भी एक अंदाज है, बहुत निराला। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह जी, सभी दोस्तों का स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है मैसेज मसाला मिक्स, और भी कई मैसेजेस हैं उन्हें भी शामिल करते हैं, नहीं तो नाराजगी हो जानी शुरू हो जाती है। आपके रेनबो के प्रोग्राम बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, झूम भी रहा हूँ। कुमार गौरव इंदुरकर, नेशनल पार्क, तालुका चिमूर, डिस्ट्रिक्ट चंद्रपुर से। ऐसे ही झूमिएगा सरकार, और भी बेहतरीन ट्रैक्स हैं आपके लिए। सॉरी पाजी, मेरी लाइफ में कितने भी लोग आए हैं, एक टू को हटा के, यानी एक दो को हटा के सभी लोग सही मिले हैं। अब मेरे जैसे, बस ये तो आपका बड़प्पन है, मैं तो कहूंगा इससे भी, हमसे भी बेहतर लोग आए होंगे, डेफिनेटली आए होंगे, और जो नहीं आए उनके साथ चलिए, आपने अपने दिल की बात नहीं बताई है प्रदीप सलूजा जी, कोई बात नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं और ये अच्छी बात है, कम लोगों से सामना हुआ आपका, ये बहुत अच्छी बात है। सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से आदरणीय विकास जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम सरकार, कार्यक्रम सुन रहे हैं। जिंदगी में तकलीफ देने वाले को हमेशा के लिए भुला देना चाहिए, तकलीफ में साथ देने वाले को कभी नहीं भूलना चाहिए। आपकी संध्या और जीवन बहुत शुभ हो, सुखद हो, कोटि कोटि धन्यवाद आपको सरकार, हमसे जुड़ने के लिए और अपने दिल की बात कहने के लिए। और आपने जो लिखा है कि जिंदगी में तकलीफ देने वाले इंसान को हमेशा के लिए भुला देना चाहिए, बिल्कुल सही कहा है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने दिल की बात कहूं तो वो कभी कभी याद भी करना चाहिए, ताकि जो आगे वाला वक्त है वो आपको हमेशा सचेत रखेगा, सिर्फ सचेत रहने के लिए। हेलो हेलो सरकार, आई एम भुवनेश। भुवनेश, हाउ आर यू माय फ्रेंड। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। अशोक विहार, दिल्ली से। ऑन टुडेज टॉपिक आई वुड लाइक टू से दैट आई डू नॉट हैव एनी इंसिडेंट इन माई लाइफ, दैट्स गुड। Related to today's topic, whoever I have met in my life have been nice to me and I would love to hear always कि आपके साथ जो भी जुड़ा या जुड़ेंगे हमेशा अच्छे ही लोग जुड़ेंगे, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ दोस्त। मेरी जिंदगी में दो लोग ऐसे थे जो हमेशा नफरत से भरी बातें किया करते थे, इससे मेरे दिमाग में हलचल पैदा हो जाती थी। आज मैं जब उन लोगों से दूर हूं तो मेरा मन शांत लगता है। रंजीत कुमार मंडल, सिकटी, अररिया, बिहार से। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। नेगेटिव एनर्जी से जितनी हम दूर रहते हैं तो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही छाया जाता है, तो ऐसा ही महसूस आपको हो रहा है, होना भी चाहिए। आओ चले समुद्र किनारे, डूबते सूरज को देखेंगे, आइसक्रीम और स्नैक्स पार्टी को, पार्टी तारों को पानी में देखेंगे, कितने खूबसूरत होंगे लम्हे, प्यार में गाएंगे इलू इलू। अरे क्या बात है, आंखों ही आंखों में इश्क का वहां पर मौज करेंगे। अनिल शर्मा जी, सरिता विहार से। क्या बात है सरकार, आज तो आपका मूड ही बहुत अलग ही लग रहा है, और अच्छा है आप सभी दोस्त जब भी इस तरह के मैसेज भेजते हैं, यानी खूबसूरत दिल की बात और दिली खुशी का इजहार करते हैं, तो वो पल हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। हम भी यही चाहते हैं, आप तमाम लोग जो हमारे दोस्त हैं आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से जुड़े हुए, सभी सदैव खुश रहें। इसी तरीके से राजकुमार जी, राजकुमार के संतानी, अकोला महाराष्ट्र से लिखते हैं, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरकार, और उसके बाद कुछ नहीं लिखा। खैर कोई बात नहीं, जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड आप लिखिए सरकार, तो और भी मजा आ जाएगा दिल की बात। और टॉपिक क्या है एक बार फिर से बता देता हूं, कि ऐसा कोई इंसान जो कभी आपकी जिंदगी से जुड़ा हो, कितने पल आपके साथ रहा वो मैटर नहीं करता, लेकिन आज वो अगर आपकी जिंदगी में नहीं है तो आप ज्यादा खुश हैं उस बात से। ऐसी कोई दिल की बात हो तो बताइए ना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा

0: का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप मैसेज मसाला मिक्स। ये लीजिए सरकार संक्षिप्त शेर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लिखा है मोहम्मद सरफाज आलम, जो कि यार दशना बाजार जिला अररिया बिहार से, जिसे अपना समझकर सारी उम्र मोहब्बत की, वो बिना बताए मेरी जिंदगी से यूं ही चली गई। मैं उसकी राह तकता ही रह गया उम्र भर, और वो बेवफा किसी और की होकर चली गई। अच्छा, ये तो बात आपने, मैं बताऊं, आपकी बहुत गहरे दिल की बात है जी। कई बार मैं देखता हूं ये लाइन जो है ना कहीं से निकल के आ ही जाती है आपकी जिंदगी से। लेकिन हाँ, ये अच्छा लगा कि देखिए, हमने आपसे दरख्वास्त की, आपसे प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि थोड़ा संक्षिप्त लिखेंगे मैसेज, तो और भी अच्छा लगेगा। और देखिए, आपने बात मान ली, ये होती है सच्ची दोस्ती सरकार। मैसेज मसाला मिक्स, नमस्कार जी, कार्यक्रम सुन रहे हैं। वैसे तो हमारी जिंदगी में सभी अच्छे लोग ही जुड़े हैं, हाँ, उनमें से कोई पीठ पीछे बुराई करे तो ये हम बता नहीं सकते। भेरूलाल वाकतरिया धाकड़, उन्हेल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से, उनके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए जी। जिंदगी में बहुत लोग मिले, कुछ अच्छे कुछ खराब मिले, जो माफिक नहीं उनसे वास्ता नहीं रखता, क्या कहें। युवा पड़ोसी लोग मिलना ही नहीं चाहते, अनिल शर्मा सहिता बिहार से, तो इसकी कोशिशें आपको करनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए क्या वजह हो सकती है, अगर आप चाहते हैं मिलना तो सामने से मेरे ख्याल से आना चाहिए भी रिस्पॉन्स बिल्कुल भी। गुड इवनिंग जी। रजनी शर्मा बागपत से, हमारे पापा को आज हमारे पास नहीं है, एक एक पल उनकी याद आती है, उनकी यादें उनकी बातें उनका पल एहसास होना लगता है, नहीं कि वो हमको छोड़ के चले गए हैं, लगता है आज भी ऑफिस से घर आएंगे। ये बहुत जो दिल की गहरी बात है, समझी जा सकती है आपकी। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूं जी। आज मेरी बेस्ट फ्रेंड तनु का हैप्पी वाला बर्थडे है। जिंदगी में बहुत से लोग मिले, अच्छे भी बुरे भी, अच्छे लोग याद है, बुरे मैटर नहीं करते। नूरबी खान लखीमपुर खेरी यूपी से, और सबसे पहले आपकी जो दोस्त हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज की, और उम्मीद करेंगे आप उनके साथ एंजॉय कर रहे होंगे उनके इस खास दिन को। गुड इवनिंग अंजलि मंजीत आर्यन भुम्मा। अगर कोई इंसान हमें छोड़कर चला जाए तो हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि वो हमें छोड़कर खुश है तो हमें भी खुश रहना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है। हेलो जी, मैं भी सुन रहा हूँ मैसेज मसाला मिस, तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ से मनीष। और इसके बाद आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड भी कुछ लिखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा जी। सर नमस्कार जी, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। हाँ जी, यही बात मैंने कही थी, देखिए है ना, सही कही थी ना। और लिखता है कि अच्छा लग रहा है प्रोग्राम, लाजवाब गीत, शुक्रिया जी, अच्छे अच्छे प्रोग्राम सुनाने को मिल रहे हैं, इसके लिए थैंक यू और धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। और मैसेज आया है, नमस्कार जी, मीरापुर गांव भुम्मा से आर्यन मंजीत अंजलि। हमारे पर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो, यानी हमारे साथ कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, ना कि गम में डूबे। यानी किसी के भी साथ ऐसी सिचुएशन हो जैसा कि मैंने कहा, तो खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, कोशिश भी नहीं, खुश ही रहना चाहिए। आदाब सरकार, अब हम आपको सुन पा रहे हैं, नेट प्रॉब्लम की वजह थी। कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान जी, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, तायरा, समझा जा सकता है जी इस बात को, कोई बात नहीं, ये चलता रहता है और हम बिल्कुल नाराज नहीं हो रहे हैं, यकीन मानिए। मोनिश इद्रिसी रामपुर बिलासपुर से जुड़े हैं। हेलो जी, हेलो सरकार, जुड़े रहिएगा।

जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, आई एम लिसनिंग टू अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस. बिल्कुल, और उम्मीद करूंगा कि उसे लर्न भी कर रहे होंगे बहुत कुछ. जी, सीखना बहुत जरूरी है, तभी सुनने का मजा आता है ना जोया. उम्मीद करूंगा आप ये प्रोग्राम भी सुने और आकाशवाणी रेनबो से इसी तरह की दोस्ती निभाते रहे हमेशा की तरह. आज के शानदार टॉपिक पर मैं तो अपनी बात में एक मुक्तक के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अपना हर फर्ज ऐसे निभाना दिल, मेरा हाले तबाही ना हो उसको बताना दिल, और फरेबे आतिश में जिसने यार मेरा गुलशन जला दिया, तू आंचल में 100 सितारे उसके सजाना दिल, उसके सजाना दिल. प्रेमचंद प्रेमी जी जेत्रा धामपुर से, क्या बात है दिल. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग सर, मुझे नमस्कार. रेनबो के सारे प्रोग्राम अच्छे लगते हैं. और मैं 2016 एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था, वहाँ पर मुझे एक मैम मिली थी. उसके बाद से मैं उससे भी मिल पाया, मोहम्मद रगीब रेजा, आज़ाद नगर अरिया बिहार से. और कहानी कुछ अधूरी सी लगी, कुछ पूरी सी नहीं लगी, कुछ और बात क्लियर नहीं हुई इससे कि आपकी मुलाकात हुई लेकिन वो एक्सपीरियंस क्या रहा, अनुभव क्या रहा, वो थोड़ा सा रह गया मेरे ख्याल से. कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए अगली बार. लावी पायल आंचल रामराज, अगर हमारी मम्मी थोड़ी दूर भी चली जाती है तो हमारा मन नहीं लगता. आप समझा देना मेरी मम्मी को, मुझे लेकर जाए जहाँ भी जाए. अब मम्मी को कौन समझाए, मम्मी मम्मी होती है, माँ माँ होती है, वो हमारा अच्छा बुरा हमसे ज़्यादा बेहतर समझती हैं. और आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यही कहना चाहूँगा कि बहुत सोच समझ कर ये फैसला लेते होंगे, तो शायद मुझे लगता है उनके फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए. जी, और एक मैसेज है लेकिन स्टिकर भेजा है, उसके अलावा नहीं भेजा है. अगली बार मैं आज

आपको मिलूंगा ना 8 बजे मिलूंगा सरकार जी, म्यूजिक मस्ती का प्रोग्राम होगा। और नेक्स्ट डेट की बात कर रहे हैं तो वो मुलाकात होगी, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, 29 तारीख को, बिल्कुल मैसेज मसाला मिक्स के माध्यम से ही।

गुड्डू धाकड़ मध्य प्रदेश उज्जैन जिले के बेड़ावन गांव से एक दोस्त था। उसका नाम लेना नहीं चाहता, उसको छोड़कर खुश हूं और मैं तो इसी में विश्वास करता हूं। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। बिल्कुल कुल मिलाकर जो बीत गई सो बात कही, आगे की तरफ ध्यान दें। शुभ संध्या जी, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ सरकार। दिव्या मौर्य, कस्बा जायस गांव, नगदैयापुर, जिला अमेठी, यूपी से। प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद सरकार हमारे प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।

और वक्त धीरे धीरे उस मोड़ पर जा रहा है जहां से इस प्रोग्राम से मुझे विदा लेना है, लेकिन अभी कुछ मैसेजेस हैं उन्हें भी ले लेते हैं। हेलो जी, 2018 में इंडिया से आंधी की तरह आई और तूफान की तरह चली गई, सब उथल पुथल करके। होती तो सोने पे सुहागा होता। जर्मनी से सन्नी कपूर जी, क्योंकि मैंने इस तरह इस अंदाज में कहा क्योंकि हमारे एक खास दोस्त हैं, सभी हमारे खास हैं, कहने का मतलब है कि जो उनका अंदाज है वो बड़ा खास है, तो वो उनकी डिमांड थी और मैं कोशिश की जी। जी उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। हाँ तो सनी जी, ये नहीं समझ में आया कि आंधी की तरह आए और तूफान की तरह चले गए, क्या हुआ ऐसा? कुछ बात आपने आधी अधूरी सी लिखी है दोस्त, लेकिन अगली बार जब मुलाकात हो थोड़ा सा दिल की बात अगर लिखेंगे तो यकीन मानिए वो दर्द जो है, अगर कुछ ऐसा है, वो कम हो जाए।

और दोस्तों वक्त तकरीबन हो गया कि मुझे इस प्रोग्राम से विदा लेना है। और दोस्ती में गलतफहमियां दूर करो और प्रेम बढ़ाओ, लिखा है प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से। बिल्कुल सही कहा है, ऐसा भी होता है, हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। गलतफहमी मत बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ, दोस्ती में गलतफहमियां दूर करो। बिल्कुल सही लिखा है आपने जी, इसी बात को मानना चाहिए। और 8 बजे मुलाकात करते हैं म्यूजिक मस्ती के प्रोग्राम में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।

0: अरे अंजलि, अब क्या तू मेरठ से नहीं आ रही रोज? तेरे चेहरे पर कोई थकान परेशानी नहीं दिखती।
1: प्रिया, ये सब नमो भारत ट्रेन का कमाल है। 40 मिनट में बेगमपुल से सीधा आनंद विहार, वहाँ से कनेक्टेड मेट्रो लेकर सीधा ऑफिस, समय ही नहीं लगता।
0: वाह, नमो भारत ने तेरी लाइफ कितनी आसान बना दी।
2: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत के सराय काले खां, न्यू अशोक नगर, आनंद विहार और गाजियाबाद स्टेशन मेट्रो के साथ सुगमता से कनेक्टेड है।
3: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

और अब पेश है इस घंटे के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की। राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दो दिन के दौरे पर श्री विजयपुरम पहुंचे। उपराष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। केंद्र सरकार ने उद्योग जगत के प्रमुख कारोबारियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने वाली कैश फ्री पेमेंट्स, डार्विन डायनेमिक्स, वर्ल्ड इंडिया, कॉर्स 24 और काउंसलिंग फॉर स्टार्टअप के साथ कई रणनीतिक समझौता ज्ञापनों की घोषणा की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बिहार से पहली बार जीआई टैग वाले मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन खेप ऑस्ट्रेलिया निर्यात की गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर देशभक्ति के इस संगीतमय कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली नगर निगम में 187 नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि हम अपनी कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में आशीष यादव ने विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ये थे अब तक के मुख्य समाचार।

आकाशवाणी। वेलकम बैक जी, वादे के अनुसार लेकर प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती हाजिर हूं मैं कौन, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती। जी बिल्कुल, पूरे घंटे सफर करेंगे हम इस सफर में, यानी कि इस सफर को एंजॉय करेंगे। और जो प्लेलिस्ट मैं आपके लिए लाया हूँ हमेशा लाता हूँ और आप इंजॉय करते हैं, तो आज भी करना है। और जो बात मैं हमेशा कहता हूँ वो फिर से कहता हूँ कि जो लोग, जो मेरे दोस्त इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो अपना ख्याल तो रखना ही है सरकार, लेकिन दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखना है। तो देखिएगा, प्रोग्राम सुनने का मज़ा दुगना हो जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस गीत से, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, और मैं हूँ आपके साथ, आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स।

और हम मिलते हैं आकाशवाणी रेनबो के माध्यम से। प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती एंजॉय कर रहे हैं आप, बिल्कुल एंजॉय कर रहे हैं, और भी अच्छे अच्छे ट्रैक्स आएंगे जिस पे एंजॉय करना है आपको। और जहां भी है, जैसे भी हैं, अपना ध्यान रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा, और फिर देखिएगा एंजॉयमेंट का जो मजा है ना, एंजॉय करने का मजा ही दुगना हो जाएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरकार। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं लिखा आपने, नाम नहीं लिखा, किस जगह से आप ले वो भी नहीं लिखा, तो वो लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा ना हमें सरकार। पाजी आपने आते ही सिक्सर्स मार दिया है। अच्छा जी, प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी न्यू दिल्ली से, तो ऐसे और भी सिक्सर्स लगेंगे, यानी कि और भी अच्छे अच्छे ट्रैक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, आएंगे, एंजॉय कीजिए। अंश शर्मा हस्तिनापुर से जुड़ी है हमारे साथ, एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल एंजॉय कीजिए जी। और तमाम दोस्त हमारे भी जुड़े हैं। हेलो, क्या आप नहीं जी, आपने जो लिखा है मैं वो नहीं हूँ, मैं हूँ आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का। और नेक्स्ट ट्रैक आपके लिए

हाँ जी, मजा आया ना, और भी मजा आएगा। पंकज अमरावती महाराज से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सरकार। और जो आप गीत के बारे में थे, बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रस्तुति और गीत बहुत पसंद आ रहे हैं, और भी गाने आएंगे, वो भी पसंद आएंगे सरकार, जैसा कि मैंने कहा बिल्कुल आएंगे, बने रहिएगा। फुल वॉल्यूम एंजॉय डांस नंबर सॉन्ग नॉन स्टॉप जी, प्रदीप सलूजा जी जनकपुरी से, बिल्कुल नॉन स्टॉप सरकार। आदाब जी, आदाब सरकार, सॉन्ग पसंद आ रहे हैं, बच्चे डांस करने में मस्त हैं, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान जी, बिल्कुल होने भी चाहिए, और आज तो बहुत खास दिन है आपने जैसा कि बताया था, तो उसको तो एंजॉय करना चाहिए भी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरकार, गाने मस्त हैं, सुरेश वैष्णव राजस्थान से, एंजॉय करे, बिल्कुल करे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सरकार, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, आपकी प्रोग्राम सुन के ताजगी आ जाती है, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि ऐसा आपको प्रतीत होता है, फील होता है, महसूस होता है, तो मेहनत जो है हमारी वो सार्थक हो जाती है। एक बार शाहरुख खान की आवाज में कुछ भी बोल दीजिए। विकास फ्रॉम दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से, अरे शाहरुख खान की आवाज में बोल रही क्यों, मैं तो उनका गाना भी सुनाऊंगा तुम्हें।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
3: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स,

0: स्टेशन को सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
2: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक मस्ती का और आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, आपके संदेश बता रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं जी, एंजॉय करें। गुड इवनिंग सरकार, विपिन नेहरा काशीपुर उत्तराखंड से। तो आपने इसके बाद कुछ लिखा नहीं कि कैसा फील कर रहे हैं, प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे होंगे ऐसा हम समझते हैं जी, बिल्कुल। स्माइले बना के भेजा है, हाँ मैं समझ गया जी। गुड इवनिंग सरकार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, वेरी नाइस पार्टी सॉन्ग्स, बहुत टाइम बाद सुना आपको। जी बहुत टाइम हो गया। अफसा खानम जी फ्रॉम धामपुर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और उम्मीद करूँगा आप भी प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं, वैसे तो लिखा है आपने, और भी इंजॉय करेंगे और भी अच्छे ट्रैक आ रहे हैं। जोया मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से, गीत की एक फरमाइश की है सरकार, मेरे प्लेलिस्ट में ये गाना तो नहीं है लेकिन जो भी गाने हैं वो आपको यकीनन पसंद आएंगे। दुकान से अभी घर आया हूं और आपका कार्यक्रम सुन रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हो, यदि संभव हो तो मेरा मैसेज सनी पाजी स्टाइल में एयर करने की कृपा करें, आपको सुनना हमेशा बहुत अच्छा लगता है, प्रेमचंद प्रेमी धामपुर से। मैंने कोशिश की है जी, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, एंटरटेन करने का तो मेरा बहुत दिल करता है, आपको हमेशा कोशिश करता हूँ हमेशा, और कह सकता हूँ कि जब आपको पसंद आता है तो कोशिश कामयाबी में बदल जाती है और यही मुझे अच्छा लगता है, मेहनत सार्थक होती है। आपके आने से पार्टी में खूब मजा आ गया, कभी डांसर बच्चा लोग अपने अंकल जी को आराम बोल रहे हैं फुल वॉल्यूम, अच्छा जी कनेक्ट करके एंजॉय कर रहे हैं। कस्बा गुन्नर यूपी से फारूक अली खान जी, आदाब सभी को, और यही कहूँगा एंजॉय पूरा कीजिए, ख्याल भी रखिए अपना, फुल एंजॉय कीजिए बिल्कुल, और आज तो खास दिन है आपके लिए तो मज़ा ही आ जाएगा। हमारे दोस्त ने गुड इवनिंग लिखा लेकिन उसके बाद नहीं लिखा, चलिए कोई बात नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो भी हमारे दोस्त हैं जो प्रोग्राम सुनते हैं अपना नाम भी लिखेंगे और जिस जगह से वो लिख रहे हैं तो मजा आएगा ना, हमें भी अच्छा लगेगा। फिलहाल ये अगला ट्रैक

गुड इवनिंग जी सर, आज मौका खास है हमारे अनाम का, हैप्पी वाला बर्थडे है, फुल एंजॉय कर रहे हैं, नाइस सॉन्ग चला रहे हो, शुक्रिया सरकार और बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी इस खास दिन की। सनी देओल जी की मिमिक्री बहुत अच्छी लगी, थैंक यू जी, और कोशिश करता हूँ जैसा कि हमेशा कहता हूँ, अच्छी लगती है तो और भी अच्छा लगता है, और भी कोशिश करेंगे जी। वाह, ऐसे ही मेहनत से आप आगे बढ़ते रहें, शुभकामनाएं प्रेमचंद प्रेमी जी, धन्यवाद आपका, और आपकी बातें ही प्रेरणा बनती है मेरे लिए, और इसी तरह कोशिश करता रहता हूँ और आगे भी जारी रखूँगा जैसा कि मैं कहता हूँ। तो फिलहाल इस प्रोग्राम का जो कारवां है इसे आगे और बढ़ाते हैं, जारी रखते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

वेलकम बैक जी, प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती, और मैं हूं आपका अपना खास, आपका अपना विकास, आपका अपना विक्स, नीलम दिल्ली बरवाला से। सॉन्ग बहुत अच्छे लग रहे हैं, शुक्रिया जी। और आपने शाहरुख खान और सनी देओल की जो आवाज़ में बात की, बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हौसला अफजाई है जी, कोशिश करेंगे और भी आवाज़ें आपको सुना सकें। आज के सॉन्ग सुनकर सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा ये बात जान के। और सभी सॉन्ग पसंद के हैं, सभी डांसर सॉन्ग चल रहे हैं। अच्छा, फारूक अली खान जी बुलंदशहर से, मोहम्मद अब्बासी, पूरा अब्बासी परिवार सुन रहे हैं, सॉन्ग पसंद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए, और भी बढ़िया ग्रेट सॉन्ग्स आ रहे हैं। यानी कि हमारी जो, मैंने कहा था, जो हमारा जो सफ़र शुरू होगा, इसे हम फुल एंजॉय करेंगे, तो करेंगे

चेतन कुमार मानपुर बाजार गया बिहार से जबरदस्त शानदार शानदार सॉन्ग सुना रहे हैं, शुक्रिया जी। और गाने की फरमाइश की है, दोस्त ये गाना मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है, लेकिन जो है वो आपको यकीनन पसंद आएगा। और अगली बार जी बिल्कुल 29 अगस्त को तो मुलाकात होगी ही मैसेज मसाला मिक्स के माध्यम से। फिलहाल इस वक्त को और एंजॉय करते हैं।

और तकरीबन वक्त हो गया है कि इस प्रोग्राम से मैं आपसे विदा लूं, और 29 तारीख को जी बिल्कुल मुलाकात होगी। जैसा कि पहले बताया था फिर बता देता हूं, नमस्कार जी, मीरापुर गांव बुम्मा से आर्यन गाने बहुत मस्ती भरे सुना रहे हैं, शुक्रिया जी। और इस सफ़र का यानी कि इस प्रोग्राम का यह आखिरी गीत भी मज़ा आएगा आपको, एंजॉय कीजिए। और मेरे साथ बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।

नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। सुनिए इस वक्त की अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिन के दौरे पर श्री विजयपुरम पहुंचे। उपराष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। दिल्ली कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन ने कहा है कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालटल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। और बैडमिंटन में कल आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। तो ये थे इस वक्त की अहम खबरें। बने रहिए हमारे साथ।

सावन, जब धरती का श्रृंगार होता है हरियाली से, आसमान से बरसती बूंदें जाने कितने एहसास जगा जाती है। पर यही बादल जब झमके बरसते हैं तो कहीं तबाही का मंजर भी ले आते हैं।

छा रहा है ना सावन का रंग, प्रेम में डूबे दिलों के लिए तो आसमान से बरसती हर बूंदों में इश्क की सौगात है।

0: सावन की बारिश में शहर डूबता रहा, हर शख्स भीगता रहा, दिल रुठता रहा। बूंदों में घुली थी किसी की याद ऐसी, मैं बारिश में भी सारी रात जलता रहा। मोहम्मद सरफराज आलम, अररिया बिहार से। एक और, उम्र भर किसी की याद से इतना लड़े हैं हम कि तिनकों की तरह राह में बिखरे पड़े हैं हम। और तन्हाई के आलम की ये इंतहा है मेरे दोस्त कि अपनी ही महफिलों में अकेले खड़े हैं हम। प्रेमचंद प्रेमी, धामपुर से। मतलब सावन का असर दिल पे खूब हुआ है, यादें करवट लेने लगी हैं। तो चलिए यादों में ही घूम कर आते हैं। और दोस्त, यादों से लड़ा नहीं जाता, उसे तो दिल के संदूकचे में संभाल कर रखा जाता है। बहुत काम आती है यादें, वक्त का फासला मिटा देती है, कभी उम्मीद कभी हौसला देती है, कुछ नहीं तो सबक ही दे जाती है।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: 17 अगस्त 2026 तक BLO द्वारा दिए गए इन्यूमरेशन फॉर्म को भर के जमा कराएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
2: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
2: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
3: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

0: इश्क ये एहसास भी खूब है, इसी में रहना भी है और इससे छूटना भी है।
1: हे हे, हे हे।
0: दिल से दिल तक का सफर तय कर रहे हैं आप नविता के साथ।

0: एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: राहुल, अगले हफ्ते टूर्नामेंट है, तुम्हें मेरठ से नया बैट भी लाना है, कैसे करोगे?
8: अरे सर फिक्र मत कीजिए, मैं मेरठ से बेस्ट बैट लेकर दोपहर की प्रैक्टिस ज्वाइन भी कर लूंगा।
7: इम्पॉसिबल
8: सर, अब अपने पास नमो भारत की रफ्तार और आरामदायक सफर है। मेरठ अब दूर कहाँ, 1 घंटे से कम लगता है, हर 10 मिनट में ट्रेन मिलती है।
9: देश की प्रथम रीजनल रेल नमो भारत दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर गाजियाबाद, मोदी नगर और मेरठ में बेगम पुल होते हुए मोदीपुरम तक जाती है।
10: मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुं सुदर्शन।
11: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: और दोस्त इस कार्यक्रम में फिलहाल यहीं तक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, रेनबो पर बातों और गीतों का सिलसिला चलता रहता है। मैं मिलूंगी आपसे एक घंटे बाद।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।

0: है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।

नमस्कार दोस्तों, रात के 11 बज चुके हैं। सुनिए इस वक्त की अहम खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेपीएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 2 दिन के दौरे पर श्री विजयपुरम पहुंचे। उपराष्ट्रपति का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। दिल्ली कैबिनेट ने निजी विश्वविद्यालय विधेयक के मसौदे को मंजूरी देकर उच्च शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान और ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालटाल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। और एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलकों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीते। तो ये थे इस घंटे के मुख्य समाचार। बने रहिए हमारे साथ।

0: आपकी वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। आप एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक, मैं रविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। समुंदर उल्टा सीधा बोलता है, समुंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है। मैं चुप रहता हूँ इतना बोलकर भी, वो चुप रहकर भी कितना बोलता है।

कुछ रह जाने का, कुछ छूट जाने का मलाल तो रहता है, पर क्या कीजिए, जिसे रह जाना है उसे रह जाना है, तो उसकी यादों को समेट कर आगे बढ़ जाना ही अच्छा है। यूं ही बेसबब ना फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गजल की सच्ची किताब है, उसे चुपके चुपके पढ़ा करो।

0: एक छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द लौटते हैं।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।
1: जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप FM रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविदा हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में। तेरे आने की क्या उम्मीद, मगर कैसे कह दूँ कि इंतजार

इंतजार, किसी के लौट आने का, किसी के इकरारनामे का। मोहब्बत में ये रंग भी खूब है। कितने ख्वाब बुनता है दिल एक मुलाकात के लिए, कितने बहाने ढूंढता है दिल इकरार के लिए, इजहार के लिए।

0: कोयल सी तेरी बोली,
1: हाय
0: कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु कुकु,
1: हाय।
0: तेरी तिरछी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
4: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
5: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
6: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
5: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
7: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
8: ठीक है,
7: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा है इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
6: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
5: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
9: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

0: ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

जी हाँ, बिल्कुल सही हैं आप। हैं एफएम रेनबो के साथ दिल से दिल तक, और मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफ़र में। नहीं हो तुम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे शहर में कर्फ्यू लगा है। कोई बर्बाद होकर जा चुका है, कोई बर्बाद होना चाहता है।

0: बदली स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम

आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

102.6 FM, दिल से दिल तक। मैं नविता हूँ आपके साथ दिल से दिल तक के सफर में।

वक्त के साथ थोड़ा हेर फेर करना होता है। अगर ज़रूरत हो तो उग्र बनो ऊपरी तौर पर, लेकिन हमेशा नरम रहो अपने दिल में। अगर ज़रूरत हो तो फुफकारो पर डसो मत, दिल में प्यार को जिंदा रखो और लड़ते रहो ऊपरी तौर पर। यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है ना? और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिल से दिल मिलाते रहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए FM रेनबो के साथ, दिल से दिल तक।

आधी रात के 12 बज चुके हैं और एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल दिया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता

उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है और एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते हैं। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल। आधी रात के 12:02 हो चुके हैं और अब शुरू होता है जीरो आवर शो, जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक। तो बस नॉन स्टॉप गानों की धुन में आप ऐसे ही गानों का मजा लीजिए, एक के बाद एक गानों की लड़ी चलती रहेगी। तो बस गानों की दुनिया में खो जाइए और स्टार्टिंग करते हैं कॉकटेल 2 मूवी से प्रीतम और अरिजीत सिंह की आवाज में इस गाने के साथ।

0: डिमांड के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
0: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉनस्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ FIR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो FIR कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। कैसे डिपॉजिट करेंगे? डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।

0: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अधिकारों की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा, कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
1: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
2: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
2: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
2: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

रूप कुमार राठौड़ की आवाज में आपने तक्षक मूवी से ये गाना सुना। जीरो आर शो सुन रहे हैं आप। रात के 12:33 हो चुके हैं और ऐसे ही आप नॉन स्टॉप गाने सुनते रहिए और गानों के बीट्स पर झूमते रहिए।

0: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: मिल गया है बबल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

अभी आप सुन रहे थे जस्मिन सैंडलेस और सतिंदर सरताज की आवाज में फ्रॉम द मूवी धुरंधर से ये गाना। और रात के 12:57 हो चुके हैं। जीरो आवर शो में नॉनस्टॉप बॉलीवुड हिट म्यूजिक आप सुन रहे हैं और इस शो का ये आखिरी गाना फ्रॉम द मूवी आई आर ए सुनीति चौहान की आवाज में।

रात्रि के एक बज चुके हैं और अब सुनिए एफएम रेनबो पर मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन पर दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है।

0: खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। और एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीते हैं। ये थे FM रेनबो मुख्य समाचार।
1: कोयल

आधी रात के 1:03 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो चैनल और अब शुरू होता है सुहानी रात, जिसमें आप सुनेंगे कुछ 90s के गाने और कुछ नए गाने यानी सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग्स। आप मजा लेंगे इनका, वो भी नॉन स्टॉप। तो शुरुआत करते हैं फ्रॉम द मूवी पापा कहते हैं, उदित नारायण की आवाज में इस गाने के साथ।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ एफआईआर दर्ज है, आपके बेटे ने ये कांड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो एफआईआर कटा था इनके नाम है, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर रात के 1:50 हुए हैं। आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक शो है सुहानी रात, और ऐसे ही गानों का आप मजा लेते रहिए।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे हैं सुहानी रात शो नॉनस्टॉप बॉलीवुड म्यूजिक, जिसमें कुछ म्यूजिक आप सुन रहे हैं 90s का। रात के 1:55 हो चुके हैं और अब इस शो का ये आखिरी गाना फ्रॉम द मूवी हम हो गए आपके।

रात्रि के 2 बज चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो पर अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन पर दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ दूसरे दौर की वार्ता की है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है और एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों के 60 किलोग्राम वर्ग में एक और स्वर्ण और एक रजत पदक जीते हैं। ये थे एफएम रेनबो मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM रेनबो चैनल। रात के 2:03 हो चुके हैं, आज रविवार है और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम भुलाए ना बने, जिसमें नॉन स्टॉप गानों का आप मजा लेंगे। तो शुरुआत करते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में बर्फी फिल्म के इस गाने के साथ, और ऐसे ही गानों की लड़ी चलती रहेगी, आप गानों की दुनिया में खो जाइए।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,

0: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
0: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत।

अलका याग्निक और कमाल खान की आवाज में ये गाना था फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार क्यों किया। और आप सुन रहे हैं भुलाई ना बने शो में नॉनस्टॉप गाने और रात के 2:43 हो चुके हैं और आप सुनिए तक्षक मूवी का ये गाना सुजाता त्रिवेदी की।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम रेनबो चैनल पर आप सुन रहे थे भुलाई ना अपने शो, जिसमें आप वो गाने सुन रहे थे जो आप किसी टाइम पे सुनते थे, भूल चुके थे, लेकिन उन गानों का आप दोबारा मजा ले रहे हैं। रात के 2:58 हो चुके हैं और अब ये शो अभी पूरा होता है।

रात्रि के 3 बज रहे हैं और अब प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन पर बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने उप प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार ने की अगले दौर की वार्ता आज दोपहर 12 बजे होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। और बैडमिंटन में आज आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यूहान से होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज़।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: यादें अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
3: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR खर्चा, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर।

0: उसका सर देखो जो आधार कार्ड है ना इनके नाम से उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
2: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
3: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
2: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
2: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
2: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
2: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

नमस्कार, प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने फोन पर बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। झारखंड में जेपीएससी और जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार की अगले दौर की वार्ता आज दोपहर 12 बजे होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निशुल्क बने रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजेश्कियन ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। और बैडमिंटन में आज आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यूहान से होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
6: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

क्या क्या प्लान है 31 दिसंबर की रात का? FM रेनबो का प्लान है आपके साथ मिलकर कुछ मौज कुछ मस्ती करने का। हाँ तो भाई मिलकर बढ़ाएंगे 2026 में पहला कदम।

0: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।
1: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान। इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

प्रातः 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है एफएम के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के विकास पथ को आकार देने में नवाचार, अनुसंधान और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व पर बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेन्स ने फोन पर बातचीत में दोनों देशों के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के विभिन्न उपायों पर चर्चा की। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ राज्य सरकार की अगले दौर की वार्ता आज दोपहर 12 बजे होगी। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में वायुसेना बैंड आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर प्रस्तुति देगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए मजबूत साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर बल दिया है। सरकार ने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई निःशुल्क रहेगा और सभी व्यक्तिगत लेन देन निःशुल्क बने रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पिजेश्कियन ने कहा कि ईरान कूटनीति के लिए प्रतिबद्ध है लेकिन आत्मसमर्पण के लिए मजबूर नहीं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज के लिए मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हुई। खराब मौसम के कारण जम्मू से बालतल के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। और बैडमिंटन में आज आसन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। तो ये थी अब तक के मुख्य समाचार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का रेनबो चैनल 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर, और लीजिए अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना।